0: जय देवी दुर्गेश्वरी। बडा दशैंको शुभ उपलक्ष्यमा हाम्रो विशेष सांगीतिक रूपकको चौथो पर्व अहिले प्रस्तुत थियो। यो कार्यक्रम आकाशवाणीको खरसाङ केन्द्रबाट प्रसारण भइरहेथ्यो।
1: कार्यक्रम अर्चनाको प्रस्तुतिपछि अबको केही क्षणमा सुनाउने छु आकाशवाणी दिल्ली केन्द्रको प्रथम संस्कृत। त्यसपछि
2: आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी तथा कनाडादेशस्य प्रधानमन्त्री मार्क कार्नी च द्वयोः देशयोः द्विपक्षीय सम्बन्धेषु प्राप्तां सकारात्मक प्रगतिम् अग्रे नेतुं तथा सामरिक सहयोगस्य प्रमुखक्षेत्रेषु सार्थक परिणामानि प्राप्तुं सहमतिं प्रकटितवन्तौ। एतेषु क्षेत्रेषु वाणिज्यम्, ऊर्जाक्षेत्रम्, प्रौद्योगिकी, सुरक्षा,

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बृहत्तर भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करेंगे। संस्कृति मंत्रालय के इस सम्मेलन का विषय है भारत के वैश्विक सांस्कृतिक संबंध। नई दिल्ली में 3 दिन के सम्मेलन में 50 देशों के प्रतिनिधि, राजदूत और विद्वान भारत के ऐतिहासिक और समकालीन सांस्कृतिक संबंधों पर विचार विमर्श करेंगे। चीन, जापान, मंगोलिया, नेपाल और ईरान सहित अन्य देशों के प्रतिभागी साझा सांस्कृतिक विरासत और सभ्यतागत आदान प्रदान पर चर्चा में योगदान देंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू

0: वो आज आंध्र प्रदेश की दो दिन की यात्रा पर जाएंगी। राष्ट्रपति कल विजयवाड़ा में राष्ट्रीय सरस मेले में शामिल होंगी। मेले का आयोजन केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय और आंध्र प्रदेश सरकार ने किया है। नई दिल्ली में बिम्स्टेक देशों के गृह मंत्रियों की पहली बैठक कल दिल्ली घोषणा के साथ संपन्न हो गई। दिल्ली घोषणा में बिम्स्टेक देशों ने सीमा पार आतंकवाद सहित हर तरह के आतंकवाद की कड़ी निंदा की है।
1: बिम्स्टेक देशों ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप आतंकवाद तथा हिंसक उग्रवाद को व्यापक तथा निरंतर प्रयासों से रोकने, उनका मुकाबला करने और उन्हें समाप्त करने का संकल्प दोहराया। सदस्य देशों ने एक दूसरे से जुड़े संकटों का सामना करने में सक्षम, सुरक्षित, विकसित और समृद्ध बिम्स्टेक क्षेत्र के

0: ये रीजन फ्यूचर टेक्नोलॉजी के लिए अर्ली मूवर एडवांटेज दे रहा है, यानी आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए इस क्षेत्र में जमीन पूरी तरह तैयार है, इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है, पॉलिसी प्रिडिक्टेबल है और विजन लॉन्ग टर्म है।
1: स्मार्ट सिटी के विस्तार और इसके तीव्र गति से विकसित हो रहे इंफ्रास्ट्रक्चर पर प्रकाश डालते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा,
2: धौलेरा स्मार्ट सिटी का विकास अंदाजन 920 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में हो रहा है। यहाँ सेमीकंडक्टर, एरोस्पेस और डिफेंस जैसे इमर्जिंग सेक्टर की इंडस्ट्रीज आ रही है और उसके लिए सरकार ने हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट शुरू कर दिया है। अहमदाबाद धौलेरा एक्सप्रेस वे के निर्माण से कनेक्टिविटी आसान हो गई है और ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का काम अंतिम दौर में है। आने वाले दिनों में धौलेरा देश की पहली स्मार्ट इंडस्ट्रियल सिटी के रूप में स्थापित होगी।
1: ऐतिहासिक समुद्री विरासत से लेकर भारत के अत्याधुनिक मैन्युफैक्चरिंग भविष्य तक धौलेरा दूरदर्शी योजना और विकसित भारत के संकल्प का एक अनूठा प्रतीक है। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
3: कोलकाता में दुर्गा पूजा को लेकर उत्साह दिखने लगा है। आज चतुर्थी पर शहर में हर्षोल्लास का माहौल है। रंग बिरंगे पंडाल, जगमगाती रोशनी और ढाक की गूंज से पूरा शहर उत्सवमय हो गया है। एक रिपोर्ट।
4: पूजा पंडालों को अंतिम रूप दिया जा रहा है और तैयारियां जोरों पर हैं। कई लोग अभी से पंडालों में घूमने और त्योहार की खरीदारी के लिए निकल रहे हैं। बढ़ती भीड़ को देखते हुए पुलिस और स्थानीय प्रशासन यातायात व्यवस्था बनाए रखने और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा रहे हैं। बंगाल के लोगों के लिए दुर्गा पूजा महज एक त्योहार नहीं बल्कि खुशी और परंपरा और आपसी मेलजोल का अवसर है। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
3: भारत और वेस्टइंडीज के बीच चौथा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज हैदराबाद में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। रविवार को इंदौर में खेले गए तीसरे मैच में वेस्टइंडीज को 14 रन से हराने के बाद भारत 5 मैच की श्रृंखला में 2-1 से आगे है। डेनमार्क ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में तन्वी शर्मा और किदाम्बी श्रीकांत ने दूसरे दौर में प्रवेश कर लिया है। तन्वी ने पहले दौर में जापान की नात्सुकी निदायरा को हराया। अगला मुकाबला उनका जर्मनी की यमोन ली से होगा। वहीं किदाम्बी श्रीकांत ने भी फ्रांस के अर्ना मर्कले को हराकर दूसरे दौर में जगह बनाई। वे दूसरे दौर में फ्रांस के ही एलेक्स लेनियर से खेलेंगे। पुरुष डबल्स में आज सात्विक साईराय रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी तथा महिला डबल्स में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद अपनी अपनी चुनौती रखेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: बराबर तो पूछना क्यों।
6: PCP NDT कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत लिंग जांच करने और करवाने वाले दोनों को 3 से 5 साल तक की कैद और जुर्माने की सजा है।
7: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
8: धन्यवाद मुकेश। ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान के अनुसार मोदी बोले, भारत वैश्विक चुनौतियों के बीच मजबूती से आगे बढ़ रहा है। जनसत्ता की सुर्खी है, भारत किसी की कीमत पर नहीं दुनिया के साथ विकास करता है। लोकसत्य का शीर्षक है, दुनिया को जोड़ने की ताकत रखता है भारत। 12 वर्षों की आर्थिक नीतियों में सशक्तिकरण पर रहा जोर। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, दुनिया में तनाव के बीच IMF ने बढ़ाया भारत की ग्रोथ का अनुमान, आगे भी विकास दर तेज रहेगी। पत्र के अनुसार भारत सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी में बना हुआ है। अमर उजाला के अनुसार त्योहारी सीजन, अर्थ जगत में राहत, बाजार झूमा, UPI पर शुल्क, दीपावली तक टला। शेयर बाजार की रफ्तार से 1100 अंक से अधिक चढ़ा सेंसेक्स। दैनिक जागरण ने गृहमंत्री अमित शाह का बयान देते हुए लिखा है, 8000 की भीड़ जुटा देश की आवाज नहीं बन सकते राहुल, 2029 में भी हार के लिए तैयार रहे कांग्रेस। SIR के विरोध के नाम पर घुसपैठियों को बचाने की विपक्ष की रणनीति समझ चुकी है जनता। गृहमंत्री अमित शाह का बिम्स्टेक देशों से आह्वान पर पंजाब केसरी की सुर्खी है, आतंकियों को पनाह ना मिले। पत्र ने दिया है, चीन को भारत की दो टूक, लद्दाख हमारा अटूट अंग, विदेश मंत्रालय ने कहा पेचिंग का दावा करने से हकीकत नहीं बदलने वाली। राजस्थान पत्रिका ने पेपर लीक मुद्दे पर नंदन नीलेकणी का सुझाव देते हुए लिखा है, AI से तैयार करें पेपर, प्रश्न बैंक से बनाएं प्रश्न पत्र, परीक्षा से ठीक पहले तय किए जाएं सवाल, 1.5 लाख परीक्षा केंद्रों का नेटवर्क बढ़ेगा। दैनिक भास्कर ने दावा शीर्षक से दिया है, प्रदर्शन कहां और कैसे हो, कोर्ट ने केंद्र से मांगा पक्ष, प्रदर्शन

0: से व्यापारियों को 2000 करोड़ रुपए का नुकसान। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, नीट जेई की तैयारी के लिए जल्द आएगा अभ्यास एआई ऐप, घर में प्रैक्टिस पेपर डाउनलोड कर एग्जाम दे सकेंगे।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वीडियो संदेश के माध्यम से बृहत्तर भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करेंगे। बिम्स्टेक देशों ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंक के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत अमेरिका व्यापार वार्ता सही दिशा में जारी, समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ऊर्जा सहयोग और रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने के लिए अगले सप्ताह भारत आएंगे। बिहार में वैशाली के राघोपुर में नाव दुर्घटना में 13 लोगों की मौत। और भारत और वेस्टइंडीज के बीच चौथा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज शाम हैदराबाद में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: के नियमों के अनुसार 450 से अधिक उत्पाद जैसे ज्वेलरी टॉयज हेलमेट इलेक्ट्रॉनिक्स इत्यादि ऐसे हैं जिनके निर्माण आयात या सेल के लिए BIS मानक चिन्ह आवश्यक है। एक जागरूक ग्राहक बनिए, किसी भी प्रोडक्ट को खरीदते वक्त उस पर BIS मानक चिन्ह जरूर देखें और उस प्रोडक्ट की प्रामाणिकता जांचने के लिए आज ही डाउनलोड करें BIS केयर ऐप।
1: हाँ, ये हेलमेट अच्छा है, लेकिन ये सेफ है क्या?
2: चिंता मत कीजिए, इस हेलमेट पर ISI मार्क है।
1: और मुझे कैसे पता चलेगा कि ये असली है?
2: BIS केयर ऐप से, जहाँ आपको ये इम्पोर्टेंट डिटेल एक ही क्लिक में मिल जाएगी।
3: बनिए जागरूक ग्राहक और कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले उसकी प्रामाणिकता चेक करने के लिए आज ही डाउनलोड करें BIS केयर ऐप।
4: This helmet fits better. I'll buy this one. But are you sure about its safety features?
5: Don't worry. This helmet is ISI certified.
4: And how will I know if it's authentic?
5: Just by downloading the BIS Care app, where you can get all the necessary details in a click.
3: Be a vigilant consumer. Download the BIS Care app today to check the product's authenticity before purchase.

0: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
1: आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: हाँ, ये रिंग अच्छी है, बीवी को पसंद भी आ जाएगी।
4: अरे यस सर, आपकी चॉइस बहुत अच्छी है और ये डिजाइन भी नया है।
3: डिजाइन नया है वो तो ठीक है, लेकिन सोने की प्योरिटी का प्रूफ कहाँ मिलेगा?
5: बनिए एक जागरूक ग्राहक, आज ही डाउनलोड कीजिए BIS केयर ऐप। सोना खरीदने से पहले BIS केयर ऐप पर HUID कोड अवश्य वेरीफाई करें।
6: This helmet fits better. I'll buy this one. But are you sure about its safety features?
7: Don't worry. This helmet is ISI certified.
6: And how will I know if it's authentic?
7: Just by downloading the BIS Care app, where you can get all the necessary details in a click.
5: Be a vigilant consumer. Download the BIS Care app today to check the product's authenticity before purchase.

0: भारत सरकार के नियमों के अनुसार 450 से अधिक उत्पाद जैसे ज्वेलरी, टॉयज, हेलमेट, इलेक्ट्रॉनिक्स इत्यादि ऐसे हैं जिनके निर्माण, आयात या सेल के लिए BIS मानक चिन्ह आवश्यक है। एक जागरूक ग्राहक बनिए, किसी भी प्रोडक्ट को खरीदते वक्त उस पर BIS मानक चिन्ह जरूर देखें और उस प्रोडक्ट की प्रामाणिकता जांचने के लिए आज ही डाउनलोड करें BIS केयर ऐप।
1: कार्यक्रमको यो अन्तिम प्रस्तुति स्वीकार्नुहोस् चलचित्र हाउसफुल 5 बाट मधुबन्ती बागची अनि सुमन्तो मुखर्जीको युगल आवाजमा।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप। भारत सरकार के नियमों के अनुसार 450 से अधिक उत्पाद जैसे ज्वेलरी, टॉयज, हेलमेट, इलेक्ट्रॉनिक्स इत्यादि ऐसे हैं जिनके निर्माण, आयात या सेल के लिए BIS मानक चिन्ह आवश्यक है। एक जागरूक ग्राहक बनिए, किसी भी प्रोडक्ट को खरीदते वक्त उस पर BIS मानक चिन्ह जरूर देखें और उस प्रोडक्ट की प्रामाणिकता जाँचने के लिए आज ही डाउनलोड करें BIS केयर ऐप।
1: बेटी के लिए गहने बनवाए एकदम खरे हॉलमार्क के, और तो और दुकानदार ने खुद 15 मिनट में हॉलमार्क के निशान लगाकर भी दिए।
2: अरे बुद्धू, हॉलमार्क गहने तो सिर्फ BIS लाइसेंस होल्डर ज्वेलर ही बेचते हैं, और BIS हॉलमार्क करने के लिए 4-5 घंटे का वक्त लगता है।
3: अगर आप भी किसी ऐसे धोखे का शिकार हुए हैं तो BIS की वेबसाइट BIS.org.in पर शिकायत करें। जागो ग्राहक, जागो।

0: टीवीएस क्वालिटी मार्क अनिवार्य कर दिया है, तो आज ही डाउनलोड कीजिए बीआईएस केयर ऐप।
1: बीआईएस इंस्पायरिंग क्वालिटी।
2: हाँ, ये रिंग अच्छी है, बीवी को पसंद भी आ जाएगी।
3: अरे यस सर, आपकी चॉइस बहुत अच्छी है और ये डिजाइन भी नया है।
2: डिजाइन नया है वो तो ठीक है, लेकिन सोने की प्योरिटी का प्रूफ कहाँ मिलेगा?
4: बनिए एक जागरूक ग्राहक, आज ही डाउनलोड कीजिए BIS Care App। सोना खरीदने से पहले BIS Care App पर HUID कोड अवश्य वेरीफाई करें।
5: This helmet fits better. I'll buy this one. But are you sure about its safety features?
6: Don't worry. This helmet is ISI certified.
5: And how will I know if it's authentic?

0: श्रोताहरूले भर्खरै सुन्नुभयो चलचित्र हम्टी शर्माकी दुल्हनियाबाट यो साङ्गीतिक कोसेली अरिजित सिंह अनि श्रेया घोषालको युगल आवाजमा। साङ्गीतिक यात्रालाई हामी निरन्तरता अवश्य नै दिनेछौँ श्रोता। अहिलेलाई भने सुनौ एक छोटो सन्देश।
1: सत्यनिष्ठा केवल एक शब्द होइन, यो हाम्रो कार्य संस्कृतिको पहिचान हो।
2: हरेक काममा पारदर्शिता, हरेक निर्णयमा निष्पक्षता, हरेक पाइलामा जवाफदेहिता,
1: यही हो सत्यनिष्ठा, यही हो समृद्धिको बाटो। किनकि प्रिभेन्टिभ भिजिलेन्स केवल एउटा अभियान होइन,
2: यो हो असल व्यवस्था र असल भविष्यको जिम्मेदारी।
1: सफा सोच, सही काम, सत्यनिष्ठा हाम्रो पहिचान। एनटिपिसी रमामसँग सत्यनिष्ठादेखि समृद्धिको विश्वास।
3: भारत सरकार के नियमों के अनुसार 450 से अधिक उत्पाद जैसे ज्वेलरी, टॉयज, हेलमेट, इलेक्ट्रॉनिक्स इत्यादि ऐसे हैं जिनके निर्माण, आयात या सेल के लिए BIS मानक चिन्ह आवश्यक है। एक जागरूक ग्राहक बनिए, किसी भी प्रोडक्ट को खरीदते वक्त उस पर BIS मानक चिन्ह जरूर देखें और उस प्रोडक्ट की प्रामाणिकता जाँचने के लिए आज ही डाउनलोड करें BIS केयर ऐप।
4: बेटी के लिए गहने बनवाए एकदम खरे हॉलमार्क के, और तो और दुकानदार ने खुद 15 मिनट में हॉलमार्क के निशान लगाकर भी दिए।
5: अरे बुद्धू, हॉलमार्क गहने तो सिर्फ BIS लाइसेंस होल्डर ज्वेलर ही बेचते हैं, और BIS हॉलमार्क करने के लिए 4 से 5 घंटे का वक्त लगता है।
6: अगर आप भी किसी ऐसे धोखे का शिकार हुए हैं तो BIS की वेबसाइट BIS.org.in पर शिकायत करें। जागो ग्राहक, जागो।

0: हाँ, ये हेलमेट अच्छा है, लेकिन ये सेफ है क्या?
1: चिंता मत कीजिए, इस हेलमेट पर ISI मार्क है।
0: और मुझे कैसे पता चलेगा कि ये असली है?
1: BIS केयर ऐप से, जहां आपको ये इम्पोर्टेंट डिटेल एक ही क्लिक में मिल जाएगी।
2: बनिए जागरूक ग्राहक और कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले उसकी प्रामाणिकता चेक करने के लिए आज ही डाउनलोड करें BIS केयर ऐप।
3: This helmet fits better. I'll buy this one. But are you sure about its safety features?
4: Don't worry. This helmet is ISI certified.
3: And how will I know if it's authentic?
4: Just by downloading the BIS Care app, where you can get all the necessary details in a click.
2: Be a vigilant consumer. Download the BIS Care app today to check the product.

0: जूते की बात चली है तो एक जरूरी बात जो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, अब कोई भी इन्हें ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के ISI मार्क के बिना मैन्युफैक्चर, इंपोर्ट और सेल नहीं कर सकता। फुटवेयर की खरीदारी करते वक्त BIS का ISI मार्क जरूर देखें। BIS इंस्पायरिंग क्वालिटी।
1: कोई भी घरेलू सामान खरीदने से पहले सबसे पहले BIS क्वालिटी मार्क यानी ISI मार्क चेक

0: जूते की बात चली है तो एक जरूरी बात जो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, अब कोई भी इन्हें ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के ISI मार्क के बिना मैन्युफैक्चर, इंपोर्ट और सेल नहीं कर सकता। फुटवेयर की खरीदारी करते वक्त BIS का ISI मार्क जरूर देखें। BIS इंस्पायरिंग क्वालिटी।
1: कोई भी घरेलू सामान खरीदने से पहले सबसे पहले BIS क्वालिटी मार्क यानी ISI मार्क चेक करें और

0: अच्छा है, लेकिन ये सेफ है क्या?
1: चिंता मत कीजिए, इस हेलमेट पर ISI मार्क है।
0: और मुझे कैसे पता चलेगा कि ये असली है?
1: BIS केयर ऐप से, जहां आपको ये इम्पोर्टेंट डिटेल एक ही क्लिक में मिल जाएगी।
2: बनिए जागरूक ग्राहक और कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले उसकी प्रामाणिकता चेक करने के लिए आज ही डाउनलोड करें BIS केयर ऐप।
3: This helmet fits better. I'll buy this one. But are you sure about its safety features?
4: Don't worry. This helmet is ISI certified.
3: And how will I know if it's authentic?
4: Just by downloading the BIS Care app, where you can get all the necessary details in a click.
2: Be a vigilant consumer. Download the BIS Care app today to check the product's authenticity before purchase.

0: हाँ ये रिंग अच्छी है, बीवी को पसंद भी आ जाएगी।
1: अरे यस सर, आपकी चॉइस बहुत अच्छी है और ये डिजाइन भी नया है।
0: डिजाइन नया है वो तो ठीक है, लेकिन सोने की प्योरिटी का प्रूफ कहाँ मिलेगा?
2: बनिए एक जागरूक ग्राहक, आज ही डाउनलोड कीजिए BIS केयर ऐप। सोना खरीदने से पहले BIS केयर ऐप पर HUID कोड अवश्य वेरीफाई करें।
3: आकाशवाणी का खरसाङ केन्द्रबाट श्रोताले सुन्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम हाम्रो सरोकार, र आजको विषय छ सहयोगको संस्कार, अरूको दुःखमा हामी कतिको संवेदनशील छौं।

0: श्रोतावसम्म प्रसारण गरी सुनाउन लागिरहेछौ आकाशवाणी दिल्ली केन्द्रको हिन्दी समाचार सुन्दै गर्नुहोस् आकाशवाणीको खरसाङ केन्द्रलाई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत और आसियान एक शांतिपूर्ण, स्थिर और स्वतंत्र हिंद प्रशांत क्षेत्र में समान हित साझा करते हैं। नई दिल्ली में आज आसियान भारत रक्षा थिंक टैंक फोरम को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि आसियान भारत के हिंद प्रशांत दृष्टिकोण का केंद्र है।
2: भारत और आसियान हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता, समृद्धि और खुले समावेशी सहयोग के पक्षधर हैं। आसियान भारत की हिंद प्रशांत नीति के केंद्र में है। भारत की एक्ट ईस्ट नीति तथा सागर और महासागर की परिकल्पनाएं खुले और बहुध्रुवीय सहयोग को बढ़ावा देती हैं, जिन्हें भारत आसियान में नेतृत्व वाले मंचों के माध्यम से आगे बढ़ाता है।
1: रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी दक्षिण पूर्व एशिया के साथ समान भागीदार के रूप में काम करने की दीर्घकालिक प्रतिबद्धता है। श्री सिंह ने कहा कि हिंद महासागर और दक्षिण पूर्व एशिया का जल क्षेत्र परस्पर जुड़ा हुआ समुद्री क्षेत्र है, जिससे इसकी सुरक्षा एक साझा जिम्मेदारी बन जाती है। श्री सिंह ने आसियान भारत थिंक टैंक फोरम के लिए व्यावहारिक पहलों की रूपरेखा प्रस्तुत की। उन्होंने समुद्री सुरक्षा, आपदा प्रतिक्रिया, साइबर खतरों और उभरती प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित संयुक्त भारत आसियान अनुसंधान एजेंडा विकसित करने का प्रस्ताव रखा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमरीका के बीच व्यापार वार्ता सही दिशा में आगे बढ़ रही है और फिलहाल व्यापार समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है। नई दिल्ली में आयोजित ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि दोनों देशों के व्यापार मंत्री इस समझौते पर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि व्यापार समझौते को लेकर बातचीत काफी आगे बढ़ चुकी है। बिहार के वैशाली जिले के राघोपुर दियारा इलाके में कल रात एक नाव दुर्घटना में 13 लोगों की मृत्यु हो गई। मृतकों में अधिकांश नाबालिग हैं। वैशाली की जिला अधिकारी वर्षा सिंह ने बताया कि नाव पर लगभग 20 लोग सवार थे, जो एक भोज कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रहे थे। 6 लोगों को बचा लिया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतक के निकटतम परिजन को 2-2 लाख रुपए और घायल को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी प्रत्येक मृतक के परिजनों को 4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। भारत में वर्ष 2015 से 2024 के बीच टीबी के नए मामलों में 21% की कमी दर्ज की गई है, जबकि वैश्विक स्तर पर यह कमी 12% रही। देश में टीबी के इलाज का दायरा बढ़कर 92% हो गया है, जबकि वैश्विक औसत 78% है। सरकार ने टीबी उन्मूलन के प्रयास तेज कर दिए हैं। इसके तहत जांच का दायरा बढ़ाया जा रहा है, आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है और लोगों की भागीदारी बढ़ाई जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आंध्र प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर आज विजयवाड़ा पहुंचेंगी। राष्ट्रपति आज शाम विजयवाड़ा के श्री कनक दुर्गा मंदिर में पूजा अर्चना करेंगी। वे कल राष्ट्रीय सरस मेले का उद्घाटन करेंगी। मेले में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वयं सहायता समूहों की 1500 से अधिक महिलाएं ग्रामीण उत्पाद, पारंपरिक हस्तशिल्प और क्षेत्रीय खाद्य उत्पादों का प्रदर्शन करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो संदेश के माध्यम से 73 भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करेंगे।

हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस सम्मेलन का विषय है भारत के वैश्विक सांस्कृतिक संबंध। भारत और वेस्ट इंडीज के बीच चौथा T20 क्रिकेट मैच आज हैदराबाद में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। रविवार को इंदौर में खेले गए तीसरे मैच में वेस्ट इंडीज को 14 रन से हराने के बाद भारत 5 मैचों की श्रृंखला में 2-1 से आगे है। डेनमार्क ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में तन्वी शर्मा और के श्रीकांत ने दूसरे दौर में प्रवेश कर लिया है। तन्वी ने पहले दौर में जापान की नात्सुकी निदायरा को हराया। उनका अगला मुकाबला जर्मनी की यवोन ली से होगा। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर, लद्दाख, तमिलनाडु, पुदुचेरी और काराईकाल में आज तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और पश्चिमी राजस्थान में गरज के साथ ओलावृष्टि की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: जूते की बात चली है तो एक जरूरी बात जो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, अब कोई भी इन्हें ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के ISI मार्क के बिना मैन्युफैक्चर, इंपोर्ट और सेल नहीं कर सकता। फुटवेयर की खरीदारी करते वक्त BIS का ISI मार्क जरूर देखें। BIS इंस्पायरिंग क्वालिटी।
1: सर 5,000 रुपए लगाइए और 8,000 रुपए प्रॉफिट पाइए। ये देखिए प्रूफ का स्क्रीनशॉट।
2: वाओ, स्क्रीनशॉट का प्रॉफिट असली है या सिर्फ स्क्रीन पे? व्हाट्सएप या टेलीग्राम इन्वेस्टमेंट ग्रुप्स में फेक प्रॉफिट्स और स्मॉल रिवॉर्ड से ट्रस्ट बनाया जाता है, फिर इन्वेस्टमेंट बढ़ता जाता है। इसलिए
3: हमेशा पूछो WHY Why कहता है कैप्टन Y ऑफ SBI,
2: आपका साइबर रक्षक।
4: कोई भी घरेलू सामान खरीदने से पहले सबसे पहले BIS क्वालिटी मार्क यानी ISI मार्क चेक करें

0: टीवीएस क्वालिटी मार्क अनिवार्य कर दिया है, तो आज ही डाउनलोड कीजिए BIS केयर ऐप।
1: BIS इंस्पायरिंग क्वालिटी।
2: श्रोता, अबको क्रममा प्रस्तुत छ आधुनिक गीतहरूको कार्यक्रम स्वरमाधुरी। त पहिलो प्रस्तुति राखिरहेछौ हीरा र शैलीको स्वरमा।

भारत सरकार के नियमों के अनुसार 450 से अधिक उत्पाद जैसे ज्वेलरी टॉयज हेलमेट इलेक्ट्रॉनिक्स इत्यादि ऐसे हैं जिनके निर्माण आयात या सेल के लिए BIS मानक चिन्ह आवश्यक है। एक जागरूक ग्राहक बनिए, किसी भी प्रोडक्ट को खरीदते वक्त उस पर BIS मानक चिन्ह जरूर देखें और उस प्रोडक्ट की प्रामाणिकता जांचने के लिए आज ही डाउनलोड करें BIS केयर ऐप।

0: रमेश सुब्बाको स्वरमा यस गीतको अन्त साथै आजलाई पनि स्वरमाधुरी कार्यक्रम यतिमा नै पूरा गरिन्छ। हामी आकाशवाणी खरसाङबाट बोलिरहेछौ। अब समय भएको छ बंगला समाचारको, तर श्रोता त्यसभन्दा पहिला राखिरहेछौ यो सन्देश।
1: जुता है जापानी ये पत। जूते की बात चली है तो एक जरूरी बात जो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, अब कोई भी इन्हें ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के ISI मार्क के बिना मैन्युफैक्चर, इंपोर्ट और सेल नहीं कर सकता। फुटवेयर की खरीदारी करते वक्त BIS का ISI मार्क जरूर देखें। BIS इंस्पायरिंग क्वालिटी।
2: कोई भी घरेलू सामान खरीदने से पहले सबसे पहले BIS क्वालिटी मार्क यानी ISI मार्क।

0: শেষ করছি।
1: श्रोता समय यस बेला मध्याह बाह्र बज्ने लाग्यो। अब सम प्रसारण गरी सुनाउन लागिरहेछौ आकाशवाणी दिल्ली केन्द्रको हिन्दी समाचार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि लागत संबंधी पहलुओं के साथ साथ वैश्विक सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला में विश्वास और साइबर सुरक्षा का महत्व लगातार बढ़ता जा रहा है। आज नई दिल्ली में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में श्री वैष्णव ने कहा कि भारत का लक्ष्य सेमीकंडक्टर डिजाइन, निर्माण और तैयार उत्पादों के परीक्षण में विश्वसनीय भागीदार के रूप में अपनी स्थिति मजबूत करना है। श्री वैष्णव ने कहा कि भारत अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहा है। पिछले 5 वर्षों में भारत का सार्वजनिक ऋण सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में 61% से घटकर 55% रह गया है। उन्होंने कहा कि देश का लक्ष्य वित्तीय, आर्थिक और तकनीकी क्षेत्रों में मजबूती लाना है। श्री वैष्णव ने कहा कि सरकार घरेलू अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए काम कर रही है, जिससे वैश्विक अनिश्चितता के माहौल में भी निरंतर विकास सुनिश्चित किया जा सके। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ने पिछले 4 वर्षों में 38 विकसित देशों के साथ प्राथमिकता आधारित व्यापार समझौते किए हैं। आज नई दिल्ली में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में श्री गोयल ने कहा कि भारत का लक्ष्य भारतीय व्यवसायों के लिए बाजार पहुंच को बढ़ाना और देश के बाजारों को वैश्विक साझेदारों के लिए खोलना है। उन्होंने बताया कि 2014 से पहले भारत के व्यापार समझौतों में लगभग $10 ट्रिलियन के संयुक्त सकल घरेलू उत्पाद GDP वाली अर्थव्यवस्थाएं शामिल थी, जो अब बढ़कर लगभग $70 ट्रिलियन हो गई हैं। श्री गोयल ने कहा कि भारत कनाडा, मेक्सिको, मर्कोसुर, यूरेशिया और कई अन्य देशों के साथ व्यापार समझौतों पर बातचीत कर रहा है। उन्होंने बताया कि भारत विश्वसनीय साझेदारियों की तलाश में है। केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने राष्ट्रीय जहाज निर्माण मिशन के तहत देश के जहाज निर्माण उद्योग को सहायता देने के लिए ऋण जोखिम बीमा की 2 विशेष योजनाओं की घोषणा की है। मुंबई में 21वीं समुद्री राज्य विकास परिषद की बैठक को संबोधित करते हुए श्री सोनोवाल ने कहा कि जहाज निर्माण एक बड़ा और कई वर्षों तक चलने वाला कार्य है। इसे बढ़ावा देने के लिए सरकार बीमा प्रीमियम पर सब्सिडी देगी और बीमा दावों की स्थिति में बीमा कंपनियों को प्रत्यक्ष सहायता भी प्रदान करेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत और आसियान एक शांतिपूर्ण, स्थिर और स्वतंत्र हिंद प्रशांत क्षेत्र में समान हित साझा करते हैं। नई दिल्ली में आज आसियान भारत रक्षा थिंक टैंक फोरम को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि आसियान भारत के हिंद प्रशांत दृष्टिकोण का केंद्र है। श्री सिंह ने कहा कि हिंद महासागर और दक्षिण पूर्व एशिया का जल क्षेत्र परस्पर जुड़ा हुआ समुद्री क्षेत्र है, जिससे इसकी सुरक्षा एक साझा जिम्मेदारी बन जाती है।
3: हमें अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत समुद्री डकैती, मानव तस्करी, अवैध मछली पकड़ने और अन्य खतरों से निपटने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। इन प्रयासों में समुद्री सूचना केंद्रों के बीच नियमित संवाद, नौसेना और तटरक्षक बलों के बीच सहयोग तथा खोज बचाव, आपदा राहत और समुद्री बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के लिए संयुक्त अभ्यास शामिल हो सकते हैं।
1: दिल्ली की विशेष अदालत ने आज CJP नेताओं सौरव दास और आशुतोष रांका को 5 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। वहीं पार्टी के एक अन्य नेता अजिंक्य शिंदे को निजी मुचलके पर रिहा कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस ने तीनों नेताओं को जंतर मंतर में प्रवेश करने की कोशिश के आरोप में हिरासत में लिया था। इससे एक दिन पहले ही जंतर मंतर को विरोध प्रदर्शन स्थल के रूप में अधिसूचित सूची से हटा दिया गया था। भारतीय सेना की असम रेजिमेंट के जवानों ने वेल्स में आयोजित कैम्ब्रियन गश्ती 2026 अभ्यास में स्वर्ण पदक जीता है। भारतीय सेना ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस चुनौतीपूर्ण सैन्य गश्ती अभ्यास में भारतीय टीम ने 100 से अधिक टीमों के साथ मुकाबला किया। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 4था T20 क्रिकेट मैच आज हैदराबाद में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। भारत 5 मैचों की श्रृंखला में 2-1 से आगे है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में

0: आज मामूली गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 39 अंक गिरकर 72,995 पर और निफ्टी 30 अंक की गिरावट के साथ 22,692 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: एफएमएक से 3.5 मेगाहर्जमा हामी आकाशवाणीको खरसाङ केन्द्रबाट बोलिरहेछौं।
2: भारत सरकार के नियमों के अनुसार 450 से अधिक उत्पाद जैसे ज्वेलरी, टॉयज, हेलमेट, इलेक्ट्रॉनिक्स इत्यादि ऐसे हैं जिनके निर्माण, आयात या सेल के लिए BIS मानक चिन्ह आवश्यक है। एक जागरूक ग्राहक बनिए, किसी भी प्रोडक्ट को खरीदते वक्त उस पर BIS मानक चिन्ह जरूर देखें और उस प्रोडक्ट की प्रामाणिकता जाँचने के लिए आज ही डाउनलोड करें BIS केयर ऐप।
1: श्रोता, तपाईँको अनुरोध, तपाईँको रोजाई र तपाईँको मनपर्ने फिल्म सङ्गीतको मिठो सङ्गालो फरमाइसी फिल्म सङ्गीत लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ श्रोता कार्यक्रम तपाईँको अनुरोधमा। र आज यहाँहरूको साथमा छु म उद्घोषिका दिपा। त आउनु श्रोता, आजको पहिलो गीतसँगै साङ्गीतिक यात्रामा अघि बढौँ। त प्रथम गीत राखिरहेछौँ वेकअप सिट चलचित्रबाट शङ्कर महादेवनको स्वरमा। संगीत शङ्कर एसन लोईको अनि शब्द रचना रहेको छ जावेद अख्तरको। र यस गीतको निम्ति अनुरोध छ यहाँहरू सबैको। बक्सर बिहारबाट सर्फुद्दिन अन्सारी, फातिमा खातुन अन्सारी, असलम अन्सारी अनि अल्ताफ अन्सारी, डुमराउ बिहारबाट डब्लु अन्सारी, सोनम अदिबा अनि दानिस अन्सारी, सरमपुर बक्सरबाट इष्टिराज अन्सारी, आसमा खातुन, आफ्ताब अन्सारी, मेराज अन्सारी, कल्लु अनि मल्लु, पुस्तकालय रोड फारबिसगंज बिहारबाट कुन्ती देवी, प्रेम कुमार गुप्त, कृष्ण कुमार गुप्त, नन्दकिशोर गुप्त अनि शम्भुप्रसाद गुप्त, दल्लु टोला फारबिसगंज बिहारबाट सिराज परवाना, अन्सारी बेगम, राजा सौरभ, तरनुम तबस्सुम, इख्तियार बल्ला मास्टर अनि प्रदीप रौनियार, अप्पर सिरवारी खरसाङबाट एसएम दर्नाल, सुषमा सिंह, स्वयं शीला राई, पुष्पा छेत्री, करुणा अनि विनोद, राजविराज नेपालबाट श्याम कुमार हाकु, तारादेवी हाकु, राजन हाकु, कल्पना राई हाकु, सुम्निमा सन्नी, खुशबु, प्रिङ्की, श्रुति, पूजा हाकु, पूर्णिमा, राधेश्याम खात्की हाकु अनि रामकृष्ण खात्की हाकु, काठमाडौँ नेपालबाट सरोज दत्ता, चन्द्र दत्ता, अवनीश, आशिष, तरुण, रञ्जन र विदिता, बढी खन्जरपुर भागलपुरबाट गुरफलाज आलम, बेगम सम्मा आरा अनि जमालुद्दिन, शाह मार्केट भागलपुरबाट सिटिजन मास्टर अनि हुसेन मास्टर, डेन्सिङ रोड भागलपुरबाट अप्रोच आलम, बरकत आलम अनि सदाब, रिङ्नी छत्तिसगढबाट दिनेश वर्मा अनि करुणा वर्मा, गाउँ फारसी हिसारबाट राजकुमार डुडी, प्रमोद कुमार डुडी, पुष्पेन्द्र कुमार डुडी अनि सौरभ, मस्नुका टिल्ला दिल्लीबाट कमल बालुजा, मधु बालुजा अनि सागर बालुजा। त राखिरहेछौँ कार्यक्रमको यो प्रथम प्रस्तुति।

0: हाँ, ये हेलमेट अच्छा है, लेकिन ये सेफ है क्या?
1: चिंता मत कीजिए, इस हेलमेट पर ISI मार्क है।
0: और मुझे कैसे पता चलेगा कि ये असली है?
1: BIS केयर ऐप से, जहाँ आपको ये इम्पोर्टेंट डिटेल एक ही क्लिक में मिल जाएगी।
2: बनिए जागरूक ग्राहक और कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले उसकी प्रामाणिकता चेक करने के लिए आज ही डाउनलोड करें BIS केयर ऐप।
3: This helmet fits better. I'll buy this one. But are you sure about its safety features?
4: Don't worry. This helmet is ISI certified.
3: And how will I know if it's authentic?
4: Just by downloading the BIS Care app, where you can get all the necessary details in a click.
2: Be a vigilant consumer. Download the BIS Care app today to check the product's authenticity before purchase.
5: हाँ, ये रिंग अच्छी है, बीवी को पसंद भी आ जाएगी।
6: अरे यस सर, आपकी चॉइस बहुत अच्छी है और ये डिजाइन भी नया है।
5: डिजाइन नया है वो तो ठीक है, लेकिन सोने की प्योरिटी का प्रूफ कहाँ मिलेगा?
2: बनिए एक जागरूक ग्राहक, आज ही डाउनलोड कीजिए BIS केयर ऐप। सोना खरीदने से पहले BIS केयर ऐप पर HUID कोड अवश्य वेरीफाई करें।
7: राज प्यालेस मौनाथ बन्छन्, उत्तर प्रदेशबाट राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक वर्मा अनि आर्यन वर्मा। शिव मन्दिर हकिकतपुरा, उत्तर प्रदेशबाट मुन्ना स्वर्णकार, पिङ्की स्वर्णकार, रितेश कृष्ण अनि पिहु स्वर्णकार। नुरमहल मेसोल सीतामढीबाट मुसरत जहानाज, तलत जहानाज, फरत जहानाज, रिफत नुजहत जहानाज, साजिया साहिन अनि नाजिया नुरिनास। आकाशवाणी परिसर खरसाङबाट सुशान्त मुक्तान, रोशन शर्मा अनि उहाँका अन्य साथीहरू। अरेरा रजखर बजारबाट मोहम्मद शरीफ आर्जु, मोहसिन आर्जु, नवाब आर्जु, सबाब आर्जु अनि सरफराज खान। बङ्गाल रोड जोकीहाटबाट सोमिया नाजमिन, रुकेया आफरिन, रिहाना परविन, फरजाना खानम, सहना सबनम अनि नुसरत जानम। गर्ल्स स्कुल रोड मनिहारीबाट अवधेश गुप्ता, भोलु, निलु, विशालराज अनि वंशराज।

0: पाने ये पत। जूते की बात चली है तो एक जरूरी बात जो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, अब कोई भी इन्हें ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के ISI मार्क के बिना मैन्युफैक्चर, इंपोर्ट और सेल नहीं कर सकता। फुटवेयर की खरीदारी करते वक्त BIS का ISI मार्क जरूर देखें। BIS इंस्पायरिंग क्वालिटी।
1: कोई भी घरेलू सामान खरीदने से पहले सबसे पहले BIS क्वालिटी मार्क यानी ISI मार्क चेक करें, और अगर

0: हवस् त श्रोता, यस गीतको अन्त साथै कार्यक्रम तपाईँको अनुरोधमा फरमाइसी फिल्म सँगै सुनाउने क्रम यतिमा नै पुरा गरिन्छ। हामी आकाशवाणी खरसाङबाट बोलिरहेछौँ। अब पनि समय भएको छ अघिल्लो साङ्गीतिक प्रस्तुति मेलोडी टाइमको, तर श्रोता त्यसभन्दा पहिला राखिरहेछौँ यो सन्देश।
1: जुता है जापानी ये पर जूते की बात चली है तो एक जरूरी बात जो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, अब कोई भी इन्हें ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के ISI मार्क के बिना मैन्युफैक्चर, इंपोर्ट और सेल नहीं कर सकता। फुटवेयर की खरीदारी करते वक्त BIS का ISI मार्क जरूर देखें। BIS इंस्पायरिंग क्वालिटी।
2: कोई भी घरेलू सामान खरीदने से पहले सबसे पहले BIS क्वालिटी मार्क यानी ISI मार्क चेक करें, और अगर

0: मुख्य समाचार संध्या शर्माबाट सुन्नुहोस्।
1: दिस नेशनल
0: प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आज नयाँ दिल्लीमा बृहत् भारत विश्वभरि भारतको सांस्कृतिक सम्बन्ध विषयमाथि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन

0: का प्रस्ताव रखा। नई दिल्ली में आयोजित आसियान भारत रक्षा थिंक टैंक फोरम में रक्षा मंत्री ने कहा कि आतंकवाद, साइबर अपराध, समुद्री चुनौतियों और प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए सभी देशों को साथ आना होगा। उन्होंने कहा कि भारत और आसियान सदस्य देशों के शांतिपूर्ण, स्थिर और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र में साझा हित हैं और भारत के हिंद प्रशांत दृष्टिकोण में आसियान का महत्वपूर्ण स्थान है।
1: भारत और आसियान हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता, समृद्धि और खुले समावेशी सहयोग के पक्षधर हैं। आसियान भारत की हिंद प्रशांत नीति के केंद्र में है। भारत की एक्ट ईस्ट नीति तथा सागर और महासागर की परिकल्पनाएं खुले और बहुध्रुवीय सहयोग को बढ़ावा देती हैं, जिन्हें भारत आसियान में नेतृत्व वाले मंचों के माध्यम से आगे बढ़ाता है।
0: श्री सिंह ने कहा कि हिंद महासागर और दक्षिण पूर्व एशिया के समुद्री क्षेत्र आपस में जुड़े हुए हैं, जिससे इसकी सुरक्षा साझा जिम्मेदारी है।
1: हमें अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत समुद्री डकैती, मानव तस्करी, अवैध मछली पकड़ने और अन्य खतरों से निपटने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। इन प्रयासों में समुद्री सूचना केंद्रों के बीच नियमित संवाद, नौसेना और तटरक्षक बलों के बीच सहयोग तथा खोज बचाव, आपदा राहत और समुद्री बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के लिए संयुक्त अभ्यास शामिल हो सकते हैं।
0: श्री सिंह ने समुद्री आपदा मोचन पर अभ्यास सत्र और ड्रोन रोधी समाधानों पर संयुक्त अध्ययन जैसे पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने का सुझाव दिया। श्री सिंह ने चर्चाओं को जारी रखने के लिए संवाद को बढ़ावा देने की बात कही। श्री राजनाथ सिंह ने आसियान देशों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन और अंतरिक्ष आधारित प्रणालियों जैसी प्रौद्योगिकियों पर सहयोग करने के लिए आमंत्रित किया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि मध्यम शक्ति वाले देशों द्वारा तय नियमों को लागू करने में सहमति, आपसी समझ और साझा हित महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। मध्यम शक्ति वाले देशों यानी मिडिल पावर से आशय अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सहयोग में महत्वपूर्ण भूमिका रखने वाले देशों से हैं। नई दिल्ली में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में डॉ जयशंकर ने कहा कि धमकियों के माध्यम से दूसरे देशों पर अपनी शर्तें थोपने का युग समाप्त हो गया है। उन्होंने कहा कि विश्व नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है, जिसमें कई देश वैश्विक मामलों में अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान बदलाव को एक अलग प्रकार की व्यवस्था के विकास के रूप में देखा जाना चाहिए।
2: अब हम एक नई वैश्विक व्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं। इसमें देशों की हिस्सेदारी बदल रही है और निर्णय लेने में उनकी भूमिका बढ़ रही है। दुनिया किस दिशा में आगे बढ़ेगी, इस पर अब अधिक देश सक्रिय रूप से चर्चा कर रहे हैं। यह नई व्यवस्था भले ही पूरी तरह व्यवस्थित न हो और उसमें कुछ उलझने हो, लेकिन यह पुराने अनुभवों, देशों के अपने हितों और व्यवस्था बिगड़ने के संभावित परिणामों की चिंता को ध्यान में रखकर विकसित होगी।
0: विदेश मंत्री ने कहा कि भारत विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला देश है, जिसकी जीडीपी लगभग $4 trillion है और इसमें विकास की अपार संभावनाएं हैं। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ने पिछले 4 वर्षों में 38 विकसित देशों के साथ वरीयता आधारित व्यापार समझौते किए हैं। आज नई दिल्ली में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में श्री गोयल ने कहा कि भारत का लक्ष्य भारतीय व्यवसायों के लिए बाजार पहुंच को बढ़ाना और देश के बाजारों को वैश्विक साझेदारों के लिए खोलना है। श्री गोयल ने कहा कि भारत कनाडा, मेक्सिको, मर्कोसुर, यूरेशिया और कई अन्य देशों के साथ व्यापार समझौतों पर बातचीत कर रहा है।
3: From $10 trillion of GDP.
4: भारत को 2014 तक कई देशों के बाजारों में विशेष व्यापारिक पहुंच हासिल थी, जिनकी कुल अर्थव्यवस्था लगभग $10 trillion थी। आज भारत के व्यापार समझौतों के दायरे में लगभग $70 trillion की संयुक्त अर्थव्यवस्था वाले देश शामिल हैं। हमारा लक्ष्य $115 trillion की वैश्विक अर्थव्यवस्था में से $85 trillion की अर्थव्यवस्था वाले देशों के बाजारों तक भारत की पहुँच बढ़ाना है।
0: श्री गोयल ने भारत अमेरिका संबंधों पर कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध बेहद महत्वपूर्ण है और राजनीतिक विचारधारा में बदलाव के बावजूद ये और मजबूत होंगे।
5: भारत के संबंध अमेरिका के साथ कई अहम क्षेत्रों में मजबूत हैं। इनमें व्यापार, रक्षा, तकनीक, महत्वपूर्ण खनिजों और दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क जैसे क्षेत्र शामिल हैं। हम कई स्तरों पर अमेरिका के साथ संवाद कर रहे हैं। भारत और अमेरिका के संबंध बेहद महत्वपूर्ण हैं और आने वाले समय में इनके और मजबूत होने की उम्मीद है।
0: केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

0: कंपनी वैष्णव ने कहा है कि लागत संबंधी पहलुओं के साथ साथ वैश्विक सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला में विश्वास और साइबर सुरक्षा का महत्व लगातार बढ़ता जा रहा है। आज नई दिल्ली में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में श्री वैष्णव ने कहा कि भारत का लक्ष्य सेमीकंडक्टर डिजाइन, निर्माण और तैयार उत्पादों के परीक्षण में विश्वसनीय भागीदार के रूप में अपनी स्थिति मजबूत करना है। श्री वैष्णव ने कहा कि सतत विनिर्माण के लिए संपूर्ण तंत्र विकसित करना आवश्यक है।
1: मटेरियल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट।
2: सेमीकंडक्टर के लिए जरूरी सामग्री का पूरा तंत्र विकसित करने में काफी समय और मेहनत लगती है, इसलिए भारत में हमें इस दिशा में विशेष प्रयास करने होंगे। इसमें सामग्री की पहचान और समझ से लेकर उसे संभालने, बनाने, प्रसंस्करण, भंडारण और चिप सहित अन्य विनिर्माण प्रक्रियाओं में इस्तेमाल करने की क्षमता विकसित करना शामिल है। हमारा लक्ष्य ऐसा तंत्र तैयार करना है जो भारत के लिए भी उपयोगी हो और पूरी दुनिया के लिए भी।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि भारत अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहा है। पिछले 5 वर्षों में भारत का सार्वजनिक ऋण सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में 61% से घटकर 55% रह गया है। उन्होंने कहा कि देश का लक्ष्य वित्तीय, आर्थिक और तकनीकी क्षेत्रों में मजबूती लाना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: आपको हर खबर से रखे अपडेट एक्सपर्ट @AIRNewsHindi और पब्लिक पर @AIRNewsAlerts को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। देश में थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति इस वर्ष सितंबर में बढ़कर 11.39% हो गई है। अगस्त में ये 9.92% थी। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार खनिज तेल, खाद्य पदार्थों, कच्चे पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कोयला और धातुओं की कीमतों में वृद्धि से थोक मुद्रास्फीति की दर बढ़ी है। रसायन, कपड़ा, रबड़, प्लास्टिक और बिजली के उपकरणों की कीमतों में बढ़ोतरी का भी इसमें योगदान रहा। दिल्ली की विशेष अदालत ने आज सीजेपी नेताओं सौरव दास और आशुतोष रांका को 5 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। वहीं अजिंक्य शिंदे को निजी मुचलके पर रिहा कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस ने कल राष्ट्रीय राजधानी में जंतर मंतर में घुसने की कोशिश कर रहे सीजेपी नेताओं दास, रांका और अन्य लोगों को हिरासत में लिया था। उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद उभरते विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार सम्मेलन से पहले कल हरियाणा के करनाल स्थित केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान में कार्यक्रम आयोजित करेगी। इसमें कृषि प्रौद्योगिकी, खाद्य प्रणालियों और पोषण के क्षेत्र में हो रहे नवाचारों पर मीडिया से संवाद होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज आंध्र प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर विजयवाड़ा जाएंगी। वे आज शाम विजयवाड़ा के श्री कनक दुर्गा मंदिर में पूजा अर्चना करेंगी। राष्ट्रपति कल विजयवाड़ा में राष्ट्रीय सरस मेला 2026 का उद्घाटन करेंगी। मेले में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वयं सहायता समूहों की 1500 से अधिक महिलाएं हिस्सा ले रही हैं। देश में वर्ष 2015 से 2024 के बीच टीबी के नए मामलों में 21% की कमी दर्ज की गई है, जबकि वैश्विक स्तर पर ये कमी 12% रही। एक बयान में सरकार ने कहा है कि टीबी के इलाज का दायरा बढ़कर 92% हो गया है, जबकि वैश्विक औसत 78% है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: भारत में टीबी के मामलों में लगातार हो रही कमी यह दर्शाती है कि निरंतर प्रयासों, सामुदायिक भागीदारी और मजबूत जन स्वास्थ्य योजनाओं से सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है। टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत अब तक 28 करोड़ से अधिक लोगों की जांच की जा चुकी है। 20 लाख से ज्यादा लोगों को टीबी से बचाव की दवा दी गई है, जबकि 5,70,000 नए निक्षय मित्र इस अभियान से जुड़ चुके हैं। देश भर के सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों और ज्यादातर निजी स्वास्थ्य केंद्रों में टीबी की जाँच और इलाज मुफ्त में कराया जाता है। वहीं टीबी के खिलाफ भारत की लड़ाई में लोगों की भागीदारी को और मजबूत करने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने जोश पहल की शुरुआत की है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। जनसेवा से देश सेवा उनकी यात्रा का मूल मंत्र रहा है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण के साथ सरकार भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। आज इस विशेष श्रृंखला में हम आपको बताएंगे कि देश के विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सामरिक रूप से महत्वपूर्ण सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को कैसे मजबूत किया जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश में स्थित सेला सुरंग इसी संकल्प का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है।

0: प्रधानमंत्री मोदी ने 9 मार्च 2024 को इस सुरंग को राष्ट्र को समर्पित किया था।
1: अरुणाचल प्रदेश में लगभग 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित सेला सुरंग पूर्वी हिमालय के दुर्गम क्षेत्र में इंजीनियरिंग कौशल की एक बड़ी मिसाल है। लगभग 825 करोड़ रुपए की लागत से बनी इस परियोजना में दो सुरंगें हैं जिनकी लंबाई लगभग 1,003 मीटर और 1,595 मीटर है। इस सुरंग का उद्देश्य असम के तेजपुर और अरुणाचल प्रदेश के तवांग के बीच हर मौसम में बेहतर संपर्क सुनिश्चित करना है। इससे भारी बर्फबारी और खराब मौसम के दौरान भी आवाजाही आसान होगी। सामरिक दृष्टि से ये सुरंग बेहद महत्वपूर्ण है। इससे ऊंचाई पर स्थित सेला दर्रे की चुनौतियों से निपटने और सीमावर्ती क्षेत्र में सेना के जवानों, सैन्य उपकरणों तथा आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही सुगम बनाने में मदद मिलेगी। इससे सेना की परिचालन तैयारियां भी मजबूत होगी। सुरंग से स्थानीय लोगों को भी लाभ होगा। बेहतर सड़क संपर्क से स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा, बाजारों और अन्य जरूरी सुविधाओं तक पहुंच आसान होगी। साथ ही पर्यटन और आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। सेला सुरंग दूरदराज और सीमावर्ती क्षेत्रों में आधुनिक बुनियादी ढांचे के विकास के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। ये परियोजना राष्ट्रीय सुरक्षा और क्षेत्रीय विकास के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी है। जम्मू से गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर, लद्दाख, तमिलनाडु और पुदुचेरी में आज तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और पश्चिमी राजस्थान में शुक्रवार तक ओलावृष्टि की संभावना है। अगले दो दिन में आंध्र प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, विदर्भ, हिमाचल प्रदेश, केरलम, दक्षिण आंतरिक कर्नाटका, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में गरज के साथ बारिश हो सकती है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच चौथा T20 क्रिकेट मैच आज हैदराबाद के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। भारत 5 मैचों की श्रृंखला में 2-1 से आगे है। भारतीय सेना की असम रेजिमेंट के जवानों ने वेल्स में आयोजित कैम्ब्रियन गश्ती 2026 अभ्यास में स्वर्ण पदक जीता है। भारतीय सेना ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस चुनौतीपूर्ण सैन्य गश्ती अभ्यास में भारतीय टीम ने 100 से अधिक टीमों के साथ मुकाबला किया। ये अभ्यास इस महीने की 2 से 12 तारीख तक आयोजित किया गया था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने समुद्री सुरक्षा और उभरती प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित संयुक्त भारत आसियान अनुसंधान एजेंडा विकसित करने का प्रस्ताव रखा। विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने कहा, विश्व एक नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है जिसमें कई देश वैश्विक मामलों में अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। भारत की थोक मूल्य आधारित मुद्रास्फीति इस वर्ष सितंबर में बढ़कर 11.39% हुई। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, तमिलनाडु और पुदुचेरी में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान। और भारत और वेस्टइंडीज के बीच चौथा T20 क्रिकेट मैच आज हैदराबाद में खेला जाएगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: भारत सरकार के नियमों के अनुसार 450 से अधिक उत्पाद जैसे ज्वेलरी, टॉयज, हेलमेट, इलेक्ट्रॉनिक्स इत्यादि ऐसे हैं जिनके निर्माण, आयात या सेल के लिए BIS मानक चिन्ह आवश्यक है। एक जागरूक ग्राहक बनिए, किसी भी प्रोडक्ट को खरीदते वक्त उस पर BIS मानक चिन्ह जरूर देखें और उस प्रोडक्ट की प्रामाणिकता जाँचने के लिए आज ही

0: This helmet fits better. I'll buy this one. But are you sure about its safety features?
1: Don't worry. This helmet is ISI certified.
0: And how will I know if it's authentic?
1: Just by downloading the BIS Care app, where you can get all the necessary details in a click.
2: Be a vigilant consumer. Download the BIS Care app today to check the product's authenticity before purchase.
3: आपके 4,800 रिवॉर्ड पॉइंट्स आज एक्सपायर हो रहे हैं, अभी रिडीम करें।
4: अरे वाह, मेरे इतने पॉइंट्स कैसे आए?
5: बस यही पूछो व्हाई। रिवॉर्ड पॉइंट्स के नाम पर आए किसी अननोन लिंक पर क्लिक करने से पहले सोचिए। एक व्हाई आपको फ्रॉड से बचाए।
3: हमेशा पूछो WHY, व्हाई कहता है कैप्टन व्हाई ऑफ SBI,
5: आपका साइबर रक्षक।
6: हाँ, ये रिंग अच्छी है, बीवी को पसंद भी आ जाएगी।
7: अरे यस सर, आपकी चॉइस बहुत अच्छी है और ये डिजाइन भी नया है।
6: डिजाइन नया है वो तो ठीक है, लेकिन सोने की प्योरिटी का प्रूफ कहाँ मिलेगा?
2: बनिए एक जागरूक ग्राहक, आज ही डाउनलोड कीजिए BIS केयर ऐप। सोना खरीदने से पहले BIS केयर ऐप पर HUID कोड अवश्य वेरीफाई करें।
8: श्रोता बराखी रहेछौं कार्यक्रमको

0: प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आज नयाँ दिल्लीमा बृहत्तर भारत विश्वभरि भारतको सांस्कृतिक सम्बन्ध शीर्षकमाथि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनलाई भिडियो सन्देश मार्फत सम्बोधन गर्नुहुनेछ। संस्कृति मन्त्रालयले आजदेखि नयाँ दिल्लीमा बृहत्तर भारत अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको आयोजना गर्दैछ। सम्मेलनको विषय भारतको वैश्विक सांस्कृतिक सम्बन्ध रहेको छ। सम्मेलनमा केन्द्रीय संस्कृति मन्त्री गजेन्द्र सिंह शेखावतले भाग लिनुहुनेछ। तीन दिनसम्म चल्ने सम्मेलनमा 50 देशका प्रतिनिधि, राजदूत र विद्वानहरूले भारतको ऐतिहासिक र समकालीन सांस्कृतिक सम्बन्धका बारेमा चर्चा गर्नेछन्। चीन, जापान, मंगोलिया, नेपाल र इरानका सहभागीहरूले साझा सांस्कृतिक विरासत र सभ्यताको आदान प्रदानमा चर्चा गर्नेछन्। यो सम्मेलन बृहत्तर भारत परिषदको शताब्दीको उपलक्ष्यमा आयोजना गरिएको छ।
1: तीन दिवसीय सम्मेलन में 50 देशों के प्रतिनिधि, राजदूत और विद्वान एकत्रित होंगे। इस सम्मेलन में भारत के ऐतिहासिक और समकालीन सांस्कृतिक संबंधों तथा विश्व के विभिन्न देशों के साथ उसके जुड़ाव पर विचार विमर्श किया जाएगा। चीन, जापान, मंगोलिया, नेपाल और ईरान सहित विभिन्न देशों के प्रतिभागी साझा सांस्कृतिक विरासत और सभ्यतागत आदान प्रदान से जुड़े विषयों पर होने वाली चर्चाओं में योगदान देंगे। यह सम्मेलन ग्रेटर इंडिया सोसाइटी की स्थापना के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केन्द्रीय इलेक्ट्रोनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मन्त्री अश्विनी वैष्णवले लागत पक्षका साथै वैश्विक सेमिकन्डक्टर मूल्य श्रृङ्खलामा विश्वास र साइबर सुरक्षाको महत्व निरन्तर बढिरहेको बताउनु भएको छ। आज नयाँ दिल्लीमा ब्लुमबर्ग न्यू इकोनोमी फोरमलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै श्री वैष्णवले भारतले सेमिकन्डक्टर डिजाइन, निर्माण र तयार उत्पादहरूको परीक्षणमा एक विश्वसनीय साझेदारको रूपमा आफ्नो स्थितिलाई बलियो बनाउने लक्ष्य राखेको बताउनु भएको छ।
2: Materials are very important.
3: सेमीकंडक्टर के लिए जरूरी सामग्री का पूरा तंत्र विकसित करने में काफी समय और मेहनत लगती है, इसलिए भारत में हमें इस दिशा में विशेष प्रयास करने होंगे। इसमें सामग्री की पहचान और समझ से लेकर उसे संभालने, बनाने, प्रसंस्करण, भंडारण और चिप सहित अन्य विनिर्माण प्रक्रियाओं में इस्तेमाल करने की क्षमता विकसित करना शामिल है। हमारा लक्ष्य ऐसा तंत्र तैयार करना है जो भारत के लिए भी उपयोगी हो और पूरी दुनिया के लिए भी।
2: Which becomes good for us, good for the world.
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंहले शान्तिपूर्ण, स्थिर र स्वतन्त्र हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा भारत र आसियान साझा हितहरू साझा गर्ने बताउनु भएको छ। आज बिहान नयाँ दिल्लीमा आसियान भारत रक्षा थिङ्क ट्याङ्क फोरमलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै श्री राजनाथ सिंहले आसियान भारतको हिन्द प्रशान्त दृष्टिकोणको केन्द्रबिन्दु रहेको बताउनुभयो।
4: We should also work against piracy.
5: हमें अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत समुद्री डकैती, मानव तस्करी, अवैध मछली पकड़ने और अन्य खतरों से निपटने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। इन प्रयासों में समुद्री सूचना केंद्रों के बीच नियमित संवाद, नौसेना और तटरक्षक बलों के बीच सहयोग तथा खोज बचाव, आपदा राहत और समुद्री बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के लिए संयुक्त अभ्यास शामिल हो सकते हैं।
0: विदेश मन्त्री डाक्टर एस जयशंकरले मध्य शक्तिहरूले सहमति गरेका नियमहरूको कार्यान्वयनमा सहमति, आपसी समझदारी र साझा हितले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताउनु भएको छ। नयाँ दिल्लीमा ब्लुमबर्ग न्यू इकोनोमी फोरममा बोल्नुहुँदै डाक्टर जयशंकरले धम्कीको माध्यमद्वारा अरूमाथि आफ्नो सर थोप्ने युग समाप्त भएको बताउनु भएको छ। वाणिज्य मन्त्री पीयूष गोयलले भारतको विगत 4 वर्षमा 38 विकसित देशहरूलाई प्राथमिकता दिँदै व्यापार सम्झौताहरू गरेको बताउनु भएको छ। आज नयाँ दिल्लीमा ब्लुमबर्ग न्यू इकोनोमी फोरममा बोल्नुहुँदै श्री गोयलले भन्नुभयो, भारतले भारतीय व्यवसायहरूका लागि बजार पहुँच बढाउने र देशको बजारलाई वैश्विक साझेदारहरूका लागि खुला गर्ने लक्ष्य राखेको छ। समाचार आकाशवाणीबाट सुन्दै हुनुहुन्छ। ताजा समाचार जान्नका लागि सोसियल मिडिया ह्यान्डल एक्समा @AIRNews गर्छौं अनि फेसबुकमा आकाशवाणी समाचार नेपालीलाई फलो गर्न सक्नुहुनेछ। अब रहल समाचार। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आज नवरात्रको चौथो दिन माता कुष्माण्डाको पूजा गर्नुभयो। एक सामाजिक सञ्जाल पोस्टमा श्री मोदीले उहाँको असीम ऊर्जाले सबै देशवासीहरूको जीवनमा नयाँ आशा, खुशी, समृद्धि र राम्रो स्वास्थ्य ल्याओस् भन्ने कामना गर्नुभएको छ। नयाँ दिल्लीमा हिज बिम्स्टेकका गृहमन्त्रीहरूको पहिलो बैठक दिल्ली घोषणापत्र पारित भएसँगै सम्पन्न भयो। दिल्ली घोषणापत्रमा बिम्स्टेक देशहरूले सीमापार आतंकवाद लगायत सबै प्रकार र अभिव्यक्तिहरूमा आतंकवादको कडा निन्दा गरेका छन्। घोषणापत्रमा सदस्य देशहरूले संयुक्त राष्ट्रको चार्टर र अन्तर्राष्ट्रिय कानून अनुसार व्यापक र निरन्तर प्रयासहरू मार्फत आतंकवाद र हिंसात्मक उग्रवादको रोकथाम, सामना गर्ने र उन्मूलन गर्ने आफ्नो संकल्प दोहोर्याएका छनृ।

0: भर्खरै श्रोताहरूले सुन्नुभयो शशिकला शर्मा अनि गणेश डुङ्गेलको युगल स्वरलाई। संगीत जय राईको अनि शब्द रचना थियो थमन नौबाङको।
1: जूते की बात चली है तो एक जरूरी बात जो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, अब कोई भी इन्हें ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के ISI मार्क के बिना मैन्युफैक्चर, इंपोर्ट और सेल नहीं कर सकता। फुटवेयर की खरीदारी करते वक्त BIS का ISI मार्क जरूर देखें। BIS इंस्पायरिंग क्वालिटी।
2: कोई भी घरेलू सामान खरीदने से पहले सबसे पहले BIS क्वालिटी मार्क यानी ISI मार्क चेक करें और

0: आईएस क्वालिटी मार्क अनिवार्य कर दिया है, तो आज ही डाउनलोड कीजिए BIS केयर ऐप, BIS इंस्पायरिंग क्वालिटी।
1: अब प्रस्तुत छ समसामयिक समीक्षा, अनुवादक तथा वाचिका सीमा छेत्री। विषय छ सन् 2030 सम्ममा भारत ब्रिटेन द्विपक्षीय व्यापार दोब्बर बनाउन भारतको आह्वान। आलेख विदेश सेवा डेस्क एनएसटी आकाशवाणी। भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्री श्री पीयूष गोयलले भारत र ब्रिटेनका व्यवसायीहरूलाई व्यापक आर्थिक व्यापार सम्झौता सीईटीए द्वारा सृजना गरिएका

0: का लागि विभिन्न क्षेत्रहरूमा महत्वपूर्ण अवसरहरू खोल्दछ। सम्झौताले सेवाहरूमा पनि नयाँ अवसरहरू खोलेको छ। उहाँले अझ भन्नुभयो, सामाजिक सुरक्षा दोहोरो योगदान महासन्धिले प्रतिस्पर्धी मूल्यमा सेवाहरूको आपूर्ति र सुधारिएको नाफा मार्फत दुवै अर्थतन्त्रलाई थप फाइदा पुर्याउन सक्छ। सम्झौतालाई मूर्त व्यावसायिक परिणाम गर्ने आवश्यकतामा जोड़ दिँदै मन्त्रीले यो बताउनुभयो। यो सम्झौताले दैलो खोल्दछ र व्यवसायीहरूले काम गर्न पर्नेछ। श्री गोयलले भारत र ब्रिटेन एक अर्काका पूरक अर्थतन्त्र भएको बताउनुभयो, जसमा विद्यमान व्यापार विस्तार गर्ने नयाँ निर्यात अवसरहरू विकास गर्ने र आदान प्रदान गरिएको उत्पादनहरूको दायरामा विविध उत्पादन गर्ने पर्याप्त सम्भावना रहेको पनि बताउनुभयो। भारतले स्केल ल्याउँछ, उत्पादन आधारलाई गहिरो बनाउँदै विश्वस्तरीय डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधार आधार र ब्रिटेनमा उपलब्ध सबैभन्दा कान्छो प्रतिभा फूलको बल ल्याउँछ, जबकि निर्माणले विश्वमा अनुसन्धानमा डिजाइन उन्नत प्रविधिहरू र विश्वको अग्रणी वित्तीय केन्द्रहरूमध्ये एक हुनेछ। विद्यमान व्यापार पूरकताहरूलाई प्रकाश पार्दै मन्त्रीले उल्लेख गर्नुभयो, भारत एक प्रमुख उत्पादन केन्द्र बन्दैछ। भारतका उत्पादनहरूमा गहना, कपड़ा, छालाका स्मार्टफोन, औषधि, चामल र केही कृषि उत्पादनहरू, फलाम र गैर मिश्र धातु, इस्पात मेसिनरी, पाटपूर्जा र अटो कम्पोनेन्टहरूको प्रमुख निर्यातकर्ता थियो। ब्रिटेनको तर्फबाट उहाँले पेट्रोलियम मूल्य श्रृंखलामा उत्पादनहरूको आपूर्तिमा सम्भावना, इलेक्ट्रोनिक्समा प्रविधि उत्पादनहरू पहिचान गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, व्यापक सीईटीएले व्यापार विस्तार गर्न, नयाँ निर्यातकर्ताहरूलाई प्रोत्साहन गर्न र नयाँ उत्पादन लाइनहरू परिचय गर्न असंख्य अवसरहरू खोलेको छ। मन्त्री गोयलले दुवै दिशामा लगानीका लागि उल्लेखनीय सम्भावना रहेको पनि प्रकाश पार्नुभयो। भारत ब्रिटेन सहयोगका लागि 5 प्राथमिकता क्षेत्रहरू तय गर्दै श्री गोयलले भन्नुभयो, पूर्वाधार र स्वच्छ ऊर्जाले परियोजना विकास, नवीकरणीय ऊर्जा प्रसारण लाइनहरू र उपयोगिता वित्त पोषणले देशहरूमा दुवै दिगो विकासलाई समर्थन गर्ने अवसरहरू प्रदान गर्नेछ।
1: भारत सरकार के नियमों के अनुसार 450 से अधिक उत्पाद जैसे ज्वेलरी, टॉयज, हेलमेट, इलेक्ट्रॉनिक्स इत्यादि ऐसे हैं जिनके निर्माण, आयात या सेल के लिए BIS मानक चिन्ह आवश्यक है। एक जागरूक ग्राहक बनिए, किसी भी प्रोडक्ट को खरीदते वक्त उस पर BIS मानक चिन्ह जरूर देखें और उस प्रोडक्ट की प्रमाणिकता जाँचने के लिए आज ही डाउनलोड करें BIS केयर ऐप।
2: बेटी के लिए गहने बनवाए एकदम खरे हॉलमार्क के, और तो और दुकानदार ने खुद 15 मिनट में हॉलमार्क के निशान लगाकर भी दिए।
3: अरे बुद्धू, हॉलमार्क गहने तो सिर्फ BIS लाइसेंस होल्डर ज्वेलर ही बेचते हैं, और BIS हॉलमार्क करने के लिए 4 से 5 घंटे का वक्त लगता है।
4: अगर आप भी किसी ऐसे धोखे का शिकार हुए हैं तो BIS की वेबसाइट BIS.org.in पर शिकायत करें। जागो ग्राहक जागो।
5: मेरा जूता है जापानी लेदर। जूते की बात चली है तो एक जरूरी बात जो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, अब कोई भी इन्हें ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के ISI मार्क के बिना मैन्युफैक्चर, इंपोर्ट और सेल नहीं कर सकता। फुटवेयर की खरीदारी करते वक्त BIS का ISI मार्क जरूर देखें। BIS इंस्पायरिंग क्वालिटी।
6: कोई भी घरेलू सामान खरीदने से पहले सबसे पहले BIS क्वालिटी मार्क यानी ISI मार्क चेक करें

0: TIS क्वालिटी मार्क अनिवार्य कर दिया है। तो आज ही डाउनलोड कीजिए BIS केयर ऐप। BIS इंस्पायरिंग क्वालिटी।
1: श्रोता अब हजुरहरूको मनोरञ्जन हेतु लिएर आएका छौँ हिन्दी चलचित्रका गीतहरू। त प्रथम फिल्म सङ्गीत सुनाउन लागि रहेछौँ खामोशी चलचित्रबाट अल्का याग्निक अनि हरियरणको युगल स्वरमा। सङ्गीत जतिन ललितको अनि शब्द रहेको छ।

0: श्रोतावसुन्नोस् सूचना स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित आफ्ना जिज्ञासा र समस्याहरूको समाधान खोज्दै हुनुहुन्छ, त्यसो भए सुन्न नभुल्नुहोस् स्वस्थ शरीर स्वास्थ्य सम्बन्धी विशेष प्रत्यक्ष फोन इन कार्यक्रम आज साँझ 5:05 एफएम 103.5 MHz प्रसारण हुनेछ। यसपटकको कार्यक्रममा हाम्रो स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुनेछ स्पेसियलिस्ट भेटेरियो रेटिना डाक्टर भूपेन्द्रजीत सिंह, जहाँ डाक्टरले आँखा तथा दृष्टि सम्बन्धी समस्याहरूबारे श्रोताहरूका जिज्ञासाको प्रत्यक्ष रूपमा जवाब दिनुहुनेछ। आफ्नो स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रश्न लिएर तपाईँ पनि कार्यक्रममा सहभागी बन्न सक्नुहुनेछ। डाक्टरसँग सोझै फोन गरेर आफ्ना समस्या तथा जिज्ञासा राख्नुहोस् र डाक्टरको सल्लाह प्राप्त गर्नुहोस्। हाम्रो फोन नम्बर रहेको छ 0354299931। त्यसैले कार्यक्रम सुन्न नभुल्नुहोला आज साँझ 5:05 आकाशवाणी खरसाङ एफएम 103.5 MHz र सहभागी बन्नुहोस् फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ शरीर स्वस्थ जीवनका लागि स्वस्थ कुराकानी, तपाईँको स्वास्थ्य हाम्रो सरोकार। र फोन नम्बर फेरि एकपटक सुन्नुहोस् 0354299931।
1: हाँ, ये रिंग अच्छी है, बीवी को पसंद भी आ जाएगी।
2: अरे यस सर, आपकी चॉइस बहुत अच्छी है और ये डिजाइन भी नया है।
1: डिजाइन नया है वो तो ठीक है, लेकिन सोने की प्योरिटी का प्रूफ कहाँ मिलेगा?
3: बनिए एक जागरूक ग्राहक, आज ही डाउनलोड कीजिए BIS केयर ऐप। सोना खरीदने से पहले BIS केयर ऐप पर HUID कोड अवश्य वेरीफाई करें।
4: हाँ, ये हेलमेट अच्छा है, लेकिन ये सेफ है क्या?
5: चिंता मत कीजिए, इस हेलमेट पर ISI मार्क है।
4: और मुझे कैसे पता चलेगा कि ये असली है?
5: BIS केयर ऐप से, जहां आपको ये इम्पोर्टेंट डिटेल एक ही क्लिक में मिल जाएगी।
3: बनिए जागरूक ग्राहक और कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले उसकी प्रामाणिकता चेक करने के लिए आज ही डाउनलोड करें BIS केयर ऐप।
6: दिस हेलमेट फिट्स बेटर, आई बाय दिस वन। But are you sure about its safety features?
7: Don't worry, this helmet is ISI certified.
6: And how will I know if it's authentic?
7: Just by downloading the BIS Care app, where you can get all the necessary details in a click.
3: Be a vigilant consumer. Download the BIS Care app today to check the product's authenticity before purchase.
1: हाँ, ये रिंग अच्छी है, बीवी को पसंद भी आ जाएगी।
2: अरे यस सर, आपकी चॉइस बहुत अच्छी है और ये डिजाइन भी नया है।
1: डिजाइन नया है वो तो ठीक है, लेकिन सोने की प्योरिटी का प्रूफ कहाँ मिलेगा?
3: बनिए एक जागरूक ग्राहक, आज ही डाउनलोड कीजिए BIS केयर ऐप। सोना खरीदने से पहले BIS केयर ऐप पर HUID कोड अवश्य वेरीफाई करें।
0: शब्द समीर को, संगीत प्रीतम को, स्वर अतीब असलमको। त आउनु श्रोता, स्वीकार्नुहोस् कार्यक्रमको अन्तिम फिल्म सङ्गीत रेस चलचित्रबाट।

0: भारत सरकार के नियमों के अनुसार 450 से अधिक उत्पाद जैसे ज्वेलरी, टॉयज, हेलमेट, इलेक्ट्रॉनिक्स इत्यादि ऐसे हैं जिनके निर्माण, आयात या सेल के लिए BIS मानक चिन्ह आवश्यक है। एक जागरूक ग्राहक बनिए, किसी भी प्रोडक्ट को खरीदते वक्त उस पर BIS मानक चिन्ह जरूर देखें और उस प्रोडक्ट की प्रामाणिकता जाँचने के लिए आज ही डाउनलोड करें BIS केयर ऐप।
1: आपके 4,800 रिवॉर्ड पॉइंट्स आज एक्सपायर हो रहे हैं, अभी रिडीम करें।
2: अरे वाह, मेरे इतने पॉइंट्स कैसे आए?
3: बस यही पूछो Why? रिवॉर्ड पॉइंट्स के नाम पर आए किसी अननोन लिंक पर क्लिक करने से पहले सोचिए। एक Why आपको फ्रॉड से बचाए।
1: हमेशा पूछो WHY Why? कहता है कैप्टन Y ऑफ SBI,
3: आपका साइबर रक्षक।
4: बेटी के लिए गहने बनवाए एकदम खरे हॉलमार्क के, और तो और दुकानदार ने खुद 15 मिनट में हॉलमार्क के निशान लगाकर भी दिए।
5: अरे बुद्धू, हॉलमार्क गहने तो सिर्फ BIS लाइसेंस होल्डर ज्वेलर ही बेचते हैं, और BIS हॉलमार्क करने के लिए 4-5 घंटे का वक्त लगता है।
6: अगर आप भी किसी ऐसे धोखे का शिकार हुए हैं तो BIS की वेबसाइट bis.org.in पर शिकायत करें। जागो ग्राहक जागो।
7: सर 5,000 रुपए लगाइए और 8,000 रुपए प्रॉफिट पाइए, ये देखिए प्रूफ का स्क्रीनशॉट।
8: वाओ, स्क्रीनशॉट का प्रॉफिट असली है या सिर्फ स्क्रीन पे? व्हाट्सएप या टेलीग्राम इन्वेस्टमेंट ग्रुप्स में फेक प्रॉफिट्स और स्मॉल रिवॉर्ड से ट्रस्ट बनाया जाता है, फिर इन्वेस्टमेंट बढ़ता जाता है। इसलिए
1: हमेशा पूछो WHY Why? कहता है कैप्टन Y ऑफ SBI,
3: आपका साइबर रक्षक।
9: सबदा आशीष थापाको संगीत भूपेन्द्र राईको। ताउनु श्रोता, राखिरहेछौ कार्यक्रमको अघिल्लो प्रस्तुति बानीका प्रधान अनि साथीहरूको स्वरमा।

0: সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তর দ্বারা জনস্বার্থে প্রচারিত।
1: This helmet fits better. I'll buy this one. But are you sure about its safety features?
2: Don't worry. This helmet is ISI certified.
1: And how will I know if it's authentic?
2: Just by downloading the BIS Care app, where you can get all the necessary details in a click.
3: Be a vigilant consumer. Download the BIS Care app today to check the product's authenticity before purchase.
4: हाँ, ये हेलमेट अच्छा है, लेकिन ये सेफ है क्या?
5: चिंता मत कीजिए, इस हेलमेट पर ISI मार्क है।
4: और मुझे कैसे पता चलेगा कि ये असली है?
5: BIS केयर ऐप से, जहाँ आपको ये इम्पोर्टेंट डिटेल एक ही क्लिक में मिल जाएगी।
3: बनिए जागरूक ग्राहक और कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले उसकी प्रामाणिकता चेक करने के लिए आज ही डाउनलोड करें BIS केयर ऐप।
6: श्रोता अब कार्यक्रमको अघिल्लो आधुनिक गीत सुनाउन लागिरहेछौं। रविन सिंहको स्वर अनि शब्द रचनामा

0: हामी आकाशवाणीको खरसाङ केन्द्रबाट बोलिरहेका छौँ र अबको केही क्षणमा नै समा प्रसारण गरी सुनाइरहेछौँ आकाशवाणी दिल्ली केन्द्रको हिन्दीमा समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज तीन महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन का बोनस देने की घोषणा की गई है। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि प्रत्येक पात्र कर्मचारी को अधिकतम 17,951 रुपए का भुगतान किया जाएगा।
2: रेलवे के करीब 11,40,770 कर्मचारियों के लिए परफॉर्मेंस लिंक्ड बोनस 78 दिनों का बोनस आज कैबिनेट ने अप्रूव किया। ये दीपावली का उपहार है रेलवे के सभी कर्मठ कर्मचारियों के लिए जो दिन रात मेहनत करते हैं। करीब 2,009 करोड़ रुपए का टोटल बोनस है।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि रेलवे में बड़े पैमाने पर भर्ती अभियान चल रहा है।
2: रेलवे में मैसिव रिक्रूटमेंट चल रहा है। भर्तियां करीब 1,65,000 भर्तियां निकली हुई है जिसपे एग्जाम लगातार चल रहा है। अब तक करीब करीब 37,000 रोजगार पक्की नौकरी दी जा चुकी है रेलवे में इसी पिछले कुछ समय में ही। टोटल अगर 2014 से अब तक की देखें तो करीब 5.5 लाख भर्तियां रेलवे में की गई है।
1: उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को 5 वर्षों की अवधि के लिए जारी रखने को स्वीकृति दी है।
2: दूसरा बड़ा फैसला आज लिया गया है वंचितों को वरीयता, जो हमारे वीक सेक्शंस हैं सोसाइटी के, वल्नरेबल सेक्शंस हैं, उनके लिए सोशल सिक्योरिटी नेट का एक्सपेंशन, इसे 2031 तक बढ़ाया गया है और टोटल 53,428 करोड़ रुपीज का प्रावधान सोशल सिक्योरिटी नेट के एक्सपेंडेड फॉर्म में किया गया है।
1: श्री वैष्णव ने कहा कि दिव्यांगजन पेंशन योजना के अंतर्गत अब 79 वर्ष तक की आयु वर्ग के लिए सहायता राशि 375 रुपए और 80 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के लिए 625 रुपए होगी।
2: दिव्यांगजनों के लिए जो पहले 80% थ्रेशोल्ड था डिसेबिलिटी पेंशन में एलिजिबिलिटी के लिए, उसको आधा करके 40% पर भी अब दिव्यांग पेंशन दिया जाएगा। और पहले दिव्यांग पेंशन 18 साल से ऊपर के व्यक्ति को ही दिया जाता था, अब जन्म से ही दिव्यांगजन को पेंशन में कवर किया जाएगा। जन्म से उनकी संख्या बहुत बढ़ेगी, करीब करीब 27 लाख दिव्यांगजन इस पेंशन के कार्यक्रम में लाभार्थी होंगे। टोटल लाभार्थियों की संख्या बढ़ के करीब 3,20,00,000 हो जाएगी।
1: मंत्रिमंडल ने IDBI बैंक के पुनर्गठन को भी मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की सभ्यतागत यात्रा सदियों से सांस्कृतिक आदान प्रदान और ज्ञान के साझा प्रयासों से समृद्ध हुई है। भारत के वैश्विक सांस्कृतिक संबंधों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने एक संदेश में ये बात कही। उन्होंने कहा कि भिक्षुओं, विद्वानों, व्यापारियों और यात्रियों ने भूमि और समुद्री मार्गों के जरिए भारतीय विचारों को दुनिया भर में पहुंचाया। प्रधानमंत्री का संदेश संस्कृति मंत्रालय में सचिव विवेक अग्रवाल ने पढ़कर सुनाया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत और आसियान देशों के बीच रक्षा सहयोग मजबूत करने के लिए संयुक्त शोध, तकनीकी साझेदारी और समुद्री सुरक्षा पर मिलकर काम करने का प्रस्ताव रखा है। नई दिल्ली में आसियान भारत रक्षा थिंक टैंक फोरम में उन्होंने कहा कि आतंकवाद, साइबर अपराध, समुद्री चुनौतियों और प्राकृतिक आपदा

लॉकडाउन से निपटने के लिए सभी देशों को साथ आना होगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद ने व्यापार और निवेश, शिक्षा, ऊर्जा, रक्षा और जन समुदाय आदान प्रदान क्षेत्रों में संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की। दोनों मंत्रियों ने आज नई दिल्ली में मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि उन्होंने प्रमुख क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी विचार विमर्श किया। महाराष्ट्र के 358 तालुकों में से 305 को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दिवाली से पहले किसानों को 5,000 रुपए की प्रारंभिक वित्तीय सहायता देने की घोषणा की। मौसम विभाग ने हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और पश्चिमी राजस्थान में शुक्रवार तक ओलावृष्टि की संभावना व्यक्त की है। हैदराबाद में भारत और वेस्टइंडीज के बीच चौथा T20 क्रिकेट मैच आज शाम 7 बजे से खेला जाएगा। भारत 5 मैचों की श्रृंखला में 2-1 से आगे है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: श्रोता यस समय हामीसँग कोही जोडिसक्नु भएको छ। हेलो
1: हेलो सर नमस्कार।
0: नमस्कार, को बोल्नुभयो?
1: म खरसाङ बजारबाट सतीश कुमार पाण्डे बोल्दैछु।
0: खरसाङ बजारबाट
1: सतीश कुमार पाण्डे,
0: भन्नुहोस् तपाईँको समस्या।
1: डक्टर साहब नमस्कार।
0: डक्टर साहब जी
2: नमस्कार नमस्कार बोलिए
1: जी। सर आप हिंदी में कम्फर्टेबल होंगे?
2: हाँ जी, हाँ जी, हिंदी में।
1: हाँ सर, सर आप सिलीगुड़ी में कहाँ बैठते हैं?
2: हम सिलीगुड़ी ग्रेटर लायंस आई हॉस्पिटल में बैठते हैं, जो सेवक रोड पे है, विशाल सिनेमा के पीछे।
1: विशाल सिनेमा के पीछे?
2: हाँ जी।
1: सर कब कब बैठते
2: हैं? हम वैसे तो सारा वीक अवेलेबल होते हैं, हमारी टीम में अलग अलग जो रेटिना डॉक्टर्स होते
0: हैं। समस्या के भेट्नु पर्ने छ भने तपाईँले डक्टरको लाइन्समा तपाईँले भेट्न सक्नुहुन्छ। र अहिले तपाईँको के प्रश्न छ रोग सम्बन्धी? हेलो, यो

0: यो फोन
1: कल काट्यो सर आपको कैसे ले आज आगे सुनिए ये बेट्रो यो रेटिना
2: हाँ बेट्रो रेटिना डिपार्टमेंट में
1: जी आप बेट्रो रेटिना आए तो विशेष के ये क्या होता है क्या चीज़ है और किस तरह का आँख संबंधी समस्या का उपचार करते हैं।
2: सो विट्रो रेटिना क्या होता है कि हमारा आँख का ही एक हिस्सा होता है जो आँख के पीछे होता है जो हमें ऐसे आगे से तो नहीं दिखता है तो हमें जो हमारा आँख का पुतली होता है प्यूपिल होता है उसको डायलेट करके हम इसको पीछे देखते हैं तो बहुत सारी बीमारियों के कारण यहाँ पे कुछ ना कुछ इफेक्ट होता है जैसे डायबिटीज के कारण। हाँ जी हाँ जी
1: हेलो
3: हेलो
1: हजुर को बोल्नु भयो तपाईँको समस्या के छ भन्नुहोस् डक्टर हामीसँग आँखाको रोग जुन चाहिँ आँखाको पर्दा हुन्छ नि रेटिना भन्छ र यस सम्बन्धी विशेषज्ञ हुनुहुन्छ डाक्टर साहब र यहाँलाई के सोध्न चाहनुहुन्छ तपाईँ हिन्दी बोल्नु सक्नुहुन्छ हिन्दीमा भन्नुहोस्
2: हेलो
3: हेलो
2: हाँ जी बोलिए क्या दिक्कत है
3: गुड इवनिंग
2: हाँ जी गुड इवनिंग
3: मेरा जो राइट राइट आँखा था ना
2: हाँ जी
3: वो हमने ऑपरेशन किया था ऑपरेशन करके वो लेंस भी लगा
2: ठीक है
3: तो बात तो वो करके बस अभी तक मुझे नहीं आ रहा होगा
2: ठीक है
3: तो उसको क्या करूँगा
2: आप हमारे पास आइए हम आपका जो है मतलब पीछे का भी रेटिना और जो लेंस लगा है वो कैसा ठीक है नहीं ठीक है वो सब हम जांच कर पाएंगे तो तभी हम आपको बता पाएंगे और साथ में अगर आपको कुछ शरीर का जैसे कुछ दिक्कत होता है डायबिटीज हाइपरटेंशन तो वो भी हम देख के फिर उसी हिसाब से हम आपके इलाज के लिए आगे कंटिन्यू कर पाएंगे
3: तो मेरा डायबिटीज शुगर शुगर को कोई नहीं है जैसे भी ठीक है अभी
2: अच्छा अच्छा नहीं बहुत अच्छा है लेकिन हमें जो
3: डॉक्टर को देखा था
2: हाँ जी
3: डॉक्टर को थी तो आपने देखा था उसको
2: ओके
3: उसने देखा था उसके लिए आपको ड्रॉप दिया
2: ओके
3: और ड्रॉप अभी लगा रहा हूँ तो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है इसलिए आपको पूछ रहा हूँ।
2: कोई बात नहीं हमारे बहुत सारे विजन सेंटर्स भी होते हैं जो आपके बहुत नियर होते हैं कशोंग में भी होते हैं आप वहाँ भी एक बार जाके दिखा सकते हैं लेकिन अगर कुछ सीरियस दिक्कत लगता है तो वो आपको हमारे पास रेफर करेंगे हॉस्पिटल में सिलीगुड़ी ग्रेटर लायंस में तो वहाँ आके जो है स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स जो हैं सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स वो आपको मतलब अच्छे से भी देख पाएंगे जो भी आपका दिक्कत होगा
1: हुन्छ धन्यवाद यहाँले हामीसँग बात गरिदिनु यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद अन्त सर हम लोग बात करे थे ये बेट्री रेटिना जो विशेषज्ञ बोलते कि ये क्या होते हैं और किस तरह से आँख संबंधी समस्या को उपचार करते हैं।
2: सो रेटिना हमारा एक आई का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जो मतलब आई के पीछे होता है जैसे कि मैं बता रहा था जिसको हमें प्यूपिल डायलेट करके देखना पड़ता है ये हमारा सेंट्रल विजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है एंड पेरिफेरी के लिए भी। सो बहुत सारी जो सिस्टमिक जो हमारी बीमारियां होती हैं डायबिटीज होता है हाइपरटेंशन होता है ये इन रेटिना को अफेक्ट करता है जैसे कि रेटिना में पानी भर सकता है जैसे मैक्युलर एडिमा बोलते हैं रेटिना की जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनमें कहीं ना कहीं ब्लॉकेज हो सकता है या वहां से ब्लीडिंग हो सकता है तो उसके कारण जो देखने में पेशेंट को दिक्कत हो सकता है। काफी सारे पेशेंट्स को बस ज्यादातर जो है वो कैटरक्ट का पता होता है कॉर्निया का पता होता है लेकिन रेटिना का नॉलेज थोड़ा कम होता है तो हमारी तो मतलब यही एक वो ट्राई कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम बता पाए कि रेटिना क्या होता है।
1: जो रेटिना है वो आँख के सबसे इम्पोर्टेंट
2: जी वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट रेटिना होता है क्योंकि रेटिना जो है वो ब्रेन का एक टिश्यू आगे होके वो बनता है न्यूरल टिश्यू एक होता है जिसको हम रिप्लेस नहीं कर सकते तो उसका हमें केयर करना चाहिए अच्छे से।
1: तो जैसे हम देखिए आँख के जो सामान्य जांच होता है
2: हाँ जी
1: और ये रेटिना से संबंधित विशेष जांच में क्या अंतर है।
2: आँख का जो सामान्य जांच होता है जैसे कई बार हम कह सकते हैं कि उम्र के हिसाब से भी हमें होता है वो हमें ज्यादातर चश्मे का दिक्कत होता है।
1: एक तो फोन कॉल आ गया हेलो
4: हेलो
1: हाजिर को बोलने भाई
4: नमस्कार नमस्कार
1: नमस्कार हजुर को बोलने हुँदैछ कहाँबाट बोलने हुँदैछ म यहाँ
4: दिल्ली देवरालीबाट
1: हजुर हजुर तपाईँको के छ प्रश्न डाक्टर साहबलाई सोध्न सक्नुहुन्छ
4: हजुर नेपालीमा सोध्नु छ

0: चिकित्सा कि हिन्दीमा बोल्नुपर्ने हो कि?
1: डाक्टर साहब हिन्दी बोल्नु सजिलो हुन्छ, डाक्टर साहब यदि तपाईँलाई बुझाउनु पनि सजिलो हुन्छ।
2: हेलो,
0: नमस्कार डाक्टर साहब।
2: नमस्कार, नमस्कार।
0: मेरा प्रॉब्लम ये है सर कि मैं तो अभी तो ब्लाइंड हूँ, हाँ, लेकिन मेरा जो आँख का प्रॉब्लम है वो रेटिना का प्रॉब्लम है।
2: ओके,
0: तो हमें जानना है कि ये रेटिना का कोई ट्रांसप्लांट हो सकता है कि नहीं? अभी तक तो यहाँ तक सुना हूँ कि इसका ट्रांसप्लांट नहीं होता है, लेकिन पीछे पीछे हो सकता है ये भी सुना हूँ, इसीलिए आपसे ये जानकारी जानना चाहता हूँ सर।
2: देखिए, रेटिना का जो है वो ट्रांसप्लांट नहीं होता है, वो अभी एक्सपेरिमेंटल फेजेस में है, ठीक है। हाँ जी, आई का और बहुत सारा हिस्सा होता है, जैसे कॉर्निया है, लेंस है, जिनको एक्सचेंज किया जा सकता है। तो रेटिना का तो हम यही है कि उसका जो डिजीज होता है उसका हम ट्रीटमेंट करते हैं, उनका हम जो है ख्याल रख सकते हैं, ठीक है, उनको कंट्रोल किया जा सकता है।
0: थोड़ा सा एक दूसरा प्रश्न है, एक आंख का रेटिना खराब हुआ है, एक आंख में मेरा ये रेटिना जो कैटरक हुआ है उसके बाद इंटरनल ब्लीडिंग हुआ है सर के, इसलिए तो कैटरक ब्लीडिंग को साफ करने से भीतर का जो रेटिना है वो ठीक है तो देख सकता है कि नहीं सर?
2: देखिए, ये तो जब हम ब्लीडिंग साफ करते हैं तो उसके बाद पीछे का पर्दा देख के ही हम बता पाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि ज़्यादा ब्लीडिंग होने के कारण हम रेटिना नहीं देख पाते हैं सीधा सीधा, तो वो ऑपरेशन थिएटर में जब हम ब्लीडिंग साफ करेंगे, मोतियाबिंद का ऑपरेशन करते हैं, तो उसके बाद फिर हम जब क्लियर विजन होता है फिर ही हम उसके बाद देख पाते हैं, और जितना रेटिना में फिर पावर होगा, एनर्जी होगा, उतना आपका रोशनी आएगा।
0: तो सर ये जो कैटरक है ये पुराना कैटरक होने से निकल सकता है सर?
2: हाँ हाँ, जरूर निकल सकता है, कैटरक जैसा भी हो निकल सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं।
1: धन्यवाद यहाँ हामीसँग बात गरिदिनु भयो। तो डाक्टर साहब, मैं पूछ रहा था ये सामान्य जाँच और रेटिना संबंधी जो विशेष जाँच होता है इसमें क्या अंतर है?
2: देखिए, जो सामान्य जाँच होता है उसमें ज़्यादातर कई बार ये होता है कि लोगों को उम्र के हिसाब से या बचपन में बच्चों को चश्मे का दिक्कत होता है, जो देखने में दूर का या पास का दिक्कत होता है, तो वो चश्मा लग सकता है, या कई बार कुछ इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है, उनमें इन्फेक्शन का हम ट्रीटमेंट करते हैं। लेकिन रेटिना का जांच इसलिए स्पेशल होता है कि जैसे अगर किसी को दूर का चश्मा लगा हुआ है, मायोपिक है, कोई बच्चा है, तो उनमें कई बार कुछ वीक स्पॉट्स भी होते हैं रेटिना में, जिनको हमें प्यूपिल डायलेट करके पूरा पेरिफेरी में देखना पड़ता है, अच्छे से पूरा ढूंढना पड़ता है कोई वीक स्पॉट तो नहीं है। अगर कोई पेशेंट है, कोई यंग लोग हैं जो लेसिक भी करवाना चाहते हैं आजकल, तो उसके लिए भी हमें पहले फिर रेटिना का एग्जामिनेशन करना पड़ता है, उन वीक स्पॉट्स को मजबूत बनाना पड़ता है, जो हम लेजर से बनाते हैं स्पेशली, उसके बाद ही फिर हम ऐसे प्रोसीजर्स जो है वो करते हैं।
1: सर, जब किसी व्यक्ति की आंख की रोशनी जब धीरे धीरे कमजोर होने लगती है तो यह कैसे पता लगा जा सकता है कि ऐसी चश्मे का नंबर बढ़ने के कारण हो रहा है या आंखों के अंदर किसी गंभीर समस्या का कारण हो?
2: देखिए, इसके लिए तो वही होता है कि एक तो डॉक्टर को विजिट करना पड़ेगा, ठीक है, डॉक्टर ही आपको अच्छे से देख के बता पाएंगे, क्योंकि चाहे एक रेटिना डॉक्टर है चाहे कॉर्निया डॉक्टर है, उनको फिर भी बाकी सारे सब्जेक्ट्स का कुछ ना कुछ नॉलेज अच्छा होता है। अगर मैं एक रेटिना डॉक्टर हूँ, मुझे थोड़ा कॉर्निया का, कैटरक्ट का, इन सब का नॉलेज है, जब मैं देखूंगा तो आगे से लेके पीछे तक मैं सब देखूंगा, फिर उसके अकॉर्डिंग मैं एक अच्छे जो डिपार्टमेंट में मैं भेज पाऊंगा।
1: एक फोन कॉल आ रहा है। हेलो
3: मेरे को ना, मैं ब्लाइंड हूँ सर, मतलब नस चुक गई मेरी, रॉन्ग ट्रीटमेंट से नस चुक गई, मतलब डॉक्टर का कहना है उसमें कुमा हो गया। हाँ, तो उसके लिए क्या कोई उपाय है सर?
2: देखिए, नस जो होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है हमारी आई का, ठीक है, अगर उसको एक लेवल तक वो सूखा है तो उसको कई बार रोका जा सकता है ताकि उससे ज्यादा वो ना सूखे, लेकिन अगर पूरा का पूरा सूख जाता है तो फिर वो थोड़ा दिक्कत वाला बात होता है। लेकिन अगर जो हम आई ड्रॉप डालते रहते हैं तो उस पे क्या होता है कि वो उस लेवल पे रुक जाता है, यानी कई बार वो थोड़ा ठीक भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए वही बात है कि कितना न सूखा है या नहीं सूखा है वो हमें जांच करके देखना।

0: पड़ेगा। उसके लिए हमारे पास ग्लूकोमा के स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं हमारे हॉस्पिटल में, आप विजिट कर सकते हैं, अच्छे से पूरा एग्जामिन करके फिर हम आपको बता पाएंगे।
1: अभी सर आप कहाँ बैठते हैं बताइएगा।
0: हाँ जी, हम सिलीगुड़ी ग्रेटर अलायंस आई हॉस्पिटल में बैठते हैं, सेवक रोड पे बिहाइंड विशाल सिनेमा। वहाँ पे हमारे पास हर तरह के आई के डॉक्टर्स हैं, हर सब स्पेशलिटी, हर सुपर स्पेशलिटी में, ग्लूकोमा के, रेटिना के, कैटरेक्ट, कॉर्निया सब।
1: मेरे को आज से नहीं है सर, मैं 46 ईयर्स का हूँ। मेरे जब मैं क्लास वन में पढ़ता था तब मेरी आंख खराब होती थी। अब आप आइडिया कर ही सकते हैं, मतलब 30-35 साल हो गए मेरी आंख खराब हुई।
0: ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, आप एक बार विजिट कीजिए, हम पूरा सा अच्छे से कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिन करेंगे, आगे से पीछे आपका पूरा एग्जामिन करेंगे, फिर आपको जो है उसी अकॉर्डिंग हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे।
1: ओके सर, थैंक यू,
2: धन्यवाद। यहाँ तो हम लोग बात कर रहे थे सर, वो जैसे कि ये जैसे उम्र, ये किस तरह से हम लोग पता चले कि इसका अंदर में क्या कमजोरी है।
0: देखिए, जो के पहले हम रेटिना का एग्जामिन करते हैं आईडीओ से, ठीक है, जैसे हमारे पास एक स्पेशल लेंसेस होते हैं, स्पेशल एक लाइट सोर्स होता है जो हम अपने सर पे लगाते हैं, उनसे हम रेटिना को देखते हैं। उसके बाद अगर हमें लगता है कि कुछ भी हमें ज़रूरत है तो फिर हमारे पास बहुत सारी मशीन्स होती हैं आजकल, जैसे ओसीटी मशीन होता है, फंडस फोटो होता है, अल्ट्रासाउंड बी स्कैन मशीन्स होता है, वो माइक्रो लेवल पे भी, जैसे ओसीटी मशीन होता है वो हमारे रेटिना का एग्जामिनेशन करता है, हमारे रेटिना की पूरी लेयर्स का एग्जामिनेशन करता है। उसके अकॉर्डिंग फिर हम पता करते हैं कि हमें आगे क्या ट्रीटमेंट करना है या क्या डिजीज है, उसी अकॉर्डिंग हमारा फिर ट्रीटमेंट चलता है।
2: आदरणीय श्रोता, तपाईँ हुनुहुन्छ हाम्रो आकाशवाणी खरसाङको एफएम 103.5 मेगा हर्जमा। अनि आजको हाम्रो स्वस्थ जीवन यस कार्यक्रममा, प्रत्यक्ष फोन इन कार्यक्रममा आज हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ डाक्टर भूपेन्द्रजीत सिंह। यहाँ हुनुहुन्छ भिट्रियो रेटिना विशेषज्ञ, अनि आँखाको जुन चाहिँ पर्दा रेटिना हुन्छ यस सम्बन्धी विशेषज्ञ हुनुहुन्छ। र आँखाको जुन देख्न कम्ती हुनु अथवा दृष्टि हाम्रो कमजोर हुँदै गएको समस्यासम्म पनि तपाईँले यहाँ हाम्रो स्टुडियोमा बस्नुभएको डाक्टर भूपेन्द्रजीत सिंहसँग यहाँले प्रश्न गरेर सोध्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो फोन नम्बर रहेको छ 03542999317, यो नम्बर याद गर्नुहोला 03542999317। र यो नम्बरमा हामीलाई तपाईँले कल गरेर डाक्टर साहबलाई तपाईँको आँखा सम्बन्धी कुनै पनि समस्या यहाँ सोध्न सक्नुहुनेछ। र हामी बात गरिरहेछौँ डाक्टर भूपेन्द्रजीत सिंह सर, जो आपको मन में आजकल बहुत से लोग बताते हैं कि उन्हें धुंधला दिखाई देता है या आँखों के सामने छोटे छोटे काली धब्बे अथवा धागे जैसी आकृति हुई दिखाई देती है, ऐसा क्यों होता है।
0: ये जो इसका कारण हो सकता है वो ये होता है कि हमारे आँख के पीछे एक विट्रस जेल होता है जो लेंस और रेटिना के बीच में होता है। तो कई बार कुछ पेशेंट्स में, जैसे उम्र के हिसाब से, जैसे बुजुर्ग होते हैं उनमें वो जो जेल होता है वो थोड़ा लिक्विफाई हो जाता है, मतलब वो पानी जैसा बनता है, जिसके कारण उसका मूवमेंट होने के कारण वो हमें हिलता हुआ दिखता है।
2: अच्छा।
0: दूसरा ये होता है जिनमें दूर का चश्मा होता है, जिनमें आँख बड़ा होता है, मायोपिया जिनमें हम बोलते हैं, उनमें भी ये दिक्कत होता है। तो इसके लिए हमें यही करना होता है कि एक तो रेगुलर फॉलोअप में रहना होता है, रेगुलर फॉलोअप में रहना होता है डॉक्टर्स के पास, हमें अच्छे से रेटिना जांच करवाना होता है। लेकिन कई बार ऐसे कारणों के कारण जो हमारा रेटिना डिटैचमेंट हो सकता है, अगर कहीं से कुछ वीक स्पॉट हो, वहाँ पे जो है ट्रैक्शन हो, तो फिर जो है ये रेटिना जो पर्दा हमारा पीछे का उठ सकता है। तो उसके लिए हमें हर 6 महीने में, 1 साल बाद जो है हमें कम से कम रेटिना के डॉक्टर को ये दिखाना चाहिए, और इसका क्यों कारण है, किसके वजह से हो रहा है, उसके लिए दिखाना चाहिए, और घर पे भी खुद भी एक एक आँख बंद करके एग्जामिनेशन करना चाहिए, देखना चाहिए कि कहीं वो काले धब्बे बढ़ तो नहीं रहे हैं। अगर बढ़ रहे हैं, ज्यादा दिक्कत दे रहे हैं, तो फिर हमें उसी समय जाके रेटिना डॉक्टर, रेटिना स्पेशलिस्ट को जाके मिलना चाहिए।
2: सर ये तो कोई ऐसा सामान्य आदमी का भी होता है ना?
0: हाँ, सामान्य आदमी का भी हो सकता है।
2: कोई बार ऐसा हो सकता है कि आँख में एक धब्बा जैसा, जो छोटा छोटा कण जैसा दिखाई देना, बहुत से सारे कण जैसा दिखाई देना, ये
0: जो इसको देखे, यही तो होता है कि एक तो इग्नोर करना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। हाँ, पेशेंट्स को जो है हम अच्छे से काउंसिल करते हैं, उनको रीअश्योर करते हैं, लेकिन उसके पहले वही होता है कि हमें क्यों हो रहा है उसका रीजन ढूंढना पड़ता है। तो उसके लिए रेटिना एग्जामिनेशन करेंगे, फिर क्यों हो रहा है, अगर कुछ प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल बस एक जो हमारा विट्रस जेल वो लिक्विफाई हुआ है, तो फिर हम जो है उनको बस पेशेंट को काउंसिल करते हैं, रीअश्योर करते हैं। लेकिन कुछ कुछ सिनेरियो

0: अगर पेशेंट का जॉब ऐसा है जिनमें उनको अच्छा विजन चाहिए, वो ये सब नहीं मतलब टॉलरेट कर पा रहे हैं, फिर ऐसे केसेस में हम ऑपरेशन करके वो वेट्रस जेल को निकाल भी सकते हैं, जो पानी जैसा बन गया है, उसके बाद कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट हो जाता है, काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो जाता है।
1: सो लोग जैसे आंखों के सामने जैसे अचानक जैसे बिजली जैसा चमकना
0: हाँ जी
1: है जैसा दिखाई देना या जैसे काली परछाई से भी
0: जी
1: दृष्टि ढक जाना, ऐसा महसूस होने लगता है आजकल,
0: जी
1: जो ये किस समस्या का संकेत हो सकता है?
0: इसमें रेटिनल डिटैचमेंट हो सकता है, ठीक है, जहाँ रेटिनल एक टीयर हो सकता है कि रेटिनल डिटैचमेंट का स्टार्टिंग हो रहा है, या रेटिनल होल हो सकता है। उसके लिए जो है वही हम पेशेंट से हम पूछते भी हैं कि कई बार ये चोट लगने के कारण भी होता है कि कहीं कुछ चोट का तो नहीं आपको हुआ, या फिर जैसे आपका कुछ पहले से ही आँख बड़ा था, मायोपिया था आपको, तो उसके लिए जो पेशेंट को जल्दी से जल्दी रेटिना स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए।
1: सर ये जैसे कि हम लोग सुनते हैं कि जैसे आँख में ब्लड निकलना
0: जी
1: ना, एक रगत में आ जाना आँख में,
0: जी
1: और जैसे पूरा लाल हो जाता है,
0: जी
1: और कई बार सुनाए हम लोग कि आँख से ब्लड लीकेज हो रहा है
0: जी
1: नब से, ये किस तरह का सिम्टम्स है?
0: ये इसे हम बोलते हैं विट्रस हेमरेज, ठीक है,
1: हाँ
0: और इसका या फिर हम इसे रेटिनल हेमरेज भी बोल सकते हैं। तो ये अलग अलग जगह पे मतलब ब्लीडिंग होने के कारण होता है। अगर हमारी जेल में ब्लीडिंग निकलता है उसे विट्रस हेमरेज बोलते हैं, रेटिना में निकलेगा तो हम उसे इंट्रा रेटिनल हेमरेज, और रेटिना के नीचे होता है तो हम उसे सब रेटिनल हेमरेज बोलते हैं। तो इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। एक तो कारण इसमें जो सबसे कॉमन आ सकता है वो होता है डायबिटिक, डायबिटिक रेटिनोपैथी जिसे हम बोलते हैं, डायबिटीज के कारण।
1: ये डायबिटीज का जो ये आपने डायबिटीज के पेशेंट के लिए बोला है,
0: जी
1: ये थोड़ा रिकवर हो सकता है या सामान्य हो सकता है ये समस्या?
0: देखिए, अच्छे से अच्छा हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि पूरा वो जैसे पहला था जवानी में था, जहाँ जैसे हमारा है आपका है, वैसे शायद ना हो पाए, लेकिन हमारी कोशिश यही रहती है कि जितना अच्छे से अच्छा हो पाए हम उसे करें, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि पेशेंट हमारे पास कब आया है। अगर पेशेंट जितना जल्दी से आ पाता है, अगर उनको डायबिटिक रेटिनोपैथी का शुरुआत होता है, तो उस हिसाब से फिर इलाज किया जाता है, उसी हिसाब से उनका बॉडी भी रिस्पॉन्स करता है।
1: इसका सिम्टम्स क्या होता है?
0: इसका सिम्टम्स ये हो सकता है कि पेशेंट को जो धुंधला दिखता है, ठीक है, जो बिल्कुल सेंटर में जिस दिखता है, जैसे कि मैंने आपको बोला कि मैकुलर एडिमा होता है, और इसका सिम्टम हो सकता है कि उसको पेशेंट को लाल लाल दिखता है, जैसे जैसे ब्लरिंग ऑफ विजन हो रहा है, रेडनेस दिख रहा है, वो उस विट्रस हेमरेज के कारण होता है, वो लेट स्टेज ऑफ डायबिटिक रेटिनोपैथी में होता है। तो उन कारणों में जब काफ़ी लेट हो जाता है, तो फिर जितना हो सके उतना पॉसिबल विजन पेशेंट को कोशिश करते हैं ठीक कर पाए।
1: अच्छा सर, ये अभी क्या आँखों में दर्द ना होने पर भी दृष्टि कमजोर हो सकती है?
0: जी हाँ, बिल्कुल हो सकती है, जैसा कि यही हम बात कर रहे हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी का ही, इसमें दर्द नहीं होता है, बहुत लेट स्टेज में जाके दर्द होता है, आखिर वाली स्टेज में जब नियोवैस्कुलर ग्लोकोमा बन जाता है।
1: अभी फोन एक कॉल आ गया। हेलो
2: हेलो,
1: हजुर को बोल्नु भयो?
2: म कृष्ण आदि छेत्री बोलेको, खोरीबारी इलाकाबाट।
1: हजुर कहाँबाट भन्नु भयो?
2: खोरीबारी इलाकाबाट।
1: हजुर, के तपाईँको के प्रश्न छ डाक्टर साहब? सुन्नुहोस्,
2: जुन डाक्टर दिनुहोस् न। नमस्ते डाक्टर साहब।
0: नमस्ते।
2: मै प्रतिबन्ध आदमी हो, मेरो उमेर 72 साल हो गया, अझै 17 साल हो गया, मेरो आँख नै देखा है
0: जी।
2: उसको कोई उपचार हो सकता है?
0: जी हाँ, मतलब हो तो सकता है, लेकिन वही है कि हमें आपको एक बार पूरा अच्छे से एग्जामिनेशन करना होगा, देखना पड़ेगा कि आपको क्यों नहीं दिख रहा है, ठीक है, किस कारण से, कि रेटिना के कारण है, कैटरेट के कारण है, वो सब हमें अच्छे से जांच करना पड़ेगा। आप हमारे पास आइए, विजिट कीजिए।
2: एक बार बहुत साल आगे हम गया था सिलोड़ी लाइन क्लब में।
0: हाँ जी,
2: उसके मत तो नहीं हुआ, नहीं बोला, नहीं होगा बोला।
0: कोई बात नहीं, आप एक बार फिर से विजिट कीजिए, हमारे नई नई यहाँ पे मशीन्स आई हैं, नई नई हमारे स्पेशली डॉक्टर्स की टीम है, हम एक बार जांच करके फिर हम आपको बता पाएंगे। हाँ जी,
1: तो डॉक्टर साहब ये हम बात करते हैं कि दर्द नहीं होने से भी ऐसा।
0: हाँ, जैसे कि कुछ भी बीमारी का जो पहला स्टेजेस होता है उनमें दर्द नहीं होता है, या दर्द कम होता है, जैसे अब कैटरेट ही है, कैटरेट अगर पहले पहले होगा तो उसमें दर्द नहीं होता है, लेकिन कैटरेट में भी जब वो हाइपर मेच्योर कैटरेट बन जाता है तो उसमें फिर वो बाद में फेकोलिटिक ग्लूकोमा करता है, या फेकोमॉर्फिक ग्लूकोमा करता है, यानी कि लेंस फट जाता है, उसके बाद फिर वो दर्द हो सकता है। ऐसे ही डायबिटिक रेटिनोपैथी में, रेटिना में जब पहले पहले आपको कुछ दिक्कत होता है

0: तो इनिशियल स्टेजेस में वो दर्द नहीं होता है, लेकिन जब उसका इलाज ना करवाया जाए फिर वो लाइव स्टेज में जाते जाते उसमें नियोमस्कुलर ग्लूकोमा बन जाता है, जिसके कारण बाद में पेशेंट को दर्द हो सकता है।
1: आंखों से संबंधित कौन कौन सी बीमारियां शुरुआती अवस्था में बिना किसी लक्षण के हो सकती है?
0: उसमें तो एक तो जो होता है हमारा नज़र कम होना होता है, ठीक है, उसमें दूसरा हमारा कह सकते हैं कि कैटरेक्ट, ठीक है, हल्का हल्का पेशेंट को कम दिखता है, पेशेंट इग्नोर कर सकते हैं उन चीज़ों को, तो उसमें वो है इलाज आके करवा लेना चाहिए, जांच करवा लेना चाहिए कि कैटरेक्ट हुआ है तो कितना हुआ है। दूसरा जो होता है कई बार कुछ रेटिना में ही कुछ पेरीफेरी में ऐसी डिजीजेस होती हैं जो कि हमारा सेंटर ऑफ द विजन ख़राब नहीं करते हैं लेकिन वो पेरीफेरी में ख़राब करते हैं, तो इसलिए कई बार पेशेंट उनको इग्नोर करते हैं या पेशेंट को इतना ध्यान नहीं रहता। फिर आप ग्लूकोमा में आ सकते हैं। ग्लूकोमा में स्टार्टिंग स्टार्टिंग में जब आप किसी पेशेंट को दिक्कत होती है तो उनको इतना पता नहीं चलता है, ठीक है, वो बाद में लेट स्टेज में जब आने पे एकदम से पेशेंट को पता चलता है कि वो काफ़ी ज़्यादा कम दिखने लग गया है।
1: तो जैसे उम्र बढ़ने के साथ जैसे दृष्टि कमजोर होना, क्या एक स्वाभाविक प्रक्रिया है या यह किसी ऐसी बीमारी का संकेत भी हो सकता है जिसका उपचार संभव हो?
0: जी हाँ बिल्कुल, उम्र के हिसाब से दृष्टि कम होता है, जैसे पास का हमें कम दिखता है या दूर का भी हम कम दिख सकता है, चश्मा लगता है, लेकिन हाँ उम्र के हिसाब से हमारे रेटिना के पीछे में भी जो है सेंटर ऑफ रेटिना जो मैकुला है वहाँ पे काफ़ी सारी डिजीजेस हो सकती हैं, जैसे CNVM होता है, कोरोइडल नियोमस्कुलर मेम्ब्रेन बन सकता है, एज रिलेटेड जो मैकुलर डीजनरेशन चेंजेस होते हैं कि उम्र के हिसाब से हमारा मैकुला में कुछ ना कुछ डीजनरेशन होते हैं, जैसे कि हमारी बाकी बॉडी में हमारी स्किन में, कोई भी इंसान अगर बुजुर्ग होता है तो उनका स्किन थोड़ा लूज हो जाता है, ऐसे ही रेटिना में भी कुछ ना कुछ चेंजेस आ सकते हैं, तो वो जांच करवाने पे, समय से जांच करवाने पे, समय से ट्रीटमेंट लेने पे उनको हम डिले कर सकते हैं, उनको रोका जा सकता है, कम किया जा सकता है।
1: तो जैसे कि अभी हम आपने बोला कि जो मधुमेह जो डायबिटीज का पेशेंट है,
0: जी
1: तो इनका आँख में किस प्रकार की जिसका प्रभाव डालती है ये रोकने?
0: जी हाँ, सो रेटिना में जैसे हम देख सकते हैं कि अलग अलग जो डायबिटीज़ जो कॉमन होता है, टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज़ होता है, सो टाइप 1 डायबिटीज़ में क्या होता है कि ज़्यादातर पेशेंट हमारे पास ऑलरेडी लेट स्टेज में आते हैं, वो तब आते हैं जब उनका आँख में ऑलरेडी ब्लीडिंग होने लगता है, पर्दा उठने लगता है। टाइप 2 डायबिटीज़ में ज़्यादातर पेशेंट तब आते हैं जब उनको सेंट्रल विजन जो होता है उनमें कमी होता है, जब आँख में जैसे हम लेमन लैंग्वेज में बोल देते हैं कि आँख के पीछे पानी बन रहा है, पानी जमा हुआ है, तो उसके कारण उनको ब्लरिंग ऑफ विजन होगा, उनको लाइंस जो होती हैं थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा दिखेगा, कुछ अक्षर छोटा दिखेगा, कुछ बड़ा दिखेगा, ऐसा उनको दिक्कत होता है।
1: तो जैसे डायबिटिक का पेशेंट जो है, जो डायबिटिक का पेशेंट है,
0: जी
1: उसकी उस समय भी उसकी आंखों की जांच किस तरह किस समय में जांच करवानी चाहिए और उसकी दृष्टि सामान्य कैसी?
0: देखिए, जब भी डायबिटीज डायग्नोस हो, स्पेशली अगर टाइप 1 डायबिटीज डायग्नोसिस होता है, तो उनको जल्दी से जल्दी जांच करवाना चाहिए, और टाइप 2 डायबिटीज़ में आप कुछ समय रुक सकते हैं, कुछ महीने रुक सकते हैं, लेकिन उनको भी फिर जल्दी से जांच करवा लेना चाहिए ताकि हम एक बार बेसलाइन उनका जो होता है इन्वेस्टिगेशन करवा के रख सकें। फिर अगर हम देखते हैं कि इनको अभी रेटिना में कुछ दिक्कत शुरू नहीं हुआ है, फिर हम उसी हिसाब से उनको बुलाते हैं। अगर हम देखते हैं कि उनको अभी तक डायबिटिक रेटिनोपैथी नहीं हुआ है, फिर हम 6 महीने से 1 साल तक उनको बुलाते हैं। अगर हम देखते हैं कि उनको डायबिटिक रेटिनोपैथी हो रहा है, उसकी अलग अलग स्टेजेस होती हैं, माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर डायबिटिक रेटिनोपैथी, फिर PDR जिसे प्रोलिफ्रेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी बोलते हैं, उतना ही फिर हम उन्हें जल्दी बुलाते हैं। जिनमें सिवियर स्टेज होता है उनमें हम कोशिश करते हैं उनको 1 महीने के अंदर अंदर बार बार हम देखें, जांच करें।
1: तो अभी हम लोग देखते हैं ये डायबिटीज का पेशेंट जो है, सब किसी का भी डायबिटीज होने से वो आँख की जांच क्या करते रहना चाहिए यार शुरुआती क्षण में कुछ नहीं करने से भी ठीक होगा?
0: नहीं, टाइप 1 जो डायबिटीज़ होते हैं जो यंग लोगों में होता है, ऑटोइम्यून डायबिटीज़ के कारण जो दिक्कत होता है, उनको तो जल्दी करवाना चाहिए, जैसा उनका डायबिटीज डायग्नोस होता है उनको जल्दी जांच करवाना चाहिए।
1: कितने कितने महीने में जांच करते रहना चाहिए?
0: जी हाँ,
1: जैसे जैसे डायबिटिक पेशेंट लोग एवरी मंथ या वीक या 15 डेज में वो लोग ब्लड टेस्ट, शुगर टेस्ट करते
0: जी
1: हैं
0: हाँ
1: ना, इसी तरह से आँख का भी कुछ टेस्ट
0: होता है,
1: करना
0: जी हाँ
1: पड़ेगा?
0: होता है, जैसे टाइप 2 डायबिटीज़ में या टाइप 1 डायबिटीज़ में, अगर मैं जैसे मैं आपको बता रहा था डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस होती हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी में, अगर किसी पेशेंट को मान लीजिए माइल्ड डायबिटिक रेटिनोपैथी है कि हल्का फुल्का चेंजेस है, उनमें अभी इतना विजन ख़राब नहीं है, थोड़ा रुका जा सकता है, तो फिर हम उन्हें जो है हम लगभग 6 महीने 9 महीने तक हम उनको बुला सकते हैं, उनको वेट कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी

0: पेशेंट में सिवियर डायबिटिक रेटिनोपैथी है, यानी कि उनमें बहुत सारे चेंजेस हैं, बहुत सारा पीछे रेटिना में ब्लीडिंग पॉइंट्स हैं, ब्लीडिंग स्पॉट्स हैं, बहुत सारा हार्ट एक्सुडेट्स निकला है, यानी कि जो लिपिड कोलेस्ट्रॉल भी काफ़ी जो निकला हुआ है, फिर हम उन कोशिश करते हैं हम 1 से 2 महीने के अंदर अंदर ही हम उनको बार बार देखें।
1: जैसे हम लोग देखते हैं कि डायबिटिक जो पेशेंट है उनका ब्लड शुगर
0: जी
1: जो फ्लक्चुएट है, कोई बार वो पूरा हाई हो जाता है, कोई बार पूरा नीचे कम आ जाता है, तो इसके कारण भी आखिरी असर होता है या प्रभाव पड़ता है कि नहीं पड़ता है?
0: देखिए, इससे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ होता है जिससे आँख में दिक्कत होता है वो होता है ड्यूरेशन ऑफ डायबिटीज़ से, समय से। अगर कोई मरीज़ है जिसको 10 साल से डायबिटीज़ है और कोई मरीज़ है जिसको 1 साल से डायबिटीज़ है, तो जिसको 10 साल से डायबिटीज़ है उसमें, उन मरीज़ों में डायबिटिक रेटिनोपैथी होने का चांसेस ज़्यादा है। उनमें ज़्यादा इम्पोर्टेंस हम मतलब हमें रखना चाहिए। जिनमें 1 महीने से डायबिटिक रेटिनोपैथी अभी हुआ है उनमें इतना सिवियर होने का चांसेस नहीं है, अनलेस अंटिल वो टाइप 1 डायबिटीज़ हैं या यंग पेशेंट्स हैं।
1: अभी ये रेटिना जो डायबिटिक है
0: जी,
1: जो डायबिटिक वाला पेशेंट का जो रेटिना का प्रॉब्लम हो गया, समस्या कोई आ गया रेटिना में, तो ये क्या संभव है कि उसका ठीक हो सकता है?
0: जी हाँ, बिल्कुल संभव है, बिल्कुल संभव है। बहुत सारा अलग अलग ट्रीटमेंट होता है, जैसे इंजेक्शंस होते हैं, इंट्राविट्रल इंजेक्शन जो हम आँख में इंजेक्शन देते हैं, जो कि मैक्युलर एडिमा यानी कि जो आँख के बीच में पानी भर जाता है उसको कम करता है। फिर हम लेज़र भी करते हैं, PRP लेज़र होता है, फोकल ग्रिड लेज़र्स होता है, उनके भी हम जो है ट्रीटमेंट करते हैं। और नहीं होता है, अगर किसी का सिवियर स्टेज हो तो उसमें हम ऑपरेशन करके भी उनका जो है नज़र में सुधार कर सकते हैं।
1: तो डायबिटिक पेशेंट का भी आँख ठीक हो सकता है?
0: जी हाँ, बिल्कुल काफ़ी हद तक ठीक हो सकता है, लेकिन वही है कि उनको जल्दी से जल्दी अपना जांच करवाना चाहिए, और साथ में ये भी ज़रूरी है कि उनको अपने डायबिटीज़ पे भी काबू करना चाहिए।
1: अगर लंबे समय से डायबिटिक से पीड़ित व्यक्तियों का कितने कितने समय के अंतराल में आँखों के पर्दे आते हैं, रेटिना का स्पेशली रेटिना का जाँच करवानी चाहिए?
0: वही, जैसे कि अगर किसी को बहुत ज़्यादा हम देखते हैं कि सिवियर डायबिटिक रेटिनोपैथी है, काफ़ी ज़्यादा उनके जो पर्दे में जो चेंजेस आए हैं, ब्लीडिंग स्पॉट्स हैं, हार्ड एक्सुडेट्स या लिपिड्स जो है निकला हुआ है, तो उनको हम कोशिश करते हैं कि 1-1 महीने के अंदर देखें। अगर किसी मरीज में जो है कम है, जो माइल्ड डायबिटिक रेटिनोपैथी बोला जाता है कि थोड़ा सा ही चेंजेस है, तो उनको हम 6-9 महीने बाद भी बुला सकते हैं।
1: सर, ये मधुमेह के कारण जो आँखों के पर्दे में समस्या होने पर दवाइयों या तो आँखों के इंजेक्शन लगाने वा लेजर उपचार में से किस उपचार की आवश्यकता है और इसका निर्णय किस प्रकार किया जा सकता है, किस प्रकार किया जाता है?
0: देखिए, इससे जो है हमारे पास, जैसे कि मैंने आपको बताया, एक तो हम जो है रेटिना को जब एग्जामिनेशन करते हैं, जब हम रेटिना को स्पेशल लेंसेज से हम देखते हैं, उससे भी हम देखते हैं, प्लस जो है हमारे पास जैसे बहुत सारी हमारे हॉस्पिटल में अच्छी अच्छी न्यू टेक्नोलॉजी की मशीन्स हैं, जैसे OCT मशीन से, OCT एंजियोग्राफी मशीन से, उनसे हम देखते हैं कि रेटिना के कौन से हिस्से में ज़्यादा दिक्कत है। अगर रेटिना के बिल्कुल सेंटर वाला हिस्सा जिसे मैकुला बोलते हैं, वहाँ पे दिक्कत होता है, वहाँ पे पानी जम जाता है, तो फिर हम इंजेक्शंस देते हैं ताकि वो पानी को कम कर सके। अगर रेटिना के पेरिफेरी में दिक्कत होता है, तो फिर उन केसेस में हम लेज़र करते हैं, जिसे कि हम पैन रेटिनल फोटोकोएगुलेशन लेज़र बोलते हैं, PRP लेज़र बोलते हैं।
1: ये लेज़र कराने से हमने इतने सुना है कि जो लेज़र कराते हैं तो उसका आँख और ज़्यादा खराब हो जाता है?
0: नहीं, ऐसा कुछ नहीं है,
1: मैंने सुना है।
0: नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो कारण होता है डायबिटीज़ का, हम बस उसको थोड़ा सप्रेस करते हैं कि जिसके कारण जो ब्लीडिंग होने का चांस होता है या ब्लीडिंग हो रहा है उसके कारण को, जो कि एक वेज ऑफ मॉलिक्यूल होता है, उसको हम कम करने के लिए हम लेज़र करते हैं, पेरीफेरी में जितना लेज़र हो सकता है। हमारा यही हमेशा मोटिव होता है कि हम रेटिना का जितना भी विजन है, जितना सेंट्रल विजन है, उसको बचाया जा सके। कुछ कुछ मरीजों में ऐसा वो फील कर सकते हैं कि उनको बिल्कुल पेरीफेरी में थोड़ा थोड़ा जो है वो शायद कम दिख रहा है, ऐसा उनको महसूस हो सकता है, लेकिन वो भी धीरे धीरे उनका जो है कम से कम ठीक हो जाता है।
1: सर, ये आँख में जो इंजेक्शन का आपने बात किया
0: जी,
1: अब ये इंजेक्शन लगाने से उनका ये जो विजन और दृष्टि वो रिकवर होता है?
0: जी हाँ, बहुत रिकवर होता है, बहुत इम्प्रूवमेंट देखा गया है। जैसे हम इंजेक्शन देते हैं, हमारे जो सीनियर डॉक्टर्स हैं वो भी इंजेक्शन देते हैं, हम देखते हैं बहुत इम्प्रूवमेंट होता है।
1: तो ये इंजेक्शन कितने कितने टाइम में देते रहना पड़ेगा?
0: देखिए, नॉर्मली हमें कम से कम 3 से 6 इंजेक्शन होते हैं, हमें 1-1 महीने बाद देना चाहिए। कम से कम 3 इंजेक्शन तो ज़रूर देने चाहिए 1-1 महीने बाद। लेकिन वही, जैसे अलग अलग बीमारियों में अलग अलग भी होता है। आजकल काफ़ी प्रोटोकॉल्स नए भी आए हुए हैं कि अगर थोड़ा सिवियर ज़्यादा है तो हम 3 इंजेक्शन देते हैं, नहीं है तो 6 भी दे सकते हैं।

0: एक एक महीने बाद, और कुछ इंजेक्शन टाइप्स पे भी डिपेंड करता है।
1: ये इंजेक्शन का दाम जो दाम है बाजार में
0: जी
1: बहुत महंगा है
0: जी
1: सुना, कॉस्टली है, तो जो एक साधारण से लोग है
0: जी
1: वो उसको प्रोवाइड नहीं कर पाएगा।
0: नहीं, काफ़ी अलग अलग तरह के इंजेक्शन्स आते हैं, कुछ जो है वो थोड़े सस्ते इंजेक्शन्स भी आते हैं।
1: हाँ, एक फोन कॉल आ रहा है। हेलो
2: हेलो
1: हेलो हजुर, को बोल्नु भयो?
2: ए, म समरी पानीबाट अशोक कुमार खड्गे बोल्दैछु।
1: हजुर भन्नुहोस्, तपाईँको प्रश्न
2: आजको के विषय छ? मैले सुन्नु पाएको छु।
1: हजुर, तपाईँको आँखाको समस्या माथि छ, तपाईँको आँखाको रेटिनाको छ र आँखाको नदेख्नुमा जुन चाहिँ दृष्टि हराउँदै जान्छ त्यो माथि हामी बात गरिरहेका छौँ डक्टर साहबसँग।
2: र पनि अब म 77 इयर्स पुगेँ हो।
1: अलिक हिन्दीमा बोल्नु सक्नुहुन्छ?
2: अलिक आउँदैन हो कतिवटा कुरो।
1: मलाई भन्नुहोस्, म डक्टर साहबलाई हिन्दीमा सोधिदिन्छु।
2: होइन, हुन्छ, त्यसो भए टाउको त दुख्दैन, आँखा त प्रायः ठिकै छ, तर एकदम बेसी तिर्मिलाउँछ क्या, धमिलो प्रकारले हुन्छ बेला बेलामा। कि
1: कति वर्ष पुग्नुभयो?
2: 77 इयर्स। म सुगरको पेसेन्ट पनि हो, तपाईँको हाई प्रेसर पनि हाई छ,
1: आँखा चाहिँ के हुन्छ तपाईँको?
2: एकदम तिर्मिलाउँछ क्या, एकदम घरिघरि घरिघरि टाढोको दृष्टि राम्रो देख्न सकिन, नजिकको त प्रायः प्रायः नै पढ्छु म।
0: ठीक है, देखिए आपको, क्योंकि जैसा आपने बताया कि आपको डायबिटीज भी है और आपको जो है बीपी का दिक्कत भी है, हाइपरटेंशन भी है, तो उनके इन ये दोनों जो है काफी कॉमन बीमारियां हैं जिनके कारण रेटिना में दिक्कत होता है। ठीक है, तो इसके लिए जो है आप हमारे पास आइए, हम रेटिना का एग्जामिनेशन करेंगे, उसी हिसाब से फिर हम जो है आपका ट्रीटमेंट आगे से शुरू करेंगे।
2: क्या पड़ा है?
0: ये सिलीगुड़ी ग्रेटर लायंस आई हॉस्पिटल, सेवक रोड, बिहाइंड विशाल सिनेमा।
1: तपाईँले एकपल्ट डक्टरसँग सम्पर्क गर्नुहोस्, अनि तपाईँको रेटिनामा केही असुविधा छ भने उहाँले तपाईँलाई जाँच गरेर,
2: मेरो जन्मेदेखि अलिकति आँखा टेढापन जस्तो छ।
1: हजुर, आँखा
2: टेढापन जस्तो नि जन्मै हो। हुन्छ भाइ, बोल्न मन लागेको थियो भोलि है। डक्टर बाबुको नाम चाहिँ के भन्नुभयो?
1: डक्टर साहबको नाम डाक्टर भूपेन्द्र जित
2: सिंह।
1: हवस् हवस्, हुन्छ हवस्, धन्यवाद हामीसँग यहाँ बात गरिदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। त्यो डक्टर साहब हाम्रो करे कि इन्जेक्सन चाहिँ क्या ग्यारेन्टी हाम्रो केही खुस रहे कि एकदम महँगा भयो, कोही लोक उसका अफोर्ड नै कर पाएगा।
0: देखिए
1: इस स्थिति में क्या होगा?
0: देखिए बहुत सारे इंजेक्शंस जो है वो मतलब अलग अलग वैरायटी के इंजेक्शंस आते हैं, कुछ इंजेक्शंस जो होते हैं वो थोड़े सस्ते भी होते हैं कि जो मरीज ले सकते हैं, नहीं तो हमारे हॉस्पिटल में जो है अलग अलग इंश्योरेंस, अलग अलग कार्ड्स की जो है वो सुविधा है, जिसके कारण जो है काफ़ी मरीजों की हेल्प हो सकती है।
1: जैसे मैंने सुना है अभी एक ही इंजेक्शन का दाम 30,000 भी है
0: जी। नहीं, कुछ इंजेक्शन जो है वो 6,000 के आसपास भी आ जाते हैं, स्टार्ट हो जाते हैं। और दूसरा, जैसा कि मैंने आपको बोला कि हमारे हॉस्पिटल में बहुत सारे इंश्योरेंसेस, बहुत सारे जो गवर्नमेंट जो कार्ड्स होते हैं वो भी चलते हैं, और उनके कारण जो है वो गवर्नमेंट की ओर से जो सर्विसेज होती हैं और जहाँ फिर इंश्योरेंस में जो होते हैं कुछ इंजेक्शन वगैरह कुछ कवर हो सकते हैं, नहीं तो कम से कम जो है 6,000 के आसपास इंजेक्शन स्टार्ट हो जाता है, फिर कुछ 15,000-30,000 ऐसे जो है वो रेट्स हो जाते
1: हैं। मान लीजिए आप इस बार 30,000 की, क्या नेक्स्ट टाइम में फिर इंजेक्शन लगाने के बाद उसका रेट थोड़ा कम होता है या?
0: वही जैसा कि मैंने आपको बताया, ये इंश्योरेंस कंपनीज के ऊपर भी डिपेंड करता है या फिर जो हमारे हॉस्पिटल की ओर से जो सुविधा दी जाती है उनके ऊपर भी डिपेंड करता है। कुछ कुछ ऐसे स्कीम्स होती हैं या कुछ कुछ कार्ड्स में ऐसे स्कीम होता है कि वो पेशेंट को कुछ इंजेक्शन फ्री हो सकता है।
1: तो अगर रक्त जैसे ब्लड में शुगर के स्तर और ये प्रेशर
0: जी
1: नियंत्रित रखने तथा नियमित जांच करवाने से आंखों की रोशनी सुरक्षित रखने में कितनी मदद मिलती है?
0: देखिए, अगर हम एक पेशेंट में देखते हैं कि उनको डायबिटिक रेटिनोपैथी है या फिर बीपी के कारण जो हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी है, उनका जो हमारा बनता है वो तो हम ट्रीटमेंट करेंगे करेंगे, लेकिन साथ में पेशेंट को अपने डायबिटीज में और अपने बीपी पे भी कंट्रोल करना पड़ेगा। वरना मान लीजिए एक आंख में कुछ दिक्कत हुआ, ब्लीडिंग हुआ,

0: हमने ट्रीटमेंट किया, लेकिन पेशेंट अपना शुगर का जो है वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर दूसरी आंख में भी ऐसा कुछ ना कुछ दिक्कत हो सकता है। तो उसके लिए जो हमारे और बाकी जो टीम्स होती हैं, जो हमारी और स्पेशलिटी के जो डॉक्टर्स होते हैं, उनके साथ कॉन्टैक्ट करके जो है उनका प्रॉपर कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटमेंट किया जाता है। जैसे मेडिसिन के डॉक्टर या जो जनरल फिजिशियन जो डॉक्टर्स होते हैं जो हमारे पास होते हैं, उनके साथ हम कॉन्टैक्ट करके उनके साथ हम जो है ट्रीटमेंट प्लान करते हैं पेशेंट्स का।
1: सर अभी देखते हैं कि बच्चे लोग में अभी ये जैसे आँख की समस्या भी होता है ना, जैसे रेटिना का क्या हो बच्चे लोग में भी देखता है।
0: कौन से बच्चे लोग? जैसे मतलब छोटा बच्चा, सबसे छोटा बच्चा,
1: अभी छोटे छोटे बच्चे लोग भी डायबिटिक होने लगता है
0: जी।
1: अज्ञा ना अभी फोन है। हेलो,
2: नमस्कार।
1: नमस्कार हजुर, को बोल्नु भयो, कहाँबाट बोल्नु हुँदैछ?
2: म
1: हेलो
2: हजुर, निपालबाट बोलेको थिएँ
1: हजुर।
2: शुभ नाम आँखा, त्यो नसा खराब छ, नसा खराब त्यो
1: के भन्नु,
2: त्यो अर्को आँखा लगाउँदा मतलब त्यो हुन्छ भन्नु
1: हजुर। के भयो तपाईँको आँखाको के भएको छ?
2: अनि आँखा त अब कति डक्टरले देखाए त आँखाको इलाजै छैन भन्दैछ हो, अनि अर्को आँखा अर्को आँखा लगाउँदा हुन्छ भन्छ नि, देख्छ भन्छ आँखालाई, अर्को आँखालाई।
0: हेलो
2: हेलो,
0: हाँ जी, देखिए जो आप बता रहे हैं कि किसी डॉक्टर ने आपको ऐसा बोला था कि आपका अभी नस खराब है या रिप्लेस करना पड़ेगा, दोनों चीजें जो होती हैं।
2: बस बचपन में जो बारिश पड़ेगा, बारिश होता है ना,
0: हाँ जी,
2: इसमें बचपन में हाथ में लग गया था ना।
1: अरे फोन तभी को रेडियो अलग पर रखना
2: है, अरे मेरे रेडियो ऑन है ना। लास्टमै भएन, अब इलाजै छैन भन्नु थाल्यो हो, अनि अर्को आँखा लगाउँदा हुन्छ हुँदैन भनिदिनु त।
1: तब डॉक्टर जो बच्चे थे, बच्चे के लिए उनको जो पटिका अनुपालो तो वो उसको थोड़ा असर कर गया, अब कोई डॉक्टर बोल रहे कि उसका रिप्लेस करने से आँख ठीक हो जाएगा।
0: ठीक है, देखिए जैसा कि आप बता रहे हैं कि आपको बचपन में चोट लगा था और आगे जो है बाद में आपको किसी डॉक्टर ने बोला कि आँख रिप्लेस करके जो है वो आँख ठीक हो जाएगा, तो आप हमारे पास आ सकते हैं। हमारे पास कॉर्निया स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स होते हैं जो कि हम जिसको हम बोलते हैं कि कॉर्निया ट्रांसप्लांट करना या आँख को रिप्लेस करना, वो देखेंगे कि कितना चोट है, कितना गहरा है और उसको क्या रिप्लेस करने से ठीक होगा कि नहीं होगा, और ये भी हम अच्छे से हम देखेंगे कि बचपन में कब चोट लगा था, ठीक है, उसी हिसाब से हम देखेंगे कि पीछे रेटिना भी अच्छे से डेवलप हुआ है कि नहीं हुआ है, कि उसको रिप्लेस करके कोई फायदा होगा कि नहीं होगा, उसी हिसाब से हम आगे जो है चलेंगे।
1: तपाईले कुरा बुझ्नु भयो हजुर?
2: हजुर,
1: कुरा बुझ्नु भयो, डाक्टर साहबले के भन्नुभयो?
2: तपाईले भन्नुन् न।
1: हजुर, उहाँले भन्नुहुँदैछ एकपल्ट तपाईँको आँखाको रेटिना यता कोरोना पनि चेक गरेर उहाँ डाक्टर साहबसँग आएर देखाएर उहाँले हेरेर तपाईँको कतिसम्म चोट लागेको छ, तपाईँको रेटिना डेभलप भयो कि भएन त्यो चेक गर्नुहुन्छ, अनि मात्र तपाईँलाई त्यो सुझाव गर्न सक्नु। यहाँ डाक्टर साहब हुनुहुन्छ ग्रेटर लाइन्स हस्पिटलमा र तपाईँले हजुर हजुर त्यहाँनिर
2: हजुर
1: एकपल्ट देखाउनुहोस् न, एकपल्ट देखाउनुहोस् अनि तपाईँको समस्या समाधान हुन्छ, डाक्टर साहबले तपाईँको आँखाको हेरेर तपाईँलाई सुझाव गर्नुहुनेछ के गर्नुपर्ने भनेर। हवस् त, हुन्छ, यहाँले हामीसँग बात गरिदिनु, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद।

0: धन्यवाद।
1: तो डॉक्टर साहब, ये जो बच्चे का स्क्विंच आईज होता है ना, तो आँख में वो जिसे हम लोग का टेढ़ा जिसे बोलते हैं, जो दम जो बीच में नहीं रहता है, तो इस अवस्था में बच्चे को क्या ठीक किया जा सकता है कि नहीं, क्या इसका कारण क्या हो सकता है?
2: देखिए, ये कुछ ना कुछ जेनेटिक कारण भी हो सकता है। कई बार जो होता है मसल्स अच्छे से डेवलप नहीं होते हैं, उसके कारण भी हो सकता है। कई बार बचपन में मान लीजिए अगर बच्चा जो है वो अच्छे से खेल कूद नहीं कर रहा है, वो बच्चा अंदर ही रहता है, मोबाइल ज़्यादा चलाता रहता है, पास का ज़्यादा देखता रहता है, दूर नहीं देखता रहता है, उसके मसल्स अडेप्ट भी हो सकते हैं। कई बार चोट लगने के कारण भी ये सब हो सकता है। कई बार बहुत सारी सिस्टमिक डिजीजेस के कारण भी ऐसा हो सकता है।
1: बाय बर्थ भी हो सकता है।
2: हाँ जी हाँ, बिल्कुल, बाय बर्थ भी ऐसा हो सकता है।
1: इसको क्या ठीक किया जा सकता है कि नहीं?
2: हाँ, ठीक किया जा सकता है। अगर एक उम्र तक हम 8 साल तक ठीक करते हैं तो वो अच्छा रोशनी भी आ सकता है बच्चों में, ठीक हो सकता है, फिर वो दोनों आँख से एक प्रकार भी देखते हैं।
1: जैसे मैं अभी बात कर रही थी, हम लोग देखे कि बच्चे लोग जो छोटे छोटे बच्चे भी अभी उन लोग का भी डायबिटीज
2: जी
1: है, और उन लोग के बच्चे ने किस तरह से अपनी आँख को सुरक्षा किया जा सकता है?
2: सबसे पहले तो जो है बच्चों में आजकल जो डायबिटीज हो रहा है, मुझे तो यही लगता है कि उनके खाने पीने को हमें सुधारना चाहिए। बाहर का खाना पीना वो थोड़ा कम करें, एक्सरसाइज ज़्यादा करें, ठीक है, ताकि उनका नॉर्मल जो अच्छा हेल्थ हो उन सब पे हमें थोड़ा ध्यान देना चाहिए। फिर जो है उनका जो है डायबिटीज़ भी कंट्रोल रहेगा और साथ में जो है उनका आँख भी हेल्दी रहेगा। दूसरा, खेल कूद करना बच्चों में बहुत ज़रूरी है, उसमें फिर चश्मा लगने का चांसेस कम हो जाता है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, कुछ बच्चों में या कुछ जवान लोगों में ऑटोइम्यून जो डायबिटीज़ होता है, टाइप 1 डायबिटीज़ होता है, वो हो जाता है, ठीक है। तो उसके लिए फिर यही है कि हमें जल्दी से जल्दी उसको जो है चेक करवाना चाहिए।
1: सर, ऐसा भी बोला जाता है कि आँख में का जो एक्सरसाइज होता है
2: जी,
1: इससे भी आँख ठीक किया जा सकता है, तक सच है?
2: एक्सरसाइज जो है वो करना अच्छी बात होती है, उससे जो हमारा आँख का फैटीग वगैरह होता है जो वो थोड़ा ठीक हो जाता है। हमारे मसल्स की जो एक्सरसाइज होती है तो उनसे थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट तो हो सकता है, लेकिन अगर एक उम्र के हिसाब से मसल वीक होने लगता है तो फिर हमें जो है पास का चश्मा वगैरह लगाना ही पड़ेगा।
1: तो एक सामान्य व्यक्ति किस तरह से अपनी आँख को सुरक्षा कर सकते हैं, जैसे किसी का भी कोई रोग ना हो
2: जी,
1: तो उसे की उसने किस तरह से अपनी आँख को सुरक्षित रखना है, किस चीज में ध्यान देना है?
2: देखिए, स्पेशली ये तो डिपेंड करता है कि उनका काम कैसा है। अगर मान लीजिए कुछ काम उनका ऐसा है कि उनकी आँख में कुछ गिर सकता है, जैसे जो वेल्डर्स होते हैं, जो वेल्डिंग करते हैं, तो वो हमारे पास कई बार ऐसे पेशेंट्स आते हैं कि उनकी आँख में जो है फॉरेन बॉडी गिर जाता है, कुछ उनकी आँख में आयरन मटेरियल गिर जाता है, ऐसा कुछ ना कुछ गिर जाता है, तो उनको हमेशा प्रोटेक्टिव ग्लासेस पहन के रखना चाहिए, कुछ चश्मा पहन के रखना चाहिए कि उनकी आँख में कुछ ना गिरे। दूसरा, अगर जैसे हम डायबिटीज़ की बात कर रहे हैं तो एक लाइफ स्टाइल, हेल्दी लाइफ स्टाइल रहना चाहिए। कम से कम दिन में आधा पौना घंटा वो एक्सरसाइज करें, वॉकिंग वगैरह करें, उनसे जो है काफ़ी सुधार होता है।
1: तो अभी थोड़ा समय भी हम लोग का फोन है, एक तो फोन कॉल आ गया। हेलो
0: हेलो,
1: हजुर को बोल्नु भा?
0: हजुर नमस्कार, तक कन्टोन बडा शेखर बोल्दै छु।
1: हजुर हजुर, हामीसँग धेरै कम्ती टाइम छ, बताउनु ल।
0: हजुर हुन्छ, अहिले आरपी सर, आरपी का कोही अभी ट्रिटमेन्ट आया है कि नहीं नया?
2: देखिए, आरपी का जो है अभी एक्सपेरिमेंटल स्टडीज चल रहा है, लेकिन अगर आपको तो इनिशियल स्टेजेस में है, या फिर अगर मान लीजिए आरपी के साथ अगर आपको मैक्युलर एडिमा होता है तो उसमें थोड़ा उसका ट्रीटमेंट हो जाता है, लेकिन अगर बहुत सीवियर आरपी हो जाता है तो उसमें इतना कुछ अभी तो हम नहीं कर पाते हैं। हाँ, दूसरा ये जो जरूरी एक पॉइंट उसमें होता है कि जेनेटिक काउंसलिंग, तो जेनेटिक काउंसलिंग करना बहुत जरूरी होता है।
0: जी जी जी जी, वो तो मेरे आंखों में डे बाय डे फॉलिंग एक्सीडेंट के बाद से मेरे आंखों में थोड़ा धुंधलापन आना शुरू हो गया था, तो अभी एकदम क्लाउडी भी जाना है अभी।
2: ओके,
0: तो इंडिया का किस किस जगह में भी शंकरानंद्रालय कहाँ कहाँ पर जाकर आया हूँ मैं
2: जी,
0: तो वहाँ पर भी जाने पर कोई ऑपरेशन भी नहीं होगा, ट्रांसप्लांट भी नहीं होगा
2: जी,
0: कुछ नया टेक्नोलॉजी आएगा तो कुछ उपाय कर सकते हैं, बोला था हमको।
2: कोई बात नहीं, आप एक बार हमारे पास आके दिखाइए, हम देखेंगे कि आपके कौन से हिस्से में दिक्कत है, उस हिसाब से फिर हम जो है आगे ट्रीटमेंट प्लान करेंगे।
0: जी जी, आप लाइन्स क्लब में रहते हैं ना?
2: जी जी, लाइन्स क्लब
0: महानंद ब्रिज के नीचे है ना वहाँ
1: लाइन उसका। अहिलेलाई यहाँले बात गर्नुभयो है, धेरै धेरै धन्यवाद, हामीसँग धेरै कम समय।

0: ये असली है
1: BIS केयर ऐप से, जहां आपको ये इम्पोर्टेंट डिटेल एक ही क्लिक में मिल जाएगी।
2: बनिए जागरूक ग्राहक और कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले उसकी प्रामाणिकता चेक करने के लिए आज ही डाउनलोड करें BIS केयर ऐप।
3: हाँ, ये रिंग अच्छी है, बीवी को पसंद भी आ जाएगी।
4: अरे यस सर, आपकी चॉइस बहुत अच्छी है और ये डिजाइन भी नया है।
3: डिजाइन नया है वो तो ठीक है, लेकिन सोने की प्योरिटी का प्रूफ कहाँ मिलेगा?
2: बनिए एक जागरूक ग्राहक, आज ही डाउनलोड कीजिए BIS केयर ऐप। सोना खरीदने से पहले BIS केयर ऐप पर HUID कोड अवश्य वेरीफाई करें।
0: अब प्रस्तुत कार्यक्रम गौले सभा।

0: आपके 4,800 रिवॉर्ड पॉइंट्स आज एक्सपायर हो रहे हैं, अभी रिडीम करें।
1: अरे वाह, मेरे इतने पॉइंट्स कैसे आए?
2: बस यही पूछो Why? रिवॉर्ड पॉइंट्स के नाम पर आए किसी अननोन लिंक पर क्लिक करने से पहले सोचिए। एक Why आपको फ्रॉड से बचाए।
3: हमेशा पूछो WHY Why कहता है कैप्टन Y ऑफ SBI,
2: आपका साइबर रक्षक।
4: हाँ, ये रिंग अच्छी है, बीवी को पसंद भी आ जाएगी।
5: अरे यस सर, आपकी चॉइस बहुत अच्छी है और ये डिजाइन भी नया है।
4: डिजाइन नया है वो तो ठीक है, लेकिन सोने की प्योरिटी का प्रूफ कहाँ मिलेगा?
6: बनिए एक जागरूक ग्राहक, आज ही डाउनलोड कीजिए BIS केयर ऐप। सोना खरीदने से पहले BIS केयर ऐप पर HUID कोड अवश्य वेरीफाई करें।

0: डिजाइन नया है वो तो ठीक है, लेकिन सोने की प्योरिटी का प्रूफ कहाँ मिलेगा?
1: बनिए एक जागरूक ग्राहक, आज ही डाउनलोड कीजिए BIS केयर ऐप। सोना खरीदने से पहले BIS केयर ऐप पर HUID कोड अवश्य वेरीफाई करें।
2: सरकार के नियमों के अनुसार 450 से अधिक उत्पाद जैसे ज्वेलरी, टॉयज, हेलमेट, इलेक्ट्रॉनिक्स इत्यादि ऐसे हैं जिनके निर्माण, आयात या सेल के लिए BIS मानक चिन्ह आवश्यक है। एक जागरूक ग्राहक बनिए, किसी भी प्रोडक्ट को खरीदते वक्त उस पर BIS मानक चिन्ह जरूर देखें और उस प्रोडक्ट की प्रामाणिकता जाँचने के लिए आज ही डाउनलोड करें BIS केयर ऐप।
3: बुखार आया है, इसे नजरअंदाज न करें।
4: डेंगू या मलेरिया दोनों ही मच्छर जनित बीमारियाँ हो सकती हैं।
3: डेंगू और मलेरिया में कंपकंपी के साथ बुखार आना, पसीना आना, सिरदर्द, तेज पेट दर्द, बदन दर्द और बहुत ज्यादा कमजोरी जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं।
4: ऐसे लक्षण दिखाई देने पर खुद से दवा न ले, तुरंत नजदीकी अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्र जाएं और डॉक्टर की सलाह लें।
3: घर के आसपास जमा पानी साफ करें, अपने आसपास साफ सफाई रखें, मच्छरदानी का इस्तेमाल करें और मच्छरों को पनपने से रोकें।
4: जागरूक रहें, मच्छर जनित बीमारियों से बचाव करें।
3: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा जनहित में प्रचारित।
5: हाँ, ये हेलमेट अच्छा है, लेकिन ये सेफ है क्या?
6: चिंता मत कीजिए, इस हेलमेट पर ISI मार्क है।
5: और मुझे कैसे पता चलेगा कि ये असली है?
6: BIS केयर ऐप से, जहाँ आपको ये इम्पोर्टेंट डिटेल एक ही क्लिक में मिल जाएगी।
1: बनिए जागरूक ग्राहक और कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले उसकी प्रामाणिकता चेक करने के लिए आज ही डाउनलोड करें BIS केयर ऐप।

0: सर 5,000 रुपए लगाइए और 8,000 रुपए प्रॉफिट पाइए, ये देखिए प्रूफ का स्क्रीनशॉट।
1: वाओ, स्क्रीनशॉट का प्रॉफिट असली है या सिर्फ स्क्रीन पे? व्हाट्सएप या टेलीग्राम इन्वेस्टमेंट ग्रुप्स में फेक प्रॉफिट्स और स्मॉल रिवॉर्ड से ट्रस्ट बनाया जाता है, फिर इन्वेस्टमेंट बढ़ता जाता है, इसलिए
2: हमेशा पूछो WHY Why कहता है कैप्टन Y ऑफ SBI,
1: आपका साइबर रक्षक।
3: This helmet fits better. I'll buy this one. But are you sure about its safety features?
4: Don't worry. This helmet is ISI certified.
3: And how will I know if it's authentic?
4: Just by downloading the BIS Care app, where you can get all the necessary details in a click.
5: Be a vigilant consumer. Download the BIS Care app today to check the product's authenticity before purchase.
6: सत्यनिष्ठा केवल एक शब्द होइन, यो हाम्रो कार्य संस्कृतिको पहिचान हो।
7: हरेक काममा पारदर्शिता, हरेक निर्णयमा निष्पक्षता, हरेक पाइलामा जवाफदेहिता,
6: यही हो सत्यनिष्ठा, यही हो समृद्धिको बाटो। किनकि प्रिभेन्टिभ भिजिलेन्स केवल एउटा अभियान होइन,
7: यो हो असल व्यवस्था र असल भविष्यको जिम्मेदारी।
6: सफा सोच, सही काम, सत्यनिष्ठा हाम्रो पहिचान। एनटिपिसी रमामसँग सत्यनिष्ठादेखि समृद्धिको विश्वास।

0: পারছেন না, একটুতেই মাথা ঘুরছে, বারবার বমি হচ্ছে বা পেটের যন্ত্রণা, ছ ঘন্টারও বেশি সময় প্রস্রাব হয়নি, দেহের কোনো জায়গা থেকে নিজে থেকে রক্তপাত হলে বা চামড়ায় কালশিটে দেখা দিলে, জ্বরের মাত্রা খুব বেশি হলে, রোগী ঘরের মধ্যে রয়েছে বা শ্বাসকষ্ট হচ্ছে, তবে দেরি না করে রোগীকে হাসপাতালে নিয়ে যান। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তর দ্বারা জনস্বার্থে প্রচারিত।
1: आपके 4,800 रिवॉर्ड पॉइंट्स आज एक्सपायर हो रहे हैं, अभी रिडीम करें।
2: अरे वाह, मेरे इतने पॉइंट्स कैसे आए?
3: बस यही पूछो Why? रिवॉर्ड पॉइंट्स के नाम पर आए किसी अननोन लिंक पर क्लिक करने से पहले सोचिए, एक Why आपको फ्रॉड से बचाए।
1: हमेशा पूछो WHY, Why? कहता है कैप्टन Why ऑफ SBI,
3: आपका साइबर रक्षक।
4: भारत सरकार के नियमों के अनुसार 450 से अधिक उत्पाद जैसे ज्वेलरी, टॉयज, हेलमेट, इलेक्ट्रॉनिक्स इत्यादि ऐसे हैं जिनके निर्माण, आयात या सेल के लिए BIS मानक चिन्ह आवश्यक है। एक जागरूक ग्राहक बनिए, किसी भी प्रोडक्ट को खरीदते वक्त उस पर BIS मानक चिन्ह जरूर देखें और उस प्रोडक्ट की प्रामाणिकता जाँचने के लिए आज ही डाउनलोड करें BIS केयर ऐप।
5: के लिए गहने बनवाए एकदम खरे हॉलमार्क के,
6: और तो और दुकानदार ने खुद 15 मिनट में हॉलमार्क के निशान लगाकर भी दिए।
7: अरे बुद्धू, हॉलमार्क गहने तो सिर्फ BIS लाइसेंस होल्डर ज्वेलर ही बेचते हैं, और BIS हॉलमार्क करने के लिए 4 से 5 घंटे का वक्त लगता है।
8: अगर आप भी किसी ऐसे धोखे का शिकार हुए हैं तो BIS की वेबसाइट BIS.org.in पर शिकायत करें। जागो ग्राहक, जागो।

0: सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
1: आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को 5 साल के लिए बढ़ाया। दिव्यांग पेंशन लाभार्थियों के लिए पात्रता मानदंड और सहायता दरों में संशोधन। सरकार ने IDBI बैंक के पुनर्गठन और रेलवे कर्मचारियों के लिए 78 दिन के बोनस को स्वीकृति दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनाडा के साथ दूरदर्शी रणनीतिक साझेदारी बनाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। दोनों देशों ने व्यापार, ऊर्जा और सुरक्षा क्षेत्रों में संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की। भारत ने सऊदी अरब में नागरिक अवसंरचनाओं पर हमलों को अस्वीकार्य बताते हुए इन्हें तुरंत बंद करने को कहा। महाराष्ट्र ने 305 तालुकों को सूखाग्रस्त घोषित किया। दीपावली से पहले किसानों को 5,000 रुपए की प्रारंभिक सहायता दी जाएगी। पैराग्वे में

0: आनंद कुमार वेल कुमार ने विश्व स्केटिंग खेलों में 1000 मीटर स्प्रिंट में रजत पदक जीत लिया है और हैदराबाद में भारत और वेस्टइंडीज के बीच चौथा T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच जारी। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 3 महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को 5 वर्षों की अवधि के लिए जारी रखने को स्वीकृति दी है। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ये जानकारी दी।
1: दूसरा बड़ा फैसला आज लिया गया है, वंचितों को वरीयता, जो हमारे वीक सेक्शंस हैं सोसाइटी के, वल्नरेबल सेक्शंस हैं, उनके लिए सोशल सिक्योरिटी नेट का एक्सपेंशन, इसे 2031 तक बढ़ाया गया है और टोटल 53,428 करोड़ रुपीस का प्रावधान सोशल सिक्योरिटी नेट के एक्सपेंडेड फॉर्म में किया गया है।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि दिव्यांग जन पेंशन योजना के अंतर्गत अब 79 वर्ष तक की आयु वर्ग के लिए सहायता राशि ₹375 और 80 वर्ष तथा उससे अधिक आयु वर्ग के लिए ₹625 होगी।
1: दिव्यांग जनों के लिए जो पहले 80% थ्रेशोल्ड था डिसेबिलिटी पेंशन में एलिजिबिलिटी के लिए, उसको आधा करके 40% पर भी अब दिव्यांग पेंशन दिया जाएगा। पहले दिव्यांग पेंशन 18 साल से ऊपर के व्यक्ति को ही दिया जाता था, अब जन्म से ही दिव्यांग जन को पेंशन में कवर किया जाएगा। 27 लाख दिव्यांग जन लाभार्थी होंगे, टोटल लाभार्थियों की संख्या बढ़ के करीब 3,20,00,000 हो जाएगी।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने IDBI बैंक के पुनर्गठन को भी मंजूरी दे दी है।
2: भारत जिस तेजी से ग्रो कर रहा है, इसमें ग्रोथ कैपिटल की बहुत रिक्वायरमेंट, ऐसी हमारे पास कई संस्थाएं चाहिए जो कि ग्रोथ कैपिटल को ला सके, MSMEs को सपोर्ट कर सके, इसीलिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक उसमें एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर सेलेक्ट किया गया है और स्ट्रेटेजिक पार्टनर की मदद से नया कैपिटल इन्फ्यूज किया जाएगा और भारत में फाइनेंशियल सर्विसेज में लार्जेस्ट FDI आने का माध्यम इस निर्णय से बना।
0: मंत्रिमंडल ने रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन का बोनस देने की भी घोषणा की है। श्री वैष्णव ने बताया कि प्रत्येक पात्र कर्मचारी को अधिकतम ₹17,951 का भुगतान किया जाएगा।
1: रेलवे के करीब 11,40,770 कर्मचारियों के लिए परफॉर्मेंस लिंक्ड बोनस, 78 दिनों का बोनस आज कैबिनेट ने अप्रूव किया। ये दीपावली का उपहार है रेलवे के सभी कर्मठ कर्मचारियों के लिए जो दिन रात मेहनत करते हैं। करीब 2,009 करोड़ रुपए का टोटल बोनस है।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि रेलवे में बड़े पैमाने पर भर्ती अभियान चल रहा है।
1: रेलवे में मैसिव रिक्रूटमेंट चल रहा है, भर्तियां करीब 1,65,000 भर्तियां निकली हुई है जिसपे एग्जाम लगातार चल रहा है। अब तक करीब करीब 37,000 रोजगार पक्की नौकरी दी जा चुकी है रेलवे में इसी पिछले कुछ समय में ही। टोटल अगर 2014 से अब तक की देखें तो करीब 5.5 लाख भर्तियां रेलवे में की गई है।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने IDBI बैंक के पुनर्गठन को आर्थिक सुधारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव बताया है। उन्होंने कहा कि सरकार कम हिस्सेदारी बनाए रखते हुए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के माध्यम से विकास के अगले चरण को गति दे रही है। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि इससे न केवल बैंकिंग व्यवस्था मजबूत होगी बल्कि बैंकिंग सेवाएं वैश्विक मानकों से बढ़कर होंगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए। डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत कनाडा के साथ एक ऐसी रचनात्मक और भविष्योन्मुखी रणनीतिक साझेदारी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है जिससे दोनों देशों के लोगों को फायदा हो। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद से मुलाकात की और दोनों देशों के बीच संबंधों को प्रगाढ़ करने पर चर्चा की। उन्होंने व्यापार, प्रौद्योगिकी, सुरक्षा, ऊर्जा, शिक्षा और लोगों के आवागमन में भारत कनाडा संबंधों को और मजबूत करने पर बातचीत की।

0: श्री मोदी ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर बातचीत को जल्द पूरा करने पर बल दिया। उन्होंने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रम पर भी विचारों का आदान प्रदान किया। इससे पहले विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और कनाडा की विदेश मंत्री ने व्यापार और निवेश, शिक्षा, ऊर्जा, रक्षा और जन समुदाय आदान प्रदान क्षेत्रों में संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की। कनाडा की विदेश मंत्री ने कहा कि व्यापार वार्ताओं को आगे बढ़ाने से लेकर ऊर्जा, नवाचार और सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने तक भारत और कनाडा की प्रगति से वे उत्साहित हैं। सरकार ने भारत मॉरिशस के दोहरे कराधान निवारण समझौते में संशोधन अधिसूचित किए हैं। इसमें कर चोरी और कर से बचने के लिए संधि प्रावधानों के दुरुपयोग को रोकने के लिए एक प्रमुख उद्देश्य परीक्षण शामिल किया गया है। संशोधित समझौते के अंतर्गत यदि किसी लेन देन या व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य कर संबंधी लाभों को प्राप्त करना पाया जाता है तो ऐसे लाभों को अस्वीकार किया जा सकता है। भारत ने आज सऊदी अरब के साथ एकजुटता व्यक्त करते हुए पश्चिम एशिया के देशों में हुए हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत नागरिक बुनियादी ढांचे पर सभी हमलों की निंदा करता है। उन्होंने कहा कि ऐसे हमले पूरी तरह स्वीकार्य हैं और इन्हें फौरन बंद होना चाहिए। श्री जायसवाल ने बताया कि सऊदी अरब में भारतीय दूतावास प्रवासी भारतीयों के साथ नियमित संपर्क में है और परामर्श भी जारी किया गया है। उन्होंने बताया कि रियाद हवाई अड्डे पर हमले के बाद उड़ानों में व्यवधान आया है।
1: भारत और सऊदी अरब के बीच में काफी आवाजाही होती है, लेकिन हमारे जो एम्बेसी हैं वो एयरलाइन से, समुदाय से और जिनको जिस प्रकार का जो भी उनको मदद चाहिए वो करा रही है। और हमारा मानना है कि सिचुएशन अगर बेहतर हो जाए तो लोग वापस आ सकेंगे घर। कुछ जहाज चल रही है, हमारे जो भारतीय जहाज थी उन पे डिस्ट्रप्शन आया है, लेकिन सऊदी अरेबिया की तरफ से जो उनके हवाई जहाज की कंपनियां हैं वो फ्लाइट्स चल रही हैं।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की सभ्यतागत यात्रा सदियों से सांस्कृतिक आदान प्रदान और ज्ञान के साझा प्रयासों से समृद्ध हुई है। भारत के वैश्विक सांस्कृतिक संबंधों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने एक संदेश में ये बात कही। उन्होंने कहा कि भिक्षुओं, विद्वानों, व्यापारियों और यात्रियों ने भूमि और समुद्री मार्गों के जरिए भारतीय विचारों को दुनिया भर में पहुंचाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा में 25 साल पूरे कर लिए हैं। उनकी इस यात्रा का मूल मंत्र जनसेवा से देश सेवा रहा है। सेवा और सुशासन के दृष्टिकोण के साथ सरकार 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। विशेष श्रृंखला में आज हम जानेंगे कि प्रधानमंत्री संग्रहालय ने किस तरह इस दृष्टिकोण को साकार किया है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2022 में प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया था, जिसमें देश के सभी प्रधानमंत्रियों के काम और देश के विकास में उनके योगदान को दर्शाया गया है। यह संग्रहालय दिखाता है कि कैसे भारतीय लोकतंत्र ने समाज के हर वर्ग के नेताओं को राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के अवसर दिए हैं। दो भवनों में फैला यह आधुनिक डिजिटल संग्रहालय भारत के राजनीतिक इतिहास, लोकतांत्रिक परंपराओं और विकास यात्रा की झलक प्रस्तुत करता है। संग्रहालय में वीरांगनाओं की महागाथा नाम से एक लाइट एंड साउंड शो आयोजित किया जाता है, जिसमें उन वीर महिलाओं की प्रेरणादायक कहानियां दिखाई जाती हैं जिन्होंने देश के सम्मान की रक्षा के लिए संघर्ष किया। इस संग्रहालय का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि यह सभी सरकारों की साझा विरासत और देश के विकास में उनके योगदान का प्रतीक है।
3: देश आज जिस ऊंचाई पर है वहां तक उसे पहुंचाने में स्वतंत्र भारत के बाद बनी प्रत्येक सरकार का योगदान है। मैंने लाल किले से भी ये बात कई बार दोहराई है। आज ये संग्रहालय भी प्रत्येक सरकार की साझा विरासत का जीवंत प्रतिबिंब बन गया है।
2: श्रीलंका के न्यायमूर्ति एस थुरैराजा ने प्रधानमंत्री संग्रहालय के दौरे के दौरान भारत के लोकतंत्र और देश के विकास में प्रधानमंत्रियों की भूमिका पर अपने विचार साझा किए।
4: हम भारत के मुख्य न्यायाधीश के निमंत्रण पर दिल्ली आए। मैं सोच रहा था कि जाऊं या नहीं, लेकिन अगर मैं नहीं आता तो बहुत कुछ मिस कर देता। यहां के लोग बहुत अच्छे हैं, आयोजक शानदार हैं और निर्देशक तथा वो बच्चे जो हमें गाइड कर रहे थे वे भी बेहद खुशमिजाज हैं।
2: नई दिल्ली के तीन मूर्ति मार्ग पर स्थित प्रधानमंत्री संग्रहालय देश के सभी प्रधानमंत्रियों की सोच, नेतृत्व और योगदान को सामने लाकर युवा पीढ़ी को प्रेरित करता है। दीपेंद्र कुमार।

0: आकाशवाणी समाचार दिल्ली।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत किसानों की आजीविका में सुधार करते हुए वैश्विक खाद्य भंडार बनने की ओर अग्रसर है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री चौहान ने बताया कि 2014 से 2024 के बीच खाद्य उत्पादन में 49% की वृद्धि के साथ भारतीय कृषि ने कमी के दौर से निकलकर आत्मनिर्भरता और रिकॉर्ड उत्पादन की ओर कदम बढ़ाया है और दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है।
2: हमारे जो लक्ष्य है उत्पादन बढ़ाना, उत्पादन की लागत घटाना, उत्पादन के ठीक दाम देना, नुकसान हो जाए तो भरपाई करना, कृषि का विविधीकरण, वैल्यू एडिशन और प्राकृतिक खेती, इस धरती को, इस माटी को आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सुरक्षित रखना है। हम इतने स्वार्थी नहीं हो सकते कि अनियंत्रित केमिकल, फर्टिलाइजर, कीटनाशकों का उपयोग करके माटी के स्वास्थ्य खराब कर दें।
1: महाराष्ट्र के 358 तालुकों में से 305 को सूखाग्रस्त घोषित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दीपावली से पहले किसानों को 5,000 रुपए की प्रारंभिक वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है। मुंबई में श्री फडणवीस ने कहा कि सूखा राहत रियायतें सभी 305 प्रभावित तालुकों के किसानों तक पहुंचाई जाएंगी। सरकार ने गन्ना किसानों द्वारा उठाए गए मुद्दों की जांच करने और उनकी चिंताओं को दूर करने के लिए उचित उपायों की सिफारिश करने के लिए एक समिति का गठन किया है। नीति आयोग के पूर्व सदस्य प्रोफेसर रमेश चंद्र इस समिति की अध्यक्षता करेंगे। आनंद कुमार वेल कुमार ने पैराग्वे में विश्व स्केटिंग खेलों में 1000 मीटर स्प्रिंट स्पर्धा में रजत पदक जीता है। आनंद कुमार 4 मिलीसेकंड से स्वर्ण पदक जीतने से चूक गए। प्रतियोगिता में उन्होंने 500 मीटर स्प्रिंट स्पर्धा में कांस्य पदक भी जीता है। हैदराबाद में चौथे T20 क्रिकेट मुकाबले में वेस्टइंडीज ने भारत को 248 रन का लक्ष्य दिया है। साई होप ने नाबाद 102 रन की पारी खेली। अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव और अक्षर पटेल ने एक विकेट लिए। 5 मैचों की श्रृंखला में भारत 2-1 से आगे है। मौसम विभाग ने कल हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, दिल्ली, केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल पूर्वी राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आंधी तूफान के साथ ओले भी गिर सकते हैं। जम्मू कश्मीर में शारदीय नवरात्र के दौरान श्री माता वैष्णो देवी के मंदिर में अब तक 1,80,000 से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को 5 साल के लिए बढ़ाया। दिव्यांग पेंशन लाभार्थियों के लिए पात्रता मानदंड और सहायता दरों में संशोधन। सरकार ने IDBI बैंक के पुनर्गठन और रेलवे कर्मचारियों के लिए 78 दिन के बोनस को स्वीकृति दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनाडा के साथ एक दूरदर्शी रणनीतिक साझेदारी बनाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। भारत ने सऊदी अरब में नागरिक अवसंरचनाओं पर हमलों को अस्वीकार्य बताते हुए इन्हें फौरन बंद करने को कहा। और हैदराबाद में चौथे T20 क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज ने भारत को दिया 248 रन का लक्ष्य। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार,
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद न्यूज एट 9। The headlines. Cabinet approves continuation of National Social Assistance Program for 5 years, revises eligibility criteria and assistance rates for disability pension beneficiaries. Government gives nod to strategic restructuring of IDBI Bank and 78-day bonus for railway employees. Prime Minister Narendra Modi reaffirms India's commitment to building a forward-looking strategic partnership with Canada. Both countries review progress in ties with focus on trade, energy and security. India calls attacks on civil infrastructure in Saudi Arabia unacceptable, urges immediate cessation. Maharashtra declares 305 talukas drought hit, announces initial aid of 5,000 rupees for each.

0: चर्चा का विषय है। ये आकाशवाणी है, चर्चा का विषय है। कार्यक्रम में प्रस्तुत है बृहत्तर भारत, विश्व में सांस्कृतिक जुड़ाव को दर्शाते एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व राजदूत अनिल वाधवा और वरिष्ठ पत्रकार रवि पराशर। परिचर्चा का संचालन कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार।
1: श्रोताओं नमस्कार। संस्कृति मंत्रालय आज से नई दिल्ली में बृहत्तर भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है और इस सम्मेलन का विषय है भारत के वैश्विक सांस्कृतिक संबंध। और इस सम्मेलन में कई देशों के प्रतिनिधि, राजदूत, विद्वान भारत के ऐतिहासिक और समकालीन सांस्कृतिक संबंधों पर विचार विमर्श करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस कार्यक्रम में अपना संदेश दिया। उन्होंने कहा कि भारत की सभ्यतागत यात्रा सदियों पुरानी है और जो सांस्कृतिक आदान प्रदान तथा ज्ञान के साझा प्रयासों से जुड़ी हुई है। हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं पूर्व राजदूत अनिल वाधवा और वरिष्ठ पत्रकार रवि पराशर। आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद।
1: संस्कृति मंत्रालय में सचिव विवेक अग्रवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश पढ़ते हुए कहा,
3: So I'll read the message of Honorable Prime Minister. I'm pleased to learn that the Ministry of Culture through the National Center for the Arts is organizing an international conference in New Delhi on the theme Bharat's Culture Connections Across the Globe. I warmly welcome the scholars, researchers, diplomats and other distinguished participants from India and abroad who are participating in this important conference. For centuries, India's civilizational journey has been a story of cultural exchange. Centers of learning such as Nalanda strengthened the exchange of knowledge between India and other parts of Asia. Monks,

0: scholars, traders and travelers carried India's ideas to different parts of the world through land and maritime routes. Sites such as Angkor and Sambol Prey Kuk in the Southeast Asia bear witness to this cultural dialogue, where Indian traditions interacted with local cultures and took distinctive forms. The cultural dialogue continues to evolve even today. Indian philosophy, music, dance, literature, cinema and cuisine continue to connect India with societies across the world. Indian festivals and traditions are also celebrated with enthusiasm in many countries.
1: Sachiv ne Brihattar Bharat ke bare mein bataya.
0: It's indeed a privilege for Ministry of Culture that Honorable Prime Minister has given us this mandate to take up the mission of bringing India's ancient connections with the rest of the world, to bring them out, to put in scholarly effort to establish these connections along with scholars of the countries in which we had our ancient connections, and then bring these papers and bring these connections with international recognition.
1: अनिल जी, सबसे पहले मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहूंगा. बृहत्तर भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, एक आम श्रोता के दृष्टिकोण से अगर इसे समझने का प्रयास करें तो ये क्या है, इसकी उपयोगिता क्या है और इसका हमारी संस्कृति के लिए महत्व क्या है, और साथ ही हम जो अपने लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं एक विकसित देश के लिए, उस दिशा में इसका क्या महत्व है?
2: सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि बृहत्तर भारत का अर्थ क्या है. इसका अर्थ भारत की पुरानी राजनीतिक सीमाओं का विस्तार नहीं है. इसका आशय उन व्यापक सांस्कृतिक संबंधों से है जिसके माध्यम से भारतीय विचार, भाषाएं, साहित्य, धार्मिक परंपराएं, कला और ज्ञान भारत के बाहर अनेक देशों तक पहुंचे, और इन संबंधों को व्यापारियों, समुद्री यात्रियों, विद्वानों, बौद्ध भिक्षुकों, कलाकारों और सामान्य लोगों ने विकसित किया है. तो यह प्रक्रिया कई शताब्दियों तक चलती रही और इसके प्रभाव आज भी अनेक देशों की संस्कृति में दिखाई देते हैं. तो भारत की सभ्यता की एक बड़ी विशेषता यह रही है कि उसने विभिन्न विचारों और परंपराओं के साथ संवाद किया है, और यहाँ अनेक धर्म, भाषाएं और दर्शन विकसित हुए हैं. आप देखिए, वैदिक साहित्य है, उपनिषद है, बौद्ध और जैन दर्शन है, योग, आयुर्वेद, गणित और खगोल विज्ञान ने भारत के बौद्धिक जीवन को समृद्ध बनाया है
1: जी.
2: तो समय के साथ इसमें से अनेक विचार भारत की सीमाओं से बाहर पहुंचे. दूसरे देशों ने उन्हें अपनी आवश्यकताओं और सांस्कृतिक परंपराओं के अनुसार अपना लिया, और इस प्रकार सांस्कृतिक संबंध केवल एक देश से दूसरे देश तक विचार पहुंचाने का माध्यम नहीं थे
1: जी.
2: बल्कि आपसी सीधे और एक दूसरे को समृद्ध करने की प्रक्रिया भी थी. तो ये जो सम्मेलन हो रहा है ये इसी के विषय में.
1: परमेश्वर जी, अगर आपसे मैं पूछूं तो मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री मोदी लगातार भारत की प्राचीन विरासत और सभ्यतागत संबंधों को वैश्विक मंचों पर रेखांकित करते रहे हैं, और भारत का जो सॉफ्ट पावर है उसका भी उन्होंने हमेशा जिक्र किया है, चाहे देश के अंदर हो या देश के बाहर. जब भी कभी वो लोगों को संबोधित करते हैं तो ये बात जरूर रखते हैं. तो दूसरे देशों के साथ कूटनीतिक संबंधों को बढ़ाने की बात हो, संबंधों को और आगे ऊंचाई पर ले जाने की बात हो, तो ऐसी स्थिति में बृहत्तर भारत का महत्व हमारे लिए क्या है?
3: जी निखिल जी, बृहत्तर भारत का जो एक महत्व वाधवा जी ने रेखांकित किया कि ये केवल भौगोलिक सीमाओं के विस्तार की कोई बात नहीं है
1: जी.
3: और जहां तक प्रधानमंत्री की आपने बात की, तो आज हम देखते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब भी विदेश यात्राओं पर जाते हैं तो वहां भारतीय डायस्पोरा की खुशी का ठिकाना नहीं रहता. मोदी के साथ विदेश में रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों की जीवंत और खुशनुमा तस्वीरें हर बार हम लोग टेलीविजन पर और सोशल मीडिया पर, डिजिटल मीडिया पर देखते हैं. विदेश में भारतीयों ने खास पहचान कायम की है, और हम सब जानते हैं कि अब तो बहुत से देशों की राजनीति की मुख्य धारा में भी भारतीय मूल के लोगों ने अपनी पक्की और पुख्ता जगह बना ली है. जैसा कि आपने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश इस सम्मेलन के उद्घाटन के अवसर पर पढ़ा गया, और उन्होंने मुख्य रूप से, जो मुझे लगता है, कि तीन बातों पर विशेष ध्यान दिया
1: जी.
3: कि आज के दौर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की सांस्कृतिक विरासत को बहुत बड़ी पहचान और सम्मान मिल रहा है, इसमें किसी को भी शक संदेह नहीं होना चाहिए. दूसरी बात जो प्रमुख रूप से उन्होंने कही कि विदेशों में ले जाई गई भारत की प्राचीन सांस्कृतिक और ऐतिहासिक कलाकृतियों और पुरावशेषों को वापस देश में लाने की कोशिशों में एक नई रफ्तार आई, यानी विदेशों में किसी भी तरह से जो हमारी धरोहरें थी वो चली गई थी, कलाकृतियां थी, पांडुलिपियां थी, तो अब दूसरे देश हमें ससम्मान वो हमारी पुरानी चीजें, पुरानी थाती, पुरानी ज्ञान परंपरा के स्रोत वापस लौटा रहे हैं. और तीसरी जो महत्वपूर्ण बात प्रधानमंत्री ने इस अंतर्राष्ट्रीय

0: सम्मेलन के उद्घाटन पर कही कि भारत के संगीत, नृत्य और समृद्ध दर्शन ने हमेशा दुनिया को जोड़ने वाले पुल के तौर पर काम किया है।
1: जी।
0: पर यही बात है, यही मूल संदेश है जो आपके प्रश्न में अंतर्निहित है। भारत का पूरी दुनिया के साथ जो कूटनैतिक रिश्ता है वो कितना प्रगाढ़ है, कितना महत्वपूर्ण है, ये बात प्रधानमंत्री जी ने रेखांकित की। और हम जानते हैं कि आज बहुध्रुवीय दुनिया है, ऐसे में भारत भी एक प्रमुख ध्रुव के तौर पर उभर रहा है। ये बहुत सी घटनाओं से हम साबित कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं और देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं।
1: जी वाघवा जी, भारतीय विचारों और ज्ञान का जो प्रचार प्रसार हुआ प्राचीन काल में थल और समुद्री मार्गों से हुआ था, और आज की अगर हम बात करते हैं तो भारत अपने सभी सांस्कृतिक संबंधों की बात हो, व्यापारिक संबंधों की बात हो या ऐसे कूटनीतिक संबंध हो जिन्हें आगे बढ़ाए जा सकते हैं, जिन्हें बढ़ाया जाना भी आवश्यक हो, उसके लिए भी पर्यटन, व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में बढ़ाने के लिए लगातार समुद्री मार्गों को विस्तार देना, जिसमें कई सारी योजनाएं शुरू की गई हैं, हिंद प्रशांत की हम बात करते हैं, खुले हिंद प्रशांत की बात करते हैं, महासागर पहल की बात करते हैं, ये जो सारी चीजें हैं अगर इनका एकीकरण करके देखें तो इन विचारों को कहां तक पहुंचता हुआ आप देखते हैं?
2: देखिए, जैसे कि आपने कहा कि इतिहास में कई उदाहरण है, जैसे भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के संबंध इस इतिहास का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। दक्षिण पूर्व एशिया की संस्कृति पर उनका बहुत गहरा प्रभाव है और बौद्ध धर्म ने भी भारत को एशिया के अनेक देशों से जोड़ा है। तो चीन, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड और मध्य एशिया सब जगह बौद्ध विचार पहुंच चुके थे प्राचीन काल में। और फिर उसके बाद आज जैसे प्रधानमंत्री ने नालंदा और विक्रमशिला का जिक्र किया, इन प्राचीन शिक्षा केंद्रों की प्रतिष्ठा भी भारत के बाहर पहुंच चुकी थी। तो भारत की जो सांस्कृतिक यात्रा समुद्री मार्गों तक ही सीमित नहीं थी, क्योंकि मध्य एशिया को अगर हम देखें तो उसके साथ भी भारत के पुराने संबंध रहे हैं और एक रेशम मार्ग के नाम से प्रसिद्ध एक व्यापारिक नेटवर्क, उसके माध्यम से व्यापारी, यात्री, विद्वान सभी विभिन्न क्षेत्रों में यात्रा करा करते थे।
1: जी,
2: हम देखें तो इसका संस्कृत मेल का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। आज जो भारत की विदेश नीति है उसमें भी बृहत्तर भारत की अवधारणा आज भारत की विदेश नीति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर हम एक्ट ईस्ट नीति को देखें तो उसके अंतर्गत दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ संबंधों को मजबूत बनाने पर विशेष ध्यान दिया जाता है, क्योंकि इन देशों के साथ हमारे पुराने सांस्कृतिक संबंध आज व्यापार, पर्यटन, शिक्षा, प्रौद्योगिकी और लोगों के बीच संपर्क बनाने में सहायक हो सकते हैं। आज के अंतर्राष्ट्रीय संबंध समानता, आपसी सम्मान और साझा हितों पर आधारित होने चाहिए, ऐसा भारत का विश्वास है। और संस्कृत की निकटता विश्वास बनाने में सहायता करती है, लेकिन उसे ठोस सहयोग और व्यावहारिक कार्यक्रमों में बदलने की भी आवश्यकता है। तो इसके लिए भारत ने दूसरे देशों के विश्वविद्यालयों के साथ सहयोग बढ़ाया है, क्योंकि संयुक्त शोध हम देख रहे हैं, काफी सारी छात्रवृत्तियां भारत की गई हैं, सांस्कृतिक प्रदर्शनियां और ऐतिहासिक दस्तावेजों का संरक्षण इस दिशा में उपयोगी कदम हो रहा है। और हम देखते हैं कि नई पीढ़ी को इस विरासत से जोड़ना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तो युवाओं को शोध, छात्रवृत्तियां और सांस्कृतिक आदान प्रदान के अवसर मिलने चाहिए और डिजिटल अभिलेखागार, ऑनलाइन पुस्तकालय और ऐतिहासिक स्थलों की जानकारी इस दिशा में उपयोगी साधन बन सकते हैं। तो यही बृहत्तर भारत का एक महत्वपूर्ण संदेश है कि संस्कृति लोगों को जोड़ सकती है और भारतीय परंपरा में जो वैष्णव कुटुंबों का विचार है इसी व्यापक दृष्टि को व्यक्त करता है।
1: वाधवा जी, अभी आपने एक्ट ईस्ट पॉलिसी की बात की है तो बहुत ही कम शब्दों में अगर इसे समझना चाहे तो इसका बृहत्तर भारत की ऐतिहासिक अवधारणा के साथ किस तरह का संबंध नजर आता है, और ये जो हमारे सांस्कृतिक संबंध रहे हैं, अतीत के संपर्क रहे हैं, आज के रणनीतिक सहयोग को कितना आगे ले जा रहे हैं, खासतौर पे आधुनिक विदेश नीति को धरातल पर उतारने के लिए आर्थिक और सुरक्षा हितों की जब हम बात करते हैं उनको आगे ले जाने की बात करते हैं।
2: जैसे कि मैंने पहले भी जिक्र किया कि रामायण और महाभारत कहानियां दक्षिण पूर्व एशिया की संस्कृति पर इनका बहुत गहरा प्रभाव है, और इंडोनेशिया में रामायण नृत्य, नाटक और छाया पुतली कला के माध्यम से आज भी प्रस्तुत की जाती है। थाईलैंड में रामायण का स्थानीय रूप राम कियन के नाम से प्रसिद्ध है। कैम्बोडिया का अंकोर वाट मंदिर भी भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के ऐतिहासिक सांस्कृतिक संबंधों का एक उल्लेखनीय उदाहरण है। तो इन देशों में भारतीय परंपराओं को अपनी स्थानीय मान्यताओं और जीवन पद्धतियों के साथ मिलाकर नए रूप दिए गए हैं, इसलिए इन परंपराओं को केवल भारतीय संस्कृति का विस्तार मानना पर्याप्त नहीं है, वे उन देशों की एक सांस्कृतिक पहचान का एक हिस्सा है। तो ये हमें सिखाता है कि संस्कृतियां एक दूसरे से सीखकर

0: परिवर्तन स्वीकार करके और नए विचार अपनाकर समृद्ध होती है। और भारत ने जब एक्ट ईस्ट पॉलिसी शुरू करी थी 2014 में, उस समय में विदेश मंत्रालय में सचिव था, तो मुझे याद है कि बौद्ध धर्म के ऊपर हमने काफी काम किया और कई देशों को बौद्ध धर्म की जो विचारधारा है उसके चलते इन सभी देशों को भारत के साथ फिर से जोड़ने का काफी प्रयास किया था, क्योंकि भारत से बौद्ध विचार कई देशों में पहुंचे थे और बौद्ध भिक्षुओं ने लंबी यात्राएं की थी और विभिन्न देशों में शिक्षा और धार्मिक अध्ययन की केंद्र स्थापित करने में योगदान दिया था। अब हम चीन को ही देखें तो चीन से फायान और हिंसांग जैसे यात्री भारत आए, उन्होंने यहाँ के धार्मिक जीवन, शिक्षा केंद्रों और सामाजिक व्यवस्था का भी अध्ययन किया और दूसरी ओर भारतीय विद्वान बौद्ध ग्रंथों के अध्ययन और अनुवाद के लिए चीन और दूसरे देशों में गए। तो हमने नालंदा का फिर से विकास किया और भारत सरकार आज भी नालंदा को काफी मान्यता दे रही है। वो इसलिए है क्योंकि भारत प्राचीन काल में जो अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान और शिक्षा का संसार का महत्वपूर्ण हिस्सा था, उसका एक रिवाइवल जिसको हम बोलते हैं, उसकी एक कोशिश आजकल हो रही है। और आगे मैंने गांधार की कला का भी जिक्र किया था, तो इसमें हमें भारतीय बौद्ध विषयों के साथ यूनानी और रोमन कला के प्रभाव दिखाई देते हैं। तो इन सभी का प्रसार एक्ट ईस्ट पॉलिसी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जब हम एक्ट ईस्ट पॉलिसी की बात करते हैं विदेश नीति में, तो ये जो पुराने संबंध हैं भारत के इन सभी देशों के साथ में, इनका जो जिसको हम रिवाइवल बोलते हैं अंग्रेजी में, अगर वो हो जाए तो विदेश नीति में इसकी काफी सहायता मिल सकती है।
1: जी पराशर जी, भारत और आसियान देशों की अगर हम बात करें तो साझा धार्मिक, साहित्यिक, भाषाई और कलात्मक विरासत की अक्सर चर्चा होती है, तो आपके विचारों को अगर मैं समझना चाहूं तो इन संबंधों की आज कितनी वास्तविक भूमिका आपको लगती है? क्या ये कोई केवल कूटनीतिक आयोजनों तक ही सीमित है या फिर अभिव्यक्तियों तक सीमित है या फिर व्यापार, शिक्षा, पर्यटन और क्षेत्रीय सहयोग में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं?
2: भारत की सभ्यता, संस्कृति, संस्कार बहुत से देशों तक बहुत पुराने समय से ही पहुंचने शुरू हो गए थे। भारत के लोग जिन देशों में पहुंचे, कुशल अकुशल मजदूर और कारीगर बनकर वे जिन देशों में पहुंचे और वहीं बस गए, वहां वहां भारतीय संस्कारों ने जड़ें जमाई। बहुत से विदेशी विद्वानों को भारतीय ज्ञान परंपरा इतनी पसंद आई कि उन्होंने अपनी अपनी भाषाओं में भारतीय ग्रंथों का अनुवाद किया और भारतीय विचार का प्रचार किया, उसे अपनाया भी और उसका प्रसार भी किया। भारतीय लोग व्यापार के लिए दूसरे देशों में जाते थे, बड़ी समृद्ध परंपरा थी और विदेशी जो लोग थे वो व्यापार के लिए भारत आते थे। आज व्यापार का स्वरूप बहुत ज्यादा वैश्विक है। शिक्षा के लिए देश विदेश के द्वार उदारता से खुले हैं। हुनरमंद भारतीयों ने दुनिया के तमाम देशों में अपनी प्रतिभा के बूते बड़ी और सम्मानजनक जगह बनाई है। ऐसे में बृहत्तर भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का बड़ा इम्पोर्टेंस है। जैसा आपने बताया कि विश्व भर में भारत के सांस्कृतिक संबंध बृहत्तर भारत के जरिए जानने समझने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 14 से 16 अक्टूबर तक नई दिल्ली के विज्ञान भवन में किया जा रहा है। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि बृहत्तर भारत योजना और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का मूल उद्देश्य, मूल मकसद केवल इतिहास को याद करना नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया एक कुटुंब है, जैसा कि अनिल जी ने कहा, वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ आज के आधुनिक दौर में भी भारत के वैश्विक सांस्कृतिक और कूटनैतिक संबंधों को नए आयाम देना है। खास बात यह है कि सम्मेलन में चीन, जापान, मंगोलिया, नेपाल और ईरान समेत दुनिया भर के 50 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि यानी नुमाइंदे, राजदूत और विद्वान लोग भाग ले रहे हैं। ऐसे में केवल एक दैशिक इसका उद्देश्य नहीं हो सकता है। मैं बहुत सारे एक दूसरे से संबंध देशों के जो बनते हैं तो केवल भाषाई आधार पर नहीं, साहित्यिक आधार पर नहीं, विकास के और दूसरे जो बुनियादी माध्यम है उनके द्वारा नहीं, एक बहुआयामी अप्रोच के साथ काम करना पड़ता है और भारत सरकार ये काम कर रही है और काफी सफलतापूर्वक कर रही है, ये हम कह सकते हैं।
1: जी वाधवा जी, भारत चीन और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच प्राचीन काल से व्यापारिक तथा सांस्कृतिक संबंध रहे हैं, आपने सिल्क रूट का भी जिक्र किया था। आज के समय में जब लगातार हम ये देख रहे हैं कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है और एशिया में भी इसका असर देखा जा रहा है, तो साझा इतिहास जो हमारा रहा है 72 भारत में जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसे किस नजरिए से आज देख सकते हैं? क्या ये सभी देशों के बीच में सहयोग का एक बड़ा आधार बनेगा या इतिहास को वर्तमान की रणनीतिक प्रतिस्पर्धा से हम अलग रखें या दोनों को मिला करके आगे बढ़ सकते हैं?
0: बेहतर भारत का एक महत्वपूर्ण संदेश यह भी है कि संस्कृति लोगों को जोड़ सकती है और आज दुनिया अनेक संघर्षों, राजनीतिक तनावों और आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रही है। ऐसे समय में विभिन्न देशों के बीच सांस्कृतिक संवाद का महत्व

0: और बढ़ जाता है। अब किसी दूसरे समाज की भाषा, कला, साहित्य और परंपराओं को समझने से उसके लोगों के प्रति सम्मान भी बढ़ता है। इससे मतभेदों के बावजूद सहयोग के रास्ते खुले रखने में मदद मिलती है। तो नई पीढ़ी को हमें इस विरासत से जोड़ना है, ये काफी महत्वपूर्ण है। और विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में भारत के अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक संबंधों पर अधिक ध्यान देना चाहिए। युवाओं को शोध और छात्रवृत्तियों और सांस्कृतिक आदान प्रदान के अवसर मिलने चाहिए। इसी तरह से कई बार किसी देश में सुरक्षित दस्तावेज दूसरे देश के इतिहास को समझने में भी सहायता करते हैं, तो ऐसे में संयुक्त शोध और जानकारी का आदान प्रदान विशेष महत्व रखता है। कभी विरासत का संरक्षण भी साझा जिम्मेदारी है। सरकारों के साथ साथ स्थानीय समुदायों, संग्रहालयों और शैक्षणिक संस्थानों में उनकी भागीदारी भी आवश्यक है। तो आज के अंतर्राष्ट्रीय संबंध जिसमें आपसी सम्मान और साझा हितों पर बहुत जोर है, आज के कॉन्टेक्स्ट में अब हम जो ये जो सम्मेलन भारत में हो रहा है इसके कॉन्टेक्स्ट में काफी महत्वपूर्णता रखते हैं। तो मुझे लगता है कि नई दिल्ली में ये जो आयोजित ये अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है इसी दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण पहल है। तो इससे आशा की जा सकती है कि भारत और विश्व के बीच सांस्कृतिक संबंधों पर नए शोध होंगे और विश्वविद्यालयों और सांस्कृतिक संस्थानों के बीच सहयोग बढ़ेगा और हमारी साझा विरासत को सुरक्षित रखने के नए रास्ते भी खुलेंगे।
1: जी पराशर जी, बृहत्तर भारत की अवधारणा सांस्कृतिक गौरव के संदर्भ में भी हमारे सामने आती है और इसे राजनीतिक विस्तारवाद से भी जोड़ा जा सकता है, तो आपका विचार क्या है कि इन दोनों के बीच में कोई अंतर है या दोनों अब एक ही सिक्के के दो पहलू होकर के एक साथ चलेंगे ताकि इतिहास को ना तो संकीर्ण दृष्टि से देखा जाए और ना ही उसका अधिकतम राजनीतिक इस्तेमाल हो?
2: निखिल जी, बृहत्तर भारत योजना, ये योजना पहली बार भारत की किसी सरकार ने शुरू की है और इसके महत्व को इस तरह से हम समझ सकते हैं। ये योजना 2026 से 2031 के बीच तक चलेगी और इसके बाद इसका कोई दूसरा चरण पर विचार किया जा सकता है। बृहत्तर भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की जहां तक बात है तो ये भारत सरकार की बृहत्तर भारत योजना का ही हिस्सा है। संस्कृति मंत्रालय के ग्लोबल एंगेजमेंट टीम के तहत चलाई जा रही इस योजना के जो लक्ष्य है उन्हें पहले समझ लेते हैं।
1: जी,
2: ये है कि दुनिया भर में बिखरी हुई भारत की साझा सांस्कृतिक और सभ्यतागत विरासत का दस्तावेजीकरण, संरक्षण और डिजिटलीकरण करना। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत और यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड प्रोग्राम के लिए दूसरे देशों के साथ मिलकर, ये इम्पोर्टेंट है, दूसरे देशों के साथ मिलकर बहुराष्ट्रीय नामांकन दाखिल करना भी इसका लक्ष्य है और एक समर्पित डिजिटल बृहत्तर भारत पोर्टल तैयार करना ताकि वैश्विक स्तर पर इस साझा विरासत को शोधकर्ताओं और आम जनता तक आसानी से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध कराया जा सके, ये भी इसका एक प्रमुख लक्ष्य है। और ये सम्मेलन नई दिल्ली में क्यों किया जा रहा है, इसका क्या ऐतिहासिक महत्व है, ये भी जान लें।
1: जी,
2: ये सम्मेलन बृहत्तर भारत परिषद यानी ग्रेटर इंडिया सोसाइटी, काउंसिल नहीं, परिषद के लिए काउंसिल शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया था, ग्रेटर इंडिया सोसाइटी की स्थापना के 100 साल पूरे होने पर किया जा रहा है, यानी ये शताब्दी वर्ष है बृहत्तर भारत परिषद। परिषद की स्थापना 14 अक्टूबर 1926 को तत्कालीन कलकत्ता में भारतीय विद्वानों ने की थी। इसके आध्यात्मिक मार्गदर्शक गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर थे। इस संस्था का मूल उद्देश्य भारत के बाहर, खासकर दक्षिण पूर्वी और मध्य एशिया में भारतीय संस्कृति, कला, भाषा, धर्म और आध्यात्मिक विचारों के प्रसार और उसके ऐतिहासिक प्रभावों का अकादमिक अध्ययन करना। यानी हम देख रहे हैं कि 100 साल पहले ही हमारे देश के जो दूरदर्शी विद्वान थे उन्होंने भांप लिया था कि भारतीय संस्कृति की जड़ें पूरी दुनिया में बहुत गहराई तक जुड़ी हुई रहें, इसके लिए बाकायदा एक संस्थागत प्रयास किया जाना चाहिए और वो प्रयास 100 साल पूरे होने पर किया गया। इसकी जो थीम है सम्मेलन की, 3 दिनों के दौरान विभिन्न देशों के भारत के साथ सभ्यतागत जुड़ाव, पुराने व्यापार मार्ग जैसे सिल्क रूट का जिक्र हुआ, उल्लेख हुआ, दर्शन, कला, वस्त्र यानी टेक्सटाइल और खान पान के आदान प्रदान जैसे 10 जीवंत विषयों पर गहन चर्चा इस सम्मेलन में होगी। एक एक करके अगर देखें हम तो शुरुआती जुड़ाव और सभ्यतागत संपर्क यानी प्राचीन पुरातत्व, व्यापारिक मार्ग और शुरुआती संपर्क के साधन कौन कौन से थे उनका अध्ययन करना, धार्मिक परंपराएं और ज्ञान प्रणालियां जैसे बौद्ध धर्म का उल्लेख हुआ, हिंदू और सूफी विचारों का वैश्विक प्रसार इसका उल्लेख हुआ, इससे संबंधित अध्ययन करना, दर्शन भारतीय ग्रंथों और दर्शन का दूसरी भाषाओं और संस्कृतियों में रूपांतरण यानी अनुवाद और उसका प्रकाशन, मूर्त वास्तुकला, मूर्तिकला और प्रदर्शन कलाओं की निरंतरता क्या क्या रही इसका अध्ययन, प्राचीन काल में वस्तुओं और विचारों के वाहक के रूप में व्यापारिक संबंध किस तरह के थे
1: जी।
2: उसका अध्ययन।

0: करना। वैश्विक स्तर पर भारतीय प्रवासियों द्वारा सांस्कृतिक संरक्षण और सभ्यतागत निरंतरता इसकी स्टडी करना। भोजन और पहनावे के माध्यम से संस्कृतियों का आपसी तालमेल बिठाना। अमूर्त विरासत का संरक्षण करना, जैसे लोक कलाएं हैं, त्योहार हैं और मौखिक वाचिक परंपराएं हैं। औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्ति और भारतीय विद्वता की पुनर्प्राप्ति, ये लक्ष्य हासिल करना। और समकालीन दौर में, यानी आज के दौर में, कंटेम्पररी टाइम में, सांस्कृतिक कूटनीति आधुनिक युग में सॉफ्ट पावर के रूप में भारत की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है, इस बात को स्टडी करना इसका लक्ष्य है।
1: जी वाधवा जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि भारत के विद्यालयों, विश्वविद्यालयों और सार्वजनिक विचार विमर्श की जब बात होती है तो इन्हें दक्षिण पूर्व एशिया और मध्य एशिया में किस तरह का स्थान प्राप्त होता है? हमारी मतलब जो विरासत है उसे वहां पर किस तरह से लिया जाता है?
2: आज हमारे भारतीय मूल के लोग विश्व के अनेक देशों में रहते हैं और मॉरिशस, फिजी कैरिबियन देश हैं, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका और खाड़ी क्षेत्र में भारतीय समुदायों ने अपनी सांस्कृतिक परंपराओं को जीवित रखा है, क्योंकि वो भारतीय भाषाएं बोलते हैं, त्योहार मनाते हैं और फिर संगीत, नृत्य और खान पान की परंपराओं को आगे बढ़ाते हैं। साथ ही वे अपने निवास देशों के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में भी योगदान देते रहते हैं। तो प्रवासी भारतीय भारत और दूसरे देशों के बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेतु है। उनकी भूमिका केवल व्यापार और अर्थव्यवस्था सीमित नहीं है, वे अपने अनुभवों, भाषाओं और सांस्कृतिक परंपराओं के माध्यम से दोनों समाजों को करीब लाते हैं और कई पीढ़ियां भारतीय परंपराओं को अपने निवास देशों की संस्कृति के साथ जोड़कर नए रूप भी दे रही हैं। तो इससे पता चलता है कि संस्कृति कोई स्थिर वस्तु नहीं है, जीवन के साथ बदलती है और आगे बढ़ती रहती है। तो आज योग हो या भारतीय संगीत हो, नृत्य, सिनेमा, साहित्य और खान पान की लोकप्रियता विश्व के अनेक देशों में दिखाई देती है। अभी हमने देखा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो भारत ने कुछ सालों से मनाया है, योग को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने में योगदान दिया है और भारतीय फिल्मों और संगीत ने विभिन्न भाषाओं और सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों के लोगों को भारत से परिचित कराया है। ये भी भारत की सांस्कृतिक पहचान की मजबूती बताते हैं और भारत की संस्कृति में करुणा, अहिंसा, सहिष्णुता और प्रकृति के प्रति सम्मान जैसे विचारों का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि आज हम देखते हैं कि जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण संरक्षण, सतत विकास जैसी वैश्विक चुनौतियों के बीच इन विषयों पर विचार विमर्श उपयोगी हो सकता है और पारंपरिक ज्ञान का आधुनिक विज्ञान के साथ अध्ययन करके हम उसके उपयोगी पक्षों को समझ सकते हैं और मानवता के कल्याण में योगदान दे सकते हैं। तो भारतीय संस्कृति शक्ति केवल उसके प्राचीन इतिहास में नहीं, बल्कि दूसरों से सीखने, विचारों का आदान प्रदान करने और फिर विश्व को जोड़ने की क्षमता में भी है। तो यही बेहतर भारत का संदेश भी है, अपनी जड़ों से जुड़े रहना, विश्व की विविधता का सम्मान करना और शांतिपूर्ण तथा सहयोगपूर्ण भविष्य के निर्माण में योगदान देना।
1: जी पराशर जी, आज डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया का दौर है जहां पर ऐतिहासिक तथ्यों की बात तो होती है, साथ में उसमें अतिरंजित दावे भी बड़ी तेजी से फैल जाते हैं। तो ऐसे में जब हम इतना बड़ा एक आयोजन लेकर के चल रहे हैं जहां पर बेहतर भारत की हम बात कर रहे हैं, कैसे सुनिश्चित होगा कि सांस्कृतिक विरासत की जो चर्चा होगी वो तथ्यों पर आधारित होगी और उन्हीं बातों को लोगों तक पहुंचाया जाएगा जो वास्तव में हमारी विरासत से, हमारे इतिहास से, हमारी संस्कृति से जुड़े रहे हों?
0: निखिल जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि इंटरनेट की दुनिया में आजकल गलत खबर, गलत सूचना, गलत तथ्य बड़ी आसानी से, बहुत सुगमता के साथ प्रचारित कर दिए जाते हैं, लेकिन आज इंटरनेट की सामग्री जो है पूरे विश्व में उसके प्रति जागरूकता भी बढ़ी है और सरकारी सिस्टम में भी ऐसे प्रावधान किए गए हैं ताकि इस तरह की जो फेक न्यूज है, गलत न्यूज है, गलत तथ्य है, उनका प्रसारण और उनका प्रसार प्रचार पर अंकुश लगाया जा सके, उन्हें फैलने से रोका जा सके। पूरे आयोजन का जो लक्ष्य है, अगर एक वाक्य में कहें तो औपनिवेशिक सीमाओं से दूर जाकर, परे जाकर, भारत को मात्र एक भौगोलिक भूमि न मानकर एक आध्यात्मिक और सभ्यतागत विचार के रूप में फिर से स्थापित करना है और अगर इसके प्रचार प्रसार पर सही तरह से सकारात्मक माध्यमों से, सकारात्मक स्वरूप में लोगों तक पहुंचाया जाए, दुनिया भर में पहुंचाया जाए, तो मुझे लगता है कि लक्ष्य की प्राप्ति में कोई परेशानी नहीं होगी। जैसा कि अभी उल्लेख हुआ, प्राचीन भारत के नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालय में उस समय बहुत सारे देशों के छात्र विद्या अध्ययन के लिए आते थे। भारत की पहल पर पूरी उस समय तो इंटरनेट नहीं था, लेकिन नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालयों की जो पहचान है, उनकी जो कीर्ति है, पूरी दुनिया में किस तरह फैली होगी। भारत की पहल पर पूरी दुनिया योग दिवस मनाती

0: अनिल जी ने भी उल्लेख किया, भारतीय आयुर्वेद की ओर पूरी दुनिया में आकर्षण बढ़ रहा है। भारतीय खगोल विज्ञान का लोहा पूरी दुनिया मानती है। भारत ने शून्य दिया जिसके बिना गणितीय गणनाएं संभव ही नहीं थी। रामलीलाओं का आयोजन दुनिया के कई देशों में होता है। होली दीपावली जैसे भारतीय त्योहार पूरी दुनिया में मनाए जा रहे हैं। आजकल भारतीय संगीत नृत्य परंपराएं खान पान शाकाहार संयम प्रकृति के सम्मान की परंपरा पूरी दुनिया ने अपनाई है। अनिल जी ने भी कहा, वसुधैव कुटुंबकम सर्वे भवन्तु सुखिनः जैसे प्राचीन विचारों की पूरी दुनिया कायल है और ये विशुद्ध भारतीय विचार हैं। अभी हमने प्रयागराज महाकुंभ में देखा कि बड़ी संख्या में विदेशी श्रद्धालु विदेशी नागरिक उसमें शामिल होने आए। और भी हमारे जो आध्यात्मिक आयोजन होते हैं उसमें बड़ी संख्या में विदेशों में रह रहे जो भारतीय तो आते ही हैं लेकिन विदेशी नागरिक भी बहुत बड़ी संख्या में आते हैं। ऐसे में इस तरह के जो आयोजन है वो बहुत आवश्यक हो जाते हैं। और जैसा मैंने कहा कि केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने पहली बार ये योजना 5 साल के लिए लागू की है, इसका स्वागत किया जाना चाहिए। और बृहत्तर भारत योजना कोई राजनीतिक योजना नहीं है मेरे हिसाब से, ये एक सांस्कृतिक जो धरोहर है, भारत की सांस्कृतिक पहचान है बहुत प्राचीन समय से, उसका पूरे विश्व में प्रचार प्रसार का ये अच्छा अवसर है। और इसके प्रचार प्रसार पर सरकार को भी बहुत ध्यान देना चाहिए। और जो संस्कृति कर्मी है हमारे देश के, आकाशवाणी है दूरदर्शन है, इनको भी इसके प्रचार प्रसार पर बहुत ध्यान देना चाहिए। तो इसके अच्छे परिणाम सामने आएंगे, सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे और खासतौर पर नई पीढ़ी के सामने।
1: जी अनिल वाधवा जी और रवि पराशर जी, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, तमाम प्रश्नों का उत्तर देने के लिए और इस महत्वपूर्ण चर्चा में भाग लेने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद
2: धन्यवाद।
3: अभी आप सुन रहे थे बृहत्तर भारत, विश्व में सांस्कृतिक जुड़ाव को दर्शाते एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पूर्व राजदूत अनिल वाधवा और वरिष्ठ पत्रकार रवि पराशर। परिचर्चा का संचालन कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
4: चर्चा का विषय है।

प्रस्तुत है छाया गीत। सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। सामिन, मैं एक किताब हूँ।

एक नदी भी हूँ, बहती रहती हूँ, कल कल करती, छल छल बहती, अकेली सी, सिसकती, मचलती, गरजती, उलझती सी। मैं नदी हूँ, उतरती हूँ दिलों में किसी सुबह की उजास की तरह, कानों में गुनगुनाती हूँ, दरवाजों से बहती आती हूँ तुम्हारे भीतर, खुले दिलों में उतरती हूँ। हाँ, मैं भीड़ में खोना नहीं चाहती खुद को, हाँ मैं भीड़ में खोना नहीं चाहती खुद को, मैं तुम में विलीन हो जाना चाहती हूँ, डुबो देना चाहती हूँ खुद को तुम्हारे भीतर।

सुनो, हाँ मैं रात हूँ सहमी हुई। तुम लिख सकते हो मुझ पर कोई कविता? एक रात में कवि कितनी कविताएं लिख लेता है। जब सभी सो जाते हैं, कवि चुपचाप छत पर नंगे पैर आता है रात को निहारने के लिए, है ना? काश तुम भी छत पर आते, मैं रात सुहानी बन जाती जब बन जाते तुम मेरे चांद। हाँ मैं रात सुहानी बन जाती जब बन जाते तुम मेरे चांद।

शाय गीत में आप हैं मंदाकिनी के साथ। कभी कभी सोचती हूं मैं एक हवा हूं, मेरे स्पर्श से रोमांचित हुए हैं पेड़ पहाड़ और कबूतर चिड़िया भी। तुम्हें छूती हूं तो तुम में भर जाती हूं, तड़पती हुई तुम में समा जाना चाहती हूं। मैं तुम्हारे प्यार में सरस सरल बनकर बह रही हूं अनवरत अनवरत अपने ही भीतर, हाँ अपने ही भीतर।

मैं बारिश हूँ किसी प्रेम कविता सी। धीरे धीरे गिरती बूंदें, बादलों की ओट में छुपा चांद, पहाड़ियों पर उतरती धुंध, मुझसे भीग कर तुम्हारा वो मुस्कुराना, वक्त जैसे थम जाता है, ये भीगी वादियां और तुम्हारा साथ, उफ, सब मिलकर जैसे इश्क की एक नई कहानी बन रही होती है तब। हाँ, एक

0: सुनो, मैं एक स्त्री भी हूँ और तुम अपनी किताब के पन्नों में मशगूल एक प्रेमी कवि। सोचती हूँ तुम्हारे संग बर्फीली वादियों में खो जाऊं, तुम्हारा हाथ थामकर चलूं, यूं ही किसी चांदनी रात में दूर तक किसी घने जंगल में खो जाऊं तुम्हारे साथ। हाँ, अच्छा लगता है तुम्हारा ये साथ। वो सर उठाकर बंद आंखों से जाने क्या सोचते हुए बुदबुदाते हो तुम, बहुत अच्छे लगते हो तब। हाँ, बहुत अच्छे लगते हो तब।
1: मैं तो